सुप्रभात। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की तिथि 6, तदनुसार 28 सितंबर वर्ष 2026। प्रातः के 5:58 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की

0: गई थी जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई

0: आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 6:05 हुए हैं, समय हो गया है भक्ति रचनाओं के कार्यक्रम वंदनवार का। इस कार्यक्रम के लिए आइए आपको ले चलते हैं विविध भारती मुंबई।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, सकारात्मक सोच हर मुश्किल को आसान बना देती है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, लेखा जोखा आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का। कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। संगीत सरिता का समय रहता है 6:45 का, और इसमें आज आप सुनेंगे विविध भारती के खजाने से गायक के जी गिंडे से बातचीत। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुना करते हैं 7:00 और 7:30 समय रहता है कार्यक्रम हम है राही प्यार के का। आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार होंगे प्रातः 8:00 और दिन में 12:00। समय रहेगा त्रिवेणी का। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे 8:30 पर। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हमारा कार्यक्रम आज का अखबार लेकर हाजिर होंगे 9:30 पर। 10:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 10:05 पर आज प्रस्तुत करेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। 11:00 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने में। 11:30 पर आज के रोज आप सुना करते हैं कार्यक्रम शेर ओ नगमा।

12:05 समय रहेगा कार्यक्रम यादों की महफिल का। 1:05 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे, जिन्हें हम अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। 1:15 पर आनंद लीजिएगा फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम सुरीला सफर का समय रहेगा 1:30 पर। त्रिवेणी कार्यक्रम एक बार फिर से आप सुनेंगे दिन में 2:00। 2:15 पर होंगे हिंदी में समाचार। गोल्डन हिट्स सदाबहार नगमे कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा 2:30 पर। सखियों का कार्यक्रम सखी सहेली आप सुना करते हैं दिन में 3:00। पिटारा खुलता है शाम 4:00 और आज के पिटारा में आप सुनेंगे पीसीओडी आईवीएफ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, ये आप सुनेंगे सेहतनामा के अंतर्गत। हिंदी में समाचार होंगे शाम 5:00। 5:05 पर आनंद लीजिएगा कुछ फिल्मी गीतों का फिल्म संगीत में। 5:30 समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का और 6:00 सुनिएगा हिंदी में समाचार।

हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा 6:10 और पंजाबी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं 6:20 पर, जिन्हें हम अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 समय रहेगा हिंदी में समाचार समीक्षा का और 6:35 पर आनंद लीजिएगा कुछ पंजाबी गीतों का।

शाम 7 बजे आप सुना करते हैं फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर सुनना ना भूलिए प्रादेशिक मुख्य समाचार। 7:47 पर आप सुनेंगे पंजाबी गीत। हवा महल होगा रात 8 बजे और आज के हवा महल में आप सुन सकते हैं झलकी नई कमीज। चित्रलोक कार्यक्रम का समय 8:15 का रहेगा और हिंदी में समाचार आप सुनेंगे 8:45 पर। रात 9 बजे कार्यक्रम होगा आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेता रणबीर कपूर पर। छायागीत का समय रात 10 बजे का। 10:30 पर प्रादेशिक मुख्य समाचार और सुर सांझ कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 10:32 पर। सभा का समापन होगा रात 11 बजे हिंदी में समाचारों के साथ। तो ये था कार्यक्रम विवरण और आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस।

आधी रात बीत चुकी है। शक्तिबाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। संजीवनी लेकर हनुमान अभी तक नहीं आए। लक्ष्मण को हृदय से लगाकर श्री राम विलाप कर रहे हैं। हे भाई, तुम तो कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे लिए तुमने माता पिता तक को छोड़ दिया। वन वन भटकते हुए शीत, घाम, वर्षा, आंधी

कष्ट सहे। अब तुम्हारे उस प्रेम को क्या हो गया? तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि एक दिन मुझे मेरे प्रिय भाई का वियोग सहना पड़ेगा तो मैं पिता के वचन की मर्यादा को भी भुला देता। पुत्र, स्त्री, धन, घर परिवार, इस जगत में सब कुछ मिल जाते हैं, नहीं मिलता तो वो है सहोदर भाई। स्त्री के लिए ऐसे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा? मुझे परम हितकारी जानकर माता ने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को मेरे हाथों में सौंपा था, अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? श्री राम के कमल सरीखे नैनों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ तो अद्वितीय और वियोग रहित हैं, किंतु अपने प्रिय भाई के लिए विलाप करते हुए मनुष्यों की दशा दिखा रहे हैं, ये भी उनकी एक लीला है। तभी वहां संजीवनी लेकर हनुमान आ पहुंचते हैं। उधर अनेक उपाय करके अपने भाई कुंभकर्ण को जगाकर रावण उसे सारी कथा सुना रहा है।

0: मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए हैं सुविख्यात गायक केजी गिंडे से सुप्रसिद्ध गायक दिनकर कैकिनी की बातचीत, आइए सुनते हैं।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आप सबको देश के जाने माने गायक कलाकार एवं राग संगीत के विद्वान पंडित केजी गिंडे, कृष्ण जी गिंडे से भेंट कराना चाहेंगे। नमस्कार पंडित जी।
2: नमस्कार
1: गिंडे जी। तो इस 60 साल की लंबी अवधि के कुछ अनोखे अनुभव संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बताने का कष्ट करेंगे?
2: अवश्य।
1: आपका जन्म कर्नाटक में हुआ, आपके पिताजी डॉक्टर थे और परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने दूसरा व्यवसाय अपनाया। ऐसी स्थिति में केवल आपने संगीत क्षेत्र में प्रवेश क्यों

0: कैसे किया?
1: ये तो एक संयोग कहिए, मेरे बचपन में ही मेरे घर में संगीत का वातावरण रहा। मेरे पिताजी वैसे भजन कीर्तन करते ही थे, उसकी वजह से मेरे सबसे बड़े भाई जो सुविख्यात मेंदु यानी मस्तिष्क के तज्ञ न्यूरोसर्जन थे,
0: जी जी,
1: उनके प्रोत्साहन से मुझे ये इस कला में अधिक रुचि हुई और मैंने नाट्य संगीत बहुत सुना और पांचवें वर्ष में मैंने पहले संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।
0: अच्छा।
1: उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई साहब बंबई आए और पंडित भातखंडे जी के द्वारा मुझे गुरुवरी रतन जनकर के जी के पास
0: जी
1: मेरी आयु के 11 वर्ष से मुझे सौंपा गया।
0: यानी आपके बड़े भाई डॉक्टर
1: राम गिंडे
0: हाँ। वो भी काफी संगीत,
1: हाँ वो खुद भी गाते थे, हारमोनियम बजाते थे, फ्लूट बजाते थे।
0: अच्छा।
1: सारंगी भी बजाते थे
0: जी,
1: लेकिन वो व्यवसाय से उन्होंने गाना बजाना नहीं किया। वैसे तो मेरे सब भाई शास्त्रीय संगीत जिसको रागदारी संगीत हम कहेंगे
0: जी,
1: उसमें काफी रुचि रखते हैं।
0: अच्छा।
1: और इस तरह से मैं लखनऊ भेजा गया और तब से करीब करीब 38 साल मैंने गुरुजी के पास रहा, वो तो आप जानते हैं,
0: पंडित
1: रत्नाकर जी के पास।
0: जी हाँ। एक सवाल मैं करना चाहूंगा।
1: बोलिए।
0: जो कि आम तौर पे जिसको हम ले लिसनर कहते हैं,
1: हाँ,
0: वो हमको क्या करते हैं?
1: हाँ।
0: वो कहते हैं कि एक अच्छा गायक बनना हो तो आप क्या राय देंगे?
1: अच्छे गायक बनने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा गुरु और पर्याप्त संगीत की साधना, ये सब सुविधा अगर हो तो मुझे विश्वास है कि अच्छा कलाकार अवश्य बन सकता है। लेकिन अच्छे गायन का प्रदर्शन सुनने का अवसर मिलना, इन सब बातों का होना आवश्यक है।
0: अच्छा। और एक सवाल है,
1: हाँ,
0: एक अच्छा राग संगीत का श्रोता बनने के लिए क्या करना पड़ता है?
1: उसको जितना अधिक से अधिक वो रागदारी संगीत सुनता रहे तो अच्छा मार्मिक श्रोता अवश्य बन सकता है।
0: जी, क्योंकि ये संगीत तो श्रवण विद्या है।
1: बराबर है।
0: जितना सुनेंगे,
1: ज्यादा सीखने से ज्यादा सुनना ये आवश्यक है। और मैं समझता हूँ ये संगीत सरिता कार्यक्रम उसमें एक दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है।
0: जी हाँ, जी हाँ।
1: और उसमें से मुझे, मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि एक सामान्य श्रोता भी इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी रुचि लेने लगा
0: सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो एक श्रोता बनने के लिए एक तो चीज हुई कि सुनना जरूरी है।
1: अवश्य।
0: किस टाइप का म्यूजिक सुनना पड़ेगा उसको?
1: पहले तो कंठ संगीत जरा हजम करना बहुत मुश्किल होता है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन इसलिए वो अगर वाद्य संगीत को सुने और तद अनुरूप अगर जो आजकल जिसको कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत या रागदारी संगीत के आधार पर जो फिल्मी संगीत आजकल कंपोज होता है, ये रचा जाता है, उसको भी अगर वो सुनता रहे तो कम से कम रागदारी संगीत के नजदीक आने लगता है।
0: जी। अच्छा, आप जब संगीत की शिक्षा ग्रहण करते रहे,
1: हाँ,
0: उस समय क्या आप काफी रियाज करते होंगे?
1: मैं रियाज अवश्य करता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी करता था।
0: जी।
1: रियाज जितना आवश्यक था उतना ही मैंने किया, लेकिन मुझे सबसे बड़ा सुयोग ये रहा कि मुझे अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनने का अवसर अवश्य मिला और उसका फायदा मुझे बहुत मिला।
0: और आपको तो मैंने देखा है कि काफी बड़े बड़े उस्तादों के पीछे भी आप गाए हैं।
1: हाँ, मुझे अवश्य सभी
0: लाभ मिला,
1: बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों के पीछे मुझे गवाया है। बिल्कुल। खान साहब,
0: फैयाज खान साहब,
1: निसार हुसैन खान साहब, कई लोगों के पीछे मैंने गाया है।
0: तो मतलब ये है कि जैसे कि आजकल कहा जाता है घराने,
1: हाँ,
0: तो अलग अलग घरानों के गाने जो है,
1: हाँ,
0: और जो गवैये हैं,
1: हाँ,
0: उनका गाना सुनना और उनके साथ संगत करना,
1: हाँ,
0: इसका भी लाभ आपको प्राप्त हुआ।
1: अवश्य अवश्य। लेकिन उसमें एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि एक विद्या एक गुरु के पास सीखते हुए मेरा सुधा भी ऐसा रहा कि मुझे रतनजनकर जी ने सभी गायकियों की बारीकियां समझाते हुए उन्होंने एक बुनियादी तालीम ऐसी दी कि जो मैं हर एक का गाना अनुकरण कर सकता था।
0: अच्छा।
1: ये उनकी शिक्षण की दिशा थी।
0: बिल्कुल।
1: और उसी वजह से मैं विभिन्न घरानों के गायकों के साथ भी गा सका।
0: जी हाँ। नहीं, एक अच्छी बात ये है,
1: हाँ,
0: कि रतनजनकर जी,
1: हाँ,
0: एक कूप मंडूक वृत्ति के नहीं थे।
1: बराबर।
0: उन्होंने अपनी तो तालीम दी,
1: हाँ,

0: लेकिन हम लोगों का या आपका कहिए
1: बराबर है
0: ये दिमाग खोला
1: बराबर,
0: इसके वजह से
1: हाँ।
0: हम ये गाना अच्छा, ये घराना अच्छा, वो ठीक नहीं, ऐसा हम
1: हमारे हमारे गुरु जी आपको जानते ही हैं कि हर एक विद्यार्थी को अपने जो गुण है उसको विकास करवाते थे, अपना अनुकरण नहीं करवाते थे। विद्यार्थियों में जो पोटेंशियलिटी है उसी को वो आगे चलाना चाहते थे, उसी को विकास करवाना चाहते थे, और इसी वजह से उनके जितने शिष्य हैं वो सभी अपने अपने तई उन्होंने अपनी कला में विकास किया है।
0: क्या संगीत विषय को व्यवसाय की दृष्टि से लिया जा सकता है? जाहिर है कि सभी छोटी छोटी के कलाकार तो बन नहीं सकते,
1: हाँ।
0: तो ऐसे अभिलाषी व्यक्तियों के लिए आप क्या सुझाव देंगे?
1: संगीत को व्यवसाय बनाना एक नसीब की बात होती है
0: जी।
1: जैसे आप खुद ने कहा है कि सभी कोई चोटी के कलाकार नहीं बन सकते,
0: लेकिन आजकल आपने देखा
1: हाँ।
0: कि यूनिवर्सिटी में भी संगीत चलता है,
1: हाँ, बराबर है।
0: तो सभी संगीत लेना चाहते हैं, व्यवसाय बनाना चाहते हैं।
1: व्यवसाय
0: अगर वो चोटी के कलाकार नहीं बन सकते हैं तो वो क्या बन सकते हैं?
1: वो शिक्षक बन सकते हैं कहीं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: संगीत शिक्षक बन सकते हैं और संगीत का ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को उसका ज्ञान दे सकते हैं।
0: और आजकल क्रिटिक भी बनते हैं,
1: हाँ, बस यही समीक्षक भी बनेंगे। हाँ,
0: समीक्षक,
1: बराबर।
0: एक प्रश्न और पूछूंगा।
1: जरूर।
0: भारतीय राग संगीत जिसको शास्त्रीय संगीत कुछ लोग
1: आजकल कहते हैं
0: लेकिन राग संगीत कहना ही मेरे ख्याल से
1: अधिक पर्याप्त है।
0: इसका भवितव्य के बारे में आपकी क्या राय है आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए?
1: आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूं कि शास्त्रीय संगीत गहराई से विकास होना चाहिए। शायद वो उसका स्वरूप कुछ और होने लगा है, और सामान्य श्रोताओं के तब जन साधारण के लिए हम अगर संगीत करना चाहेंगे तो बराबरी के स्तर पर उसका विकास होगा, ना कि गहराई की ओर से।
0: अच्छा।
1: क्योंकि इसके एक साधना के लिए काफी अरसे की जरूरत होती है।
0: अच्छा, तो गिंडे जी प्रश्न तो काफी हैं। हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को हम दोनों की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं,
1: ओर से भी और आपकी ओर से भी।
0: जी।
1: मैं फिर से अपनी ओर से सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ।
0: नमस्कार।
2: विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए थे सुविख्यात गायक केजी गिंडे से सुप्रसिद्ध गायक दिनकर कैकिनी की बातचीत। ये बातचीत विविध भारती में वर्ष 1985 में संगीत सरिता के अंतर्गत प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। मित्रों, आइए सुनते हैं केजी गिंडी का गाया राग चारुकेशी।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
2: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
1: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
1: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
2: दे रे भाई।
4: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: लता मंगेशकर को कार्यक्रम का पहला गाना है आवारा फिल्म से शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत, आवाज है लता मंगेशकर और साथियों की।

कार्यक्रम का पहला गाना है आवारा फिल्म से शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत, आवाज है लता मंगेशकर और साथियों की।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना बादल फिल्म से, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना अलबेला फिल्म से, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत और आवाज है लता मंगेशकर की।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे जीत फिल्म से गाना प्रेम धवन के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत। कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: लता मंगेशकर की

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
3: हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नौजवान फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गाना साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए बुजदिल फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का।

0: इसी गीत के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म के गाने के साथ, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

आज हम याद कर रहे हैं स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर को, बॉलीवुड संगीत के इतिहास में एक बहुत ही अहम नाम। अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया ये गाना। आइए आप सुनते हैं ये

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: टावर हाउस से सुनते हैं अगला गाना, मुकेश के साथ लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

प्यार के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं राजा रानी फिल्म से ये गाना। किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। फिल्म है रामपुर का लक्ष्मण।

0: कार्यक्रम का अगला गाना तलाश फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो

0: इसी के साथ आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे थे आज कार्यक्रम में लता मंगेशकर की आवाज में सारे गाने। जानिए इनके बारे में और बातें आज के फनकार कार्यक्रम में 9:30 पर।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आपको ले चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली हिंदी में समाचारों के लिए। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर

0: उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1200

0: लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
1: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
1: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरीटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
1: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन

0: सौंपेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
1: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार, LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। समय हो गया है कार्यक्रम त्रिवेणी का। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

दोस्तों, खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता खामोश रहकर अपनी महक लुटाता है। मील का पत्थर बेजुबान होकर भी पथिकों को राह दिखाता है। दिया खुद जलकर रोशनी लुटाता है। आंतरिक सौंदर्य की अपनी परिभाषा होती है, ऐसी भाषा जिसमें न शब्द होते हैं न आवाज, किंतु असर काफी गहरा। मौन रूपी संचित ऊर्जा का उपयोग हमारे ऋषि मुनियों ने भी खूब किया है। प्राचीन काल में लोग मौन का महत्व समझते थे। प्रकृति की आवाज को सुनने के लिए वे अपनी आवाज को कुछ समय के लिए विराम दे देते थे।

संसार में हर मनुष्य की पहचान उसकी बोली और व्यवहार से की जाती है। विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है भाषा, लेकिन मौन की अपनी भाषा है। सांसारिक भाषाएं जहां सीमित शब्दों में बंधी है, वहीं मौन की भाषा में अनंत शब्द अंतर्निहित हैं। केवल चुप हो जाना मौन नहीं है, बल्कि अपने वजूद में खो जाना है मौन। चुप्पी बाहर होती है, लेकिन मौन भीतर घटता है। चुप्पी में हमारी वाणी पर नियंत्रण होता है, लेकिन मौन का अर्थ है स्वयं में उतरना और मन वचन कर्म से शांत रहना। जब हम मौन में प्रवेश करते हैं तो हमारा स्वयं से साक्षात्कार होता है। मौन हमें बाहरी छलावों से दूर ले जाकर सत्य का आईना दिखाता है और हम स्वयं की ओर उन्मुख होने लगते हैं। स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार ही मौन का लक्ष्य है।

मौन का अर्थ है मन का नहीं होना। जहाँ मन है वहाँ असंतोष, शोक, जलन, प्रतिशोध, दुख और क्रोध जैसे कई भाव होते हैं। मौन में इनके अस्तित्व को मिटाना अनिवार्य है। मौन आत्मा की भाषा है जिसे सांसारिक कोलाहल के बीच सुनना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति के अंतर्मन की यात्रा का नाम है मौन। भाषा और बोली के बंधनों को मिटाकर स्वयं से जोड़ता है हमें ये और जीवन में पूर्णता लाता है। मानसिक तनाव, व्याकुलता और अशांति के पलों में मौन शांति का प्रकाश पुंज है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: मैं तो टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। देश के वीर सपूतों की जब भी बात होती है, शहीद भगत सिंह का नाम पूरा देश गर्व से लेता है। महज 23 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हुए भगत सिंह आज भी साहस और विचारों के इनकलाब की मिसाल है। 6 जून 1923 को दिल्ली की सत्र अदालत में उन्होंने कहा था, पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आज इनके याद के दिन पर विविध भारती परिवार की तरफ से शहीद-ए-आज़म भगत सिंह को शत शत नमन।

जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीने

विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, दिल तो पागल है इस फिल्म से, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, उत्तम सिंह का संगीत।

दिल तो पागल है फिल्म से आप सुन रहे थे उदित नारायण के साथ लता मंगेशकर की आवाज़। लता मंगेशकर का नाम इंडियन म्यूजिक और हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अलग ही जगह रखता है। अपनी आवाज़ और अपने लंबे म्यूजिकल करियर के थ्रू उन्होंने कई जनरेशन्स को अपने गानों से जोड़ा। उनके गाने आज भी लोगों की यादों का हिस्सा है। आज उनकी याद का दिन है। जानिए उनके बारे में कुछ बातें, कुछ किस्से 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में। चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बेवफा फिल्म से बोल समीर के, संगीत नदीम श्रवण का।

0: संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
4: अगला गाना रॉक स्टार फिल्म से, मोहित चौहान की आवाज में इरशाद कामिल के बोल, AR रहमान का संगीत।

आज रणबीर कपूर का बर्थडे है। 2007 में सांवरिया से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले रणबीर ने वेकअप सिड, रॉकस्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी और संजू जैसी फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी एक्टिंग से एक खास फैन फॉलोइंग बनाई। विविध भारती परिवार की तरफ से रणबीर कपूर को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। रणबीर कपूर की मटर गश्ती आप सुन रहे हैं तमाशा फिल्म से। मोहित चौहान की आवाज में इरशाद खामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

शेखर अफजियानी और कैरलिस्टा मोंटेरो की आवाज़ में आप सुन रहे हैं अनजाना अनजानी फिल्म से ये गाना। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अन्विता दत्त के साथ इन्होंने ये गाना लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

हम आपको याद दिला दें, आज रात का आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर केंद्रित होगा रणबीर कपूर पर। कार्यक्रम का अगला गाना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में तू झूठी मैं मकार फिल्म से, अमिताभ भट्टाचार्य के

0: इसी गीत के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
5: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
4: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
5: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
4: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब हरियाणा हिमाचल यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
5: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
6: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
4: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
6: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
5: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
4: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172।
5: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम आज का अखबार का।
1: आज का अखबार।

आज की सुबह रंगी है कुछ अलग ही रंग में, क्योंकि आज का दिन ऐसा दिन है जब एक नहीं भारत मां के दो दो सपूतों ने लिया था जन्म। नमस्कार, आज का अखबार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ शालिनी। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही यादगार दिन है, क्योंकि आज के दिन जन्म हुआ था भारत मां के सच्चे सपूत शहीद आजम भगत सिंह जी का, और आज हम उनकी 119वीं जयंती मना रहे हैं। साथ ही आज का दिन हम मना रहे हैं स्वर सम्राज्ञी, स्वर कोकिला, भारत रत्न से सम्मानित देश की सबसे महान गायिका लता मंगेशकर जी का। आज उनका भी जन्मदिवस है, और उनके गीत, उनकी सादगी कल, आज और आने वाली न जाने कितनी और पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करेंगी। आज हम उनकी जयंती पर उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और उनके गीतों के जरिए आज पूरा दिन हम उनको सेलिब्रेट करेंगे। कहते हैं किसी भी इंसान को मारना आसान है, पर उनके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। ये कहना था शहीद आजम भगत सिंह का। और आज ही की बात करें तो आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है, क्योंकि आज हम सर्जिकल

बाइक्स की 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि 18 सितंबर का वो दिन था जब उरी में हमला हुआ था और हमारे देश के 18 जवान उस हमले में, उस कायराना हमले में शहीद हुए थे। और उसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे वीर सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स करके अपने देश के जो भी शहीद हुए जवान थे उसका बदला लिया था। हम अपने देश के जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको हम नमन करते हैं, उनकी वीरता को नमन करते हैं। और आज के दिन हम उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले शहीद भगत सिंह मात्र एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे, जो कि ना केवल उस समय के लोगों में देशभक्ति की भावना को भर देता था बल्कि आज भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा, स्वतंत्रता संग्राम का जो उद्घोष था, वो आज भी सब में वही जोश, वही जुनून भर देता है। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।

0: स्वच्छता ही सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार और कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: आज फिर लेट हो गए।
3: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
2: क्यों बैठे थे बाहर?
3: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
3: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार और कार्यक्रम में अब बारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों की यानी हेडलाइंस की। राष्ट्रीय समाचारों में एनटीए के नए कार्यालय में तैनात होगी सीआईएसएफ। पहाड़ों पर बर्फबारी से रास्ते हुए बंद, यात्री फंसे। भारी बारिश से अब तक 90 लोगों की गई जान। उत्तरकाशी में बर्फ में 136 पर्वतारोही फंसे हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स की आज 10वीं वर्षगांठ। भारत अब आतंकवाद नहीं करेगा बर्दाश्त, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित की गई। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की करेंगे शुरुआत। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती

आ रहा है। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, अब चुनिंदा देशों में भारत का नाम भी शामिल।

अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के अंतर्गत जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की एक खेप भेजी।

0: रूस ने किया यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। और एशियाई खेलों के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत का सामना आज अफगानिस्तान से। तो ये थे नेशनल, इंटरनेशनल और साथ ही साथ कुछ स्पोर्ट्स न्यूज। और अब बारी है आपके एंटरटेनमेंट की, तो चलिए सुन ले जाए एक गीत।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
4: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आज का अखबार। और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं जानकारी और साथ ही साथ सुनवाते हैं आपको कुछ गीत। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस चैलेंज की जिसकी हम बहुत रोज से बात कर रहे हैं, बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, और अब मात्र रह गए हैं 2 दिन शेष। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपनी एक अलग पहचान के लिए जाना जाता है। हमारे देश में बहुत ही अनूठी कहानियां हैं जो कि हमारे देश को सबसे अलग बनाती हैं, और इसीलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की है शुरुआत। और इस पहल के तहत देश के उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर्स, जो कि बहुत सारे हैं, अपने जिले की संस्कृति, अपनी विरासत, अपना पर्यटन, परंपराएं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को किसी भी क्रिएटिव तरीके से डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसका अवसर आपके पास है। इस अभियान के पायलट चरण में चंडीगढ़ को किया गया है शामिल, यानी अभी कुछ ही ऐसी स्टेट्स हैं जिनको शामिल किया गया है, और हम चंडीगढ़ में रहते हैं इसलिए चंडीगढ़ में रहने के नाते आपके पास है ये मौका। तो अब आपको ये बताते हैं कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। आपको करना क्या है कि अपने फ़ोन पर माई वेव्स ऐप को जो डाउनलोड करना है, उस पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर या लॉग इन करना है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, वही सेम यहाँ पर प्रोसेस रहेगा। मोबाइल नंबर पर आए OTP को आपको दर्ज करना है, यानी कि वहाँ पर एंटर करना है। फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज को चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो को अपलोड करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। और खास बात यह है कि हमारा शहर चंडीगढ़ जो है वो इसके पायलट चरण में शामिल है, यानी कि और भी स्टेट्स इसमें शामिल होंगी। और ध्यान दीजिए, आपकी एंट्रीज 30 सितंबर 2026 तक ही स्वीकार की जाएंगी। आज है तारीख 28, यानी कि सिर्फ 2 दिन है आपके पास, तो देर किस बात की है दोस्तों। अगर आप डिजिटल क्रिएटर हैं, कुछ भी क्रिएटिव करना आपको अच्छा लगता है, और आपको कोई भी ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी पता है जो कि लोगों को शायद ही पता होगी, आपको लगता है कि लोगों के सामने आनी चाहिए, तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, ये वीडियो बनाइए और कर दीजिए अपलोड। क्योंकि हमारे शहर, गांव या जिले की किसी खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या कहानी को कैमरे में आप कैद कर सकते हैं।

0: और बन सकते हैं जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का हिस्सा। हमारे देश भारत की असली खूबसूरती उसके हर जिले में छिपे उन अनमोल जेम्स में है जिन्हें दुनिया के सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो चलिए उठाइए ये जिम्मेदारी और बनाकर भेज दीजिए ये वीडियो जल्दी से माई वेव्स पर।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: और दोस्तों इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम का समय भी समाप्ति की ओर है। इसी दुआ के साथ कि आप सब रहें स्वस्थ, खुश और हैप्पी हैप्पी, आपका आज का दिन हो शुभ, इसी प्रार्थना के साथ मैं शारिणी आपसे कार्यक्रम आज का अखबार से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी, इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। देश आज शहीदे आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रधानमंत्री ने भी शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में

श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपने दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर का अतुलनीय योगदान युगों तक स्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी

0: का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों में 179 ट्रैकर्स पर्वतारोहियों और उनके सहयोगी कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ये लोग उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में 13 अलग अलग ट्रैकिंग दलों में फंसे हुए हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ लेकर हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
2: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
3: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
2: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
3: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
1: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
4: हेलो
5: हेलो,
4: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
5: हेलो चंडीगढ़।

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो चंडीगढ़। और कहने को तो ये हेलो चंडीगढ़ है, लेकिन हमारे जो श्रोता हैं वो ना केवल चंडीगढ़ से बल्कि हमारे देश के बहुत सारे राज्यों से हमसे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के जरिए और हमसे अपने विचार साझा करते हैं उन टॉपिक्स पर जो हम लेकर आते हैं। और आप जानते ही हैं कि विषय होते हैं हम सभी से जुड़े हुए, जागरूकता से भरे विषय, जिनसे हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारा जो वातावरण है, हमारा देश है, वो आगे बढ़े और जनमानस के विचारों में हो कुछ बदलाव। तो स्वच्छता की बात हम कर रहे हैं क्योंकि अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था देश में स्वच्छता अभियान और 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन दिवस पर ये संकल्प उन्होंने लिया था और बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया और तब से एक मुहिम चल पड़ी है पूरे देश में। और दोस्तों, इस मुहिम को हमें रोकना नहीं है क्योंकि हमारा देश हमारा घर है, हमारे देश से हम सब हैं, देश है तो हम हैं। इसलिए आइए हम सब स्वच्छता का प्रण लें और अपने देश को साफ रखने में योगदान दें। एक बहुत ही सुखद अनुभव आजकल हम सभी को हो रहा है और वो है सोशल मीडिया पर जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने जो बीड़ा उठा लिया है अपने देश को साफ करने का।

0: एक व्यक्ति से शुरू हुआ था ये काम, और उस लड़के ने अपने गांव में जो तालाब था उसको अकेले ही साफ कर दिया। और उसके बाद ना जाने कितने नौजवान जुड़ गए हैं अपने अपने ज़िले, अपने अपने एरिया की सफाई में, तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए, युवा पीढ़ी देश की जब किसी भी काम को लेने का बीड़ा उठा लेती है ना, किसी भी काम को करने का, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको पीछे नहीं हटा सकती। आज शहीद आज़म भगत सिंह का जन्मदिन भी है, उन्होंने भी बीड़ा उठाया था अपने देश को स्वच्छ बनाने का, अपने देश से अंग्रेजों को भगा देने का, अपनी स्वतंत्रता पाने का। हमें भी देश को स्वतंत्र करना है गंदगी से। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, और हमारे कॉलर्स पहले से ही लाइन पर आ चुके हैं। देखते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर का कहना है, और कौन है हमारे पहले लकी कॉलर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताएं।
1: शालिनी बहन को यश कुमार वर्मा की प्यार भरी नमस्कार।
0: यश भाई को भी हमारी प्यार भरी नमस्कार। यश भाई कैसे हैं आप?
1: और आज मेरा हैप्पी बर्थडे है।
0: आपको बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत शुभ दिन पर आपका जन्मदिन है यश भाई। आज भगत सिंह शहीद आजम का भी जन्मदिन है, लता मंगेशकर जी का भी जन्मदिन है।
1: जी लता मंगेशकर का और अपने
0: जी जी बहुत बहुत बधाई हो। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा हो जाए, आप हमेशा प्रसन्न रहें और अपने परिवार आकाशवाणी परिवार से हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें। जी, और टॉपिक पर क्या कहना चाहेंगे यश भाई?
1: टॉपिक क्या,
0: आइए हम सब स्वच्छता का प्रण लें। जी
1: हेलो।
0: जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है यश भाई, कहें अपनी बात कहें।
1: नहीं, सफाई के बारे में बात कर रहे हैं।
0: जी सफाई के बारे में, आइए हम सब स्वच्छता का प्रण लें। हेलो, आपकी लाइन में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है यश भाई, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही। जी जी, कुछ कुछ डिस्टरबेंस है आपकी आवाज में, कुछ कहना चाहेंगे?
1: मतलब मैं एक बार टॉपिक अपने मुख से बोलिए।
0: जी आइए हम सब स्वच्छता का प्रण लें, ये है हमारा आज का टॉपिक। जी,
1: हम स्वच्छता प्रण तो हर समय जब रेडियो पर टॉपिक बताते हैं ना, वो तो हम पूरे लागू करते हैं अपने मन से।
0: बिल्कुल,
1: और दूसरों को बताते हैं ऐसे ऐसे किया।
0: जी जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि आप जो यहाँ पर हमारे जो भी टॉपिक होते हैं या हमारी जो भी यहाँ से हम बात कहते हैं उसको अपने जीवन में पूरा उतारते भी हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं यश भाई, और इसीलिए आप हमारे बहुत पुराने श्रोता भी हैं और जो भी यहाँ से कहा जाता है वो सब बातें आप लोगों को भी सिखा कर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यश भाई, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की, धन्यवाद। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताएं।
2: नमस्कार जी, हम चंडीगढ़ से बोल रहे हैं जी।
0: जी नमस्कार,
2: हम चंडीगढ़ मोहाली से बोल रहे हैं जी।
0: जी अपना नाम बताइए, मोहाली से कौन बात कर रहे हैं?
2: हाँ जी, मेरा नाम है राधे राम जी।
0: राधे राम जी, जी राधे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: हाँ जी, मैं तो कहना चाहूँगा भगत सिंह की जयंती है, तो भगत सिंह वर्गा बाप तो बन भी नहीं सकता, ना किसी ने बनना है। आजकल दुनिया सेल्फिश हो गई है। ठीक है जी, देखो जो भगत सिंह ने किया है दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में उनके केस पड़े हैं जिनमें आज तक उनको आतंकवादी लिखा गया है, वो किसी ने ठीक नहीं करवाया, वो केस चला के उसको बरी नहीं किया। ठीक है जी, भगत सिंह का नाम सिर्फ वोटों के लिए लिया जाता है, जहाँ यूथ पे ज्यादा थोड़ा बहुत काम लेना हो उसके लिए लिया जाता है, बाकी का कोई काम भगत सिंह का किसी ने किया नहीं ना है। क्या उसके परिवार से किसी को कभी MLA MP बनाया गया, किसी को गवर्नर बनाया गया है, कुर्सियों पर और ही बैठ गए, वो तो सिर्फ कुर्बानी के परवाने थे, उनको किसी चीज की भूख नहीं थी
0: जी।
2: ना वो मुख्यमंत्री के लिए लड़े, ना वो PM के लिए लड़े, वो सिर्फ देश के लिए लड़े। उन्होंने देखा था कि देश के लोगों का क्या हाल है, कैसे आजादी के बिना लोग कुचले जा रहे हैं, वो आवाज उठाई थी उन्होंने। इस आवाज को आगे यूथ को बुलंद रखना चाहिए, जो देश में कोई गलत करता है उसको देश से बाहर करो, जो देश में कोई ठीक करता है उसका साथ दो।
0: राधे जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए भगत सिंह जी जो है ना वो एक विचार है, और

भगत सिंह जी का नाम जब हम लेते हैं तो अपने आप ही हमारे अंदर एक जोश भर जाता है कि देश के लिए जब बात आती है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की, तो हमें ना उम्र का लिहाज होना चाहिए, ना ये देखना चाहिए कि हमारे लिए कोई क्या कर रहा है, हम देश को क्या दे सकते हैं, हम अपने देश के लिए कहाँ तक क्या कर सकते हैं, वो हमें देखना चाहिए। और आज हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। उन्होंने तो हमारे लिए अपनी जान दे दी थी, ना केवल भगत सिंह बल्कि ना जाने आज़ादी के कितने मतवाले थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। हमें तो सिर्फ अपने देश को साफ रखना है, आज स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं। हम अपने घर का कूड़ा निकाल कर सड़क पर जो फेंक देते हैं, तो भाई ये देश हमारा घर है, पहले अपने देश के बारे में सोचिए, फिर अपने घर के बारे में सोचे। जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही आप जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, हम सभी इस बात का ध्यान रखें कि हम उसे भी बिल्कुल साफ सुथरा रखें। चाहे हम किसी ऐतिहासिक जगह पर जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, हम जहां पर भी जाते हैं उस जगह को जब हम वापस आए उससे बेहतर हालत में छोड़कर आने का हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए।

0: का।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं,
3: कदम से कदम मिलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है।
4: इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, आप अपने रेडियो सेट के अतिरिक्त हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके अपने फ़ोन के जरिए भी सुन सकते हैं। और अब देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर, लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 266-0617, 266-0615 और 266-0619। चंडीगढ़ का STD कोड 0172 और विषय, आइए हम सब स्वच्छता का प्रण लें। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना नाम बताएं और कहां से बात करें।
5: नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, फैक्ट्री कामन से।
4: सुरेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
5: जी ठीक ठाक हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद
4: जी।
5: आज के विषय में मेरा विचार है कि हम ये स्वच्छता अभियान में ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग दें, जिससे हमें तो ये अच्छा लगेगा कि हमारे देश की बाहर भी प्रशंसा हो रही है कि भारत में बहुत ही स्वच्छता है, क्योंकि हजारों लाखों सैलानी आते हैं बाहर से और वो ये इम्प्रेशन लेके जाएं कि वहाँ स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब तक हम ये संकल्प नहीं लेंगे तो ये हो नहीं सकेगा जी।
4: बिल्कुल,
5: तो ये बहुत जरूरी है। हम अपना जितना साफ सफाई की तरफ ध्यान देंगे उतनी बीमारी कम फैलेगी, हम निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और देश खुशहाल रहेगा जी, यही मेरा कहना है।
4: बहुत अच्छी बात कही सुरेंद्र जी। देखिए, हमें अपनी, हमारे घर जैसे कोई मेहमान आता है ना, तो हम अपने घर को कैसे सजाते सवारते हैं, कहीं कोई गंदगी ना दिखे, है ना, सब अच्छे से साफ सुथरा करके रखते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से पेश करते हैं। वैसे ही, ठीक वैसे ही अपने देश को भी हमें रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम अपने देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर हम सब ऐसा सोच लेना तो हमारा देश जो है उसकी जो छुटपुट बातें आती हैं कि यहाँ गंदगी है या भारत साफ नहीं है, हालांकि बहुत सारे, और देखिए इनकी कॉल कट गई, हालांकि बहुत सारे ट्रेवलर्स जो आते हैं, ब्लॉगर्स जो आते हैं, वो इस बात का खंडन करते हुए भी वीडियो बनाते हैं कि भारत बहुत ही अच्छा देश है, यहाँ पर बहुत साफ सफाई है और पहले से भारत की जो छवि है बनी हुई वो अब धीरे धीरे बदल रही है, और इसमें हमारा और आपका बहुत योगदान है दोस्तों। इसलिए हम सभी को मिलकर देश को रखना है स्वच्छ। देखते हैं क्या कहते हैं हमारे अगले कॉलर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत।
6: गुड मॉर्निंग मैम।
4: वेरी गुड मॉर्निंग जी। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं?
6: मैं किरण बात कर रही हूँ, शिमला से, कुफरी
4: जी। किरण जी, आपकी ठंडी ठंडी बातें हम तक पहुँच रही हैं, आपने तो बहुत ठंडी कर दी हमारे यहाँ भी।
6: मैम
4: जी, क्या कहना चाहेंगी किरण जी, आप भी अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखती हैं, हैं अपनी ब्रांड एम्बेसडर अपने देश की जी?
6: मैम सबसे पहला ये साफ सफाई हमें अपने घर से ही करनी शुरू करनी पड़ेगी। मैम जब भी मैं अपनी बात कहना चाहूंगी, जब भी मैं जाती हूँ, मतलब मैं अपने साथ एक बैग जरूर रखती हूँ
4: जी,
6: तो जो मतलब हम कुछ भी खाते हैं, चिप्स या कुछ भी बोतल जूस पीते हैं, तो हम वो अपने बैग में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या है मतलब साफ सुथरा दिखे
4: जी,
6: क्योंकि हमारे मैम पिछले मैं तिरस भी बहुत आता है।
4: जी बिल्कुल, अच्छी बात है ये, अपने साथ एक थैला लेकर चलना, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है किरण जी। और जाहिर सी बात है, जब हमारे पास एक पॉलिथीन, एक थैला, कोई भी बैग होगा, तो हम उसमें जो भी हमारी गंदगी साथ में हम फैलाते हैं, कोई भी वेस्ट मटेरियल है, उसे भरकर हम एक ऐसी जगह पर गिरा दें जहाँ पर कूड़ा फेंकने की जगह है, या वापस अपने घर ला सकते हैं अगर हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छा आपकी ये आदत है, और ये आदत अगर सभी लोग अपना लें किरण जी, तो सफाई न जाने

0: सफाई का जो स्तर है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
1: हेलो
0: जी जी,
1: मैं एक बात और कहना चाहूंगी।
0: बिल्कुल जी,
1: मेरी अपनी गाड़ी है, मतलब मैं उसमें भी डस्टबिन रखा हुआ है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो मैम जैसे मतलब जैसे मेरी गाड़ी में कोई बैग पैक है तो रखाता है, तो मैं भी उन्हें भी बोलती हूँ कि बाहर कागज फेंकने की जरूरत नहीं है, डस्टबिन रखा हुआ है उस पे डाल दो।
0: बहुत अच्छा करती हैं आप किरण जी। और देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ना आसपास जब कुछ ऐसा गलत हो रहा होता है, जैसे कोई कूड़ा फैला रहा है या कोई गंदगी कर रहा है या दीवारों पे कुछ उकेर रहा है, तो हम दूसरे व्यक्ति को टोकते नहीं यही सोचकर कि वो हमें आगे से कुछ बोल देगा या उल्टा जवाब दे देगा। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है, भाई हमारे घर पर आकर कोई गंदगी फैला रहा है, हमारे देश को कोई गंदा कर रहा है, चाहे वो हमारे देशवासी अपने साथ ही क्यों ना हो, हमें उनको बोलना पड़ेगा। कई बार लोगों को ये एहसास ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो हमें उन्हें हिला कर बताना पड़ेगा कि भाई ये हमारा देश है, हमारा अपना प्यारा घर है, इसे गंदा नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी हमसे जुड़ने के लिए।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: जहाँ रहती है साफ सफाई, वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई।
2: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में, जिसका नाम है हेलो चंडीगढ़। और दोस्तों, आज हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं। कार्यक्रम का विषय है, आइए हम

0: सब स्वच्छता का प्रण लें। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार जी, मैं नरेंद्र शर्मा सेक्टर 9 पंचकुला से बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ जी
0: जी, नरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे हमारे विषय पर?
1: मैं ये कहना चाहता हूँ जी, घर की स्वच्छता भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी बाहर की है।
0: जी,
1: घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए और आसपास भी अपना लॉन वगैरह और भी चीजें सारी ठीक ठाक रखनी चाहिए। उससे हमारी सेहत भी ठीक रहेगी और आसपास भी ठीक रहेगी।
0: जी,
1: और साफ सफाई से सुख शांति और समृद्धि भी होती है।
0: बिल्कुल, सफाई रखते हैं तो हमारा, अगर हमारे आसपास गंदगी ना हो और सफाई हो तो मन शांत रहता है और व्यवस्थित हो घर भी, तो मन को शांत अगर हम रखते हैं, हमारा मन शांत रहता है तो जाहिर सी बात है काम भी हमारा अच्छे से हो जाता है। हम अगर अपने काम पर निकल रहे हैं तो भी हमारा मन अच्छा रहता है और उससे दिन
1: जी
0: अच्छा गुजरता है। जी
1: दूसरा मैं कहना चाहता था, जो हमारे विजिटिंग प्लेस हैं, आजकल इंडिया में टूरिस्ट काफी आ रहे हैं, लोकल भी आते हैं और
0: जी
1: बाहर से भी आ रहे हैं। जैसे हम कश्मीर का केस ले लें, J&K का,
0: जी
1: वहाँ की आबादी मुझे आइडिया है 1.2 करोड़ है
0: जी
1: और देखिए विजिटर वहाँ पर 1.5 करोड़ जा रहे हैं।
0: जी बहुत विजिटर्स हैं कश्मीर में।
1: जितनी पॉपुलेशन से भी अपना 20% ऊपर है।
0: जी
1: और जब ही हम वहां पर साफ सफाई नहीं रखेंगे, डल लेक में कैन फेंके जाएंगे, बोतलें फेंके जाएंगे, गन डालेंगे तो घट जाएंगे।
0: जी और कितना ख़राब इम्प्रेशन जाता है नरेंद्र जी हमारा बाहर के, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बाहर से लोग आकर हमारे देश में आकर सफाई करना शुरू कर देते हैं,
1: हाँ जी हाँ
0: है
1: जी
0: ना? तो ये हमें, हमारे लिए बहुत शर्म की बात भी है और हमें कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने देश को ही साफ नहीं रख सकते, बाहर के लोग आकर हमारे देश को साफ कर रहे हैं, एक तरह से आप ऐसा सोचिए कि हमारे घर में आकर हमारे पड़ोसी हमारा घर साफ करके जा रहे हैं, तो कितना खराब बात है। तो हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने देश को, अपने घर को, अपने आसपास का जो भी वातावरण है उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें।
1: गवर्नमेंट भी टूरिज्म को बड़ा बढ़ावा दे रही है जी।
0: जी
1: काफी हमारे धार्मिक प्लेस बन गए हैं,
0: जी
1: झील्स हैं, प्लेसेस हैं, हिली प्लेसेस हैं,
0: जी
1: तो ये
0: गवर्नमेंट अपना
1: साफ
0: काम कर
1: सुथरी
0: रही है।
1: रखनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की भी जवाब है। और जो हम यात्री जाते हैं, हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हमारी
0: बिल्कुल
1: सबसे ज्यादा ड्यूटी है ये कि हम गंद डाल के ना आए वहां पर।
0: जी, देखिए गवर्नमेंट का काम है उन जगहों को बनाना और हमारा काम है उसका संरक्षण करना, उसे साफ सुथरा रखना, है ना?
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: ठीक
0: बहुत
1: है।
0: शुक्रिया नरेंद्र जी,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, अपना नाम बताइए
2: नमस्कार मैडम,
0: जी। नमस्कार
2: रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ मैडम, गोराया डिस्ट्रिक्ट जालंधर से।
0: जी रविंद्र जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया है
0: जी रविंद्र जी, स्वच्छता पर आपका क्या संदेश है? आप कैसे स्वच्छ रखते हैं अपने वातावरण को?
2: देखो जी, इंसान ही है कि जो मतलब सफाई के बारे में जानता है, और इंसान को अपना फर्ज भी निभाना चाहिए कि मैं इंसान हूँ और हर जगह मैंने सफाई रखनी है।
0: जी
2: तो मतलब सफाई का जो है ये हर को ध्यान रखना चाहिए, अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। जैसे हम रोज खाना खाते हैं या कुछ और काम करते हैं, ऐसे सफाई करनी भी बहुत जरूरी है। ये
0: बिल्कुल
2: काम ये नहीं होना चाहिए कि दिवाली पे या पंद्रह पे हम करेंगे,
0: जी
2: ये पूरे साल करने वाली चीज है और हर रोज करने वाली चीज है।
0: जी
2: ये
0: बिल्कुल।
2: पंद्रह
0: और
2: मनाना तो हम जागरूकता लोगों को करते हैं, लेकिन हमको ये भी चाहिए कि हम रोजाना अपनी सफाई करें, अपने घर की करें, अपने जहाँ भी हम जाते हैं। तो ये ना समझे कि बाहर कोई हमारा नहीं है, सब हमारे, यह पूरा देश हमारा है।
0: बिल्कुल
2: अगर हम ये अपने मन में धारणा रखेंगे कि हमने कहीं भी सफाई, मतलब सफाई में कोई बाधा नहीं डालनी, कोई ऐसा गंद नहीं डालना, तो हमारे अपने आप सफाई हो जाएगी। क्योंकि देश की जो सफाई का जुम्मा है वो एक एक इंसान के ऊपर होता है, ये नहीं है कि किसी के ऊपर होता है, या हर एक को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए और जिम्मेवारी से आपको बचना नहीं चाहिए, तो तभी हमारा देश है जो साफ होगा।
0: जी
2: बाकी ये भी है कि सफाई का मायना ये नहीं होना चाहिए कि आप सफाई करके दूसरे के आगे गंद डाल दो। सफाई का मतलब ये होता है कि आप साफ सुथरा अपना घर करके जो भी आपका कूड़ा करकट है वो किसी ऐसी जगह पे, सेफ जगह पे डालिए, डंप पे डालिए जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं।
0: जी
2: और कूड़ेदान भी हमेशा ढक के रखना चाहिए, खुले कूड़ेदान में दूसरे जानवर है जो उठा के ले जाते हैं और फिर ज्यादा गंद डालते हैं।
0: जी
2: तो मतलब जो भी आपका डस्टबिन है वो ढका होना चाहिए, मतलब हर पास से सफाई का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी बात है।

0: बिल्कुल,
1: तो
0: देखिए
1: इससे
0: सफाई
1: हमारी, जी,
0: सफाई रखने से हम बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे बच सकते हैं। एक तो सफाई रखते हैं तो हमें खुद को अच्छा लगता है ना।
1: बिल्कुल
0: दूसरा,
1: बिल्कुल
0: बीमारी से हम बच सकते हैं अगर अपने आसपास हम, जैसे कई बार अब आजकल के मौसम में डेंगू मलेरिया के केसेस हमारे सामने हमें देखने को मिलते हैं। अगर
1: बिल्कुल
0: हम
1: बिल्कुल
0: ध्यान रखें कि हमारे आसपास कहीं भी गंदगी ना हो, कहीं पानी इकट्ठा नहीं हो रहा हो, तो ये बीमारियां भी हमारे आसपास नहीं फटकेंगी।
1: बिल्कुल, हमको दूसरे देशों से भी थोड़ा सबक लेना चाहिए। दूसरे
0: जी
1: देशों के जब हम वीडियोस वगैरह देखते हैं तो देख के मन खुश हो जाता है, कैसे उनके दरिया जो समुंदर हैं जो कैसे साफ सुथरे हैं और उनके सड़कों पर कितनी सफाई है। तो
0: बिल्कुल,
1: मतलब वो ही जो भावना वो अपने देश में भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने देश में गंद डालें और बाहर जाके हम सफाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो
0: बिल्कुल
1: हमारा पैमाना है जो अपने अंदर जो इंसानियत है ना वो जगा के रखनी चाहिए, कि हम किसी भी, चाहे कोई भी टूरिस्ट पे जाते हैं, कोई जगह पे जाते हैं, तो वहां पे हमको सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो अपनी जिम्मेवारी हर एक को निभानी चाहिए, तभी देश जो है साफ सुथरा हो सकता है।
0: देखिए, और हमारे देश में भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण, सिक्किम में अगर आप चले जाएं, वहां पर
1: जी
0: लोग इतनी सफाई का ध्यान रखते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई कचरे का पैकेट, कोई बिस्किट का पैकेट, कोई रैपर, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वहां पर
1: जी
0: लोग इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, इतने अनुशासन में रहते हैं कि चाहे वो सड़क पर चलने की बात हो या फिर गंदगी की बात हो, वो लोग बहुत प्यार करते हैं अपनी स्टेट को, अपने देश को। और वो भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है अपने ही देश में, उनको देखकर अगर हम सीखें तो भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, सीख हम
1: जी
0: किसी से भी सकते हैं, बस बात यह है कि हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम,
0: जी,
1: ठीक है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी हमसे जुड़ने के लिए,
1: हाँ,
0: शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
5: हम सब ने मिलकर ठाना है स्वच्छ भारत बनाना है।

0: जहाँ रहती है साफ सफाई, वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, और श्रोताओं आज हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की, कि हम सब मिलकर स्वच्छता का प्रण लें। आइए हम सब स्वच्छता का प्रण लें और अपने देश को स्वच्छ बनाएं। तो देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, अपना नाम बताएं।
3: मैडम नमस्कार
2: जी। नमस्कार
3: मैडम, संकट मोचन शिमला से प्रदीप बात कर रहा हूँ।
2: वाह प्रदीप जी, संकट मोचन शिमला से आप बात कर रहे हैं
3: जी मैम,
2: और बहुत बहुत ही ज्यादा आपकी आवाज में इतनी खुशी होती है ना, बहुत एनर्जी हमको भी मिल जाती है आपकी आवाज सुनते ही जी।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू
2: जी। कैसे हैं आप?
3: मैडम बिल्कुल ठीक ठाक है।
2: चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज हमारे विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैडम आज के विषय पर तो मैं यही कहूँगा कि स्वच्छता जो है इसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है
2: जी,
3: और हमें जो है मतलब सफाई का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और सफाई से चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ रहता है और हमें खुली हवा में सांस लेने का भी आनंद आता है।
2: वाह क्या बात कही आपने। और आप तो खुली हवा में सांस लेने
3: जी। हाँ जी, सफाई को जो है वो हमें

0: अपने जीवन में एक आदर्श की तरह अपनाना चाहिए
1: जी।
0: और हम आसपास की सफाई रखेंगे उतना हमारा आसपास का वातावरण भी स्वच्छ और सुंदर लगेगा।
1: बिल्कुल, जितना हम अपने आसपास सफाई रखेंगे। और देखिए राजीव जी, हमें खुद को कितना अच्छा लगता है जब हम दिवाली पर अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, एक एक कोना अच्छे से चमकाते हैं, घर के पुराने कपड़े, कोई पुराना सामान हो वो निकालते हैं और अच्छे से चमका देते हैं अपने घर को, तो वो तसल्ली, वो संतुष्टि जो हमको होती है ना, अगर अपने देश को भी हम वैसे ही साफ रखने का बीड़ा उठा लेना राजीव जी, तो हमारे देश जैसा वैसे तो कोई देश है ही नहीं, लेकिन सफाई में भी हम नंबर वन हो जाएंगे।
0: बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम। और यही नहीं कि मतलब जब कोई त्योहार आए तभी हम अपने घर को चमकाए और साफ रखे, ये तो हमें एक आदत बनानी चाहिए, हमें डेली जो है इस आदत को बनाना चाहिए अपने अंदर जो है रख।
1: जी, हमें हर रोज अपने घर को, तो देखिए राजीव जी, घर को तो हम सभी साफ करते ही हैं, है ना। और हम इस समय बात कर रहे हैं स्वच्छता की, अपने आसपास के वातावरण की। ऐसा नहीं है कि अपने घर में तो हमने सफाई कर ली लेकिन आसपास कूड़ा फैला दिया, है ना, साथ में अगर कोई खाली प्लॉट है तो वहां पर कूड़ा डाल दिया, या कोई भी अगर अपने घर का खराब सामान है वहां पर फेंक दिया, या कहीं पर अगर आप सार्वजनिक स्थल पे जा रहे हैं वहां आप गंदगी फैला रहे हैं, वहां पर आप अपने खाने की जूठी प्लेटें कहीं भी फेंक रहे हैं, कहीं पिकनिक पर गए हैं पहाड़ों पर, वहां पर लोग कुछ भी फेंक कर आ जाते हैं, तो बहुत दुख होता है, पहाड़ों की सुंदरता हो या फिर मैदानों की हो, अपना देश तो अपना देश है ना। हम कोई भी राज्य हो, कहीं भी हम ट्रेवल करें या हम अपने घर पर हो, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें बस।
0: जी मैम, वही बात है
1: जी।
0: अब कई बार कई लोग जो है ना वो गाड़ी से खाली पैक करके सड़क पर फेंक देते हैं
1: जी,
0: और ये पर्यटकों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि सफाई को जो है मतलब अपने जीवन में एक खास स्थान दे।
1: बिल्कुल,
0: और आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में जागरूक करे कि सफाई का हमारे जीवन में कितना महत्व है।
1: राजीव जी देखिए, हमें उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अगर वो हमें ऐसा करते हुए देख लेंगे ना तो वो अपने आप ही वो करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए कहते हैं ना कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, उनको हम जो बोलकर समझाते हैं वो उनकी समझ में उतना नहीं आता है जितना हमें देख कर आ जाता है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे बात करने के लिए।
0: हेलो
1: जी
0: मैडम, प्रदीप बोल रहा, प्रदीप बोल रहा हूँ मैं।
1: माफ कीजिएगा प्रदीप जी आपका नाम हमने गलत बोल दिया।
0: थैंक यू,
1: जी जी, लेकिन बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, ये बात सच है प्रदीप जी।
0: अरे ये सारा आपका आशीर्वाद है मैम।
1: जी जी जी, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपका स्वागत है जी, अपना नाम बताइए।
2: मैडम जी नमस्कार, मैं गौरव गुप्ता कुमारहट्टी से बोल रहा हूँ जी।
1: गौरव जी कैसे हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: आप सुनाइए, हम तो बस बढ़िया है मैडम जी, आज मौसम ठंडा हो गया इधर भी
1: जी, बहुत खुशगवार है मौसम हमारे यहाँ पर, आपके पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है तो हमारे यहाँ मैदानों में भी ठंडी हवा पहुँच जाती है।
2: बिल्कुल मैडम
1: जी जी, और स्वच्छता पर क्या कहना चाहेंगे गौरव जी।
2: स्वच्छता में मैडम जी बस यही है कि हर एक इंसान को स्वच्छता के लिए जागरूक रहना चाहिए, जब तक जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, जागरूक तो बहुत जरूरी है
1: जी, जागरूकता बहुत जरूरी है, और अपने घर के साथ साथ अपने देश को, अपने आसपास को साफ रखना बहुत जरूरी है, और इस पर बात करना कितना जरूरी लगता है।
2: गंदगी होती थी हर जगह
1: जी,
2: पंजाब में तो बहुत ज्यादा है आपके तो, हमारे हिमाचल में फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन टूरिस्ट की वजह से वो डस्टिंग बहुत हो जाती है
1: जी, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, और उसमें भी हमारा बहुत योगदान है गौरव जी, हम जो धीरे धीरे धीरे पोल्यूशन जो है उसकी वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अगर सफाई हम रखेंगे, पॉलिथीन का अगर उपयोग बिल्कुल कम से कम करेंगे, है ना, घर से थैला लेकर जाएंगे, और देखिए पॉलिथीन से भी कितनी गंदगी हो जाती है, हालांकि हम सिर्फ पॉलिथीन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह की गंदगी हम ना फैलाएं, आज हम ये बात कर रहे हैं। तो
2: रैपर तो देखो ना जी, जो अभी जैसे कुरकुरे के रैपर हैं, ये दूध के प्लास्टिक के रैपर आ रहे हैं, उसमें जो पैकिंग आती है ये ज्यादा गंदगी पड़ती है, बाकी तो चलो गल जाता है, ये प्लास्टिक इतना है
1: जी,
2: गलता भी नहीं, इसको जलाओ तो इसका भी मतलब जलाने पे भी इसकी जो धुआं निकलता है वो भी शरीर के लिए हानिकारक।
1: बिल्कुल, उसका हानिकारक, और देखिए पॉलिथीन तो एक ऐसा जहर है जो हमारी धरती में जब पड़ जाता है तो ना जाने कितने साल पड़ा रहता है ना, और बंजर जमीन को कर देता है, एक ऐसा जहर है जो खत्म करना बहुत जरूरी है, और इस पर मुहिम जो है वो छिड़ी हुई है, लेकिन ना जाने कितना वक्त इस पर लगेगा। फिलहाल हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, तो हम जितना अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना हम सब जरूर करें।
2: जी मैम जी, मैं अभी लद्दाख गया था, रास्ते में
1: जी
2: प्लास्टिक की बोतलें देखी हमने, वहाँ ढेरों रखी हुई है, पता नहीं किस कारण, कहते कि कोई ड्राइवर किसी को प्यास

0: लगी थी तो कुछ धारणा रखी है ऐसी, लेकिन वहाँ हजारों के हिसाब से प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है अभी।
1: देखिए कितनी खराब बात है, देखिए इतने ऊंचाई पर भी लोग जाकर
0: इतनी हाइट पे जाके आप देखोगे रास्ते में बिल्कुल सड़क के साथ पड़ी है
1: जी।
0: मैं तो समझता हूँ कि पता नहीं लोग कैसा मतलब भावना लोगों की
1: जी,
0: क्या चीज है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा
0: देखने से हैरानी होती है कि इतनी प्लास्टिक की बोतलें पूरा एक मेरे ख्याल में 10-12 ट्रक जो है पूरे भर जाएंगे यदि उसको इकट्ठा किया जाए तो।
1: जी जी जी देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग एक दूसरे से सुनकर कुछ कुछ धारणाओं को ऐसे मान लेते हैं और उसी को सब लोग देखा देखी करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात
0: बिल्कुल
1: नहीं है,
0: जी
1: है ना। हमें अपना अपनी तरफ से अपने बुद्धि और विवेक का जो है प्रयोग करना चाहिए कि अगर ये प्लास्टिक की बॉटल इतने ऊंचे पहाड़ पर कोई रख कर जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, है ना। इतना पुराना पानी वैसे भी कोई क्या ही पी लेगा, और अगर पानी हमें पीना है तो अपने साथ हम अपनी बोतल लेकर जाएं, अपनी स्टील की या कांच की
0: बिल्कुल
1: बोतल लेकर जाएं, उसका पानी पिएं और जब वक्त आए तो उसे दोबारा से भर लें, है ना
0: जी मैडम,
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए।
0: थैंक यू मैडम जी, थैंक यू।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, आओ स्वच्छता का प्रण ले। इस विषय पर आज हम कर रहे हैं बात और देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी।
1: हेलो
0: जी, हेलो, नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार जी।
0: जी अपना नाम बताएं।
1: आशुचु गशुनी पंचकुला सेक्टर 9 से बोल रहा हूँ जी।
0: जी आशु जी, कैसे हैं आप?
1: बस आपका है सब प्यार है, सब ठीक ठाक
0: जी। आशु जी क्या कहना चाहेंगे आज?
1: मैम देखिए, आज की डेट में ना हर लोग ज्यादातर प्रिपेयर हो रहे हैं सफाई की तरफ। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है लोग जागरूक।
0: जी
1: जागरूक हमारे को जो आने वाली जनरेशन है ना वो बहुत कर रही है
0: जी,
1: क्योंकि आजकल स्कूलों में देखेंगे आप सफाई के ऊपर मैडम जो है, टीचर्स जो है वो बोलती रहती हैं और पेरेंट्स भी इस बात को ध्यान दे रहे हैं
0: जी।
1: तो ये नहीं है कि अब सफाई के ऊपर है, अभी थोड़ी सी हमारे को लोगों को
0: जी
1: कुछ गौर करने की, पर ये नहीं है कि हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, आज आप स्टेशन पे जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं या मेट्रो को ही देख लें, मेट्रो को कितने साल हो गए चलते हुए को, देखिए आज भी वहाँ सफाई का ऐसा रहता है कि जैसे वो नहीं है ट्रेन।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल
1: तो थोड़ा सा जागरूक हम और हो जाएं तो हम इसको, ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम इसको भी एक अच्छे दौर की तरफ ले जा सकेंगे।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल,
1: तभी तो आज
0: इसको एक आंदोलन बनाना पड़ेगा आशु जी। जैसे कि हम किसी भी चीज़ का बीड़ा उठा लेते हैं, हम सभी को अपने देश के लिए एक सिपाही की तरह खड़े हो जाना पड़ेगा कि हमें अपने देश को साफ करना है, कहीं भी गंदगी दिखे तो उसे साफ करना है, कोई गंदगी फैलाता हुआ दिखे तो उसे समझाना है, उसे समझाकर बताना है कि भाई ये हमारा घर है, हमारा देश है, इसे हमें गंदा नहीं बल्कि साफ रखना है।
1: बस थोड़ी सी जो समस्या है ना वो आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे जिस चीज़ का, वो था पॉलीथिन का
0: जी।
1: देखिए पॉलीथिन क्या है कि पॉलीथिन एक तो धीरे धीरे स्लो पॉइजन तो बन ही रहा है,
0: बिल्कुल।
1: और हर घर में जो भी मतलब आप देखेंगे कूड़ा भी डालना है और किसी के और फेंकना भी है तो पॉलीथिन में ही डाल के फेंका जा सकता है। अगर पॉलीथिन 100% बैन हो जाए या कुछ ऐसा समस्या से निजात मिल जाए तो पॉलीथिन से हमें बहुत बेनिफिट होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आशु जी। और एक एक जीनी होता है ना, वो जीनी अगर कोई विश, कहते हैं कि अगर आपसे कोई उससे विश मांगे तो विश मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की यही होगी कि पॉलीथिन जो है वो इस दुनिया से गायब हो जाए, है ना, क्योंकि पॉलीथिन ने बहुत जहर फैला दिया है। पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन पॉलीथिन की वजह से हो रहा है, हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारी हवा, सब कुछ दूषित हो गया है।
1: इसका भी आपने ताजा उदाहरण नेपाल में देखा ही है, देखिए कैसा हुआ। और हर साल 2 साल बाद हम मनाली वाली साइड पर ही देखते हैं क्योंकि वहाँ टूरिस्ट ऑफ जो वहाँ की गाड़ियों का पोल्यूशन, जितनी गाड़ियां वहाँ इकट्ठी हो जाती है वहाँ पोल्यूशन होता है। तो हमें उस चीज से बचना है जो नेपाल में त्रासदी हुई है, हम ये कोशिश करें कि वो हमारे हिंदुस्तान में या किसी भी और मुल्क में भी ना हो,
0: कहीं पर भी।
1: देखिए नुकसान तो नुकसान है।
0: बिल्कुल, देखिए वसुधैव कुटुंबकम, हम तो सारी धरती को सभी को अपना परिवार मानते हैं और चाहे वो हमारा देश हो, हमारे पड़ोसी देश हो, हमें सभी की फिक्र रहती है और होनी भी चाहिए क्योंकि हम सभी आखिरकार मानव हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ मुसीबत के समय में खड़े रहें। आशु जी,
1: और आने वाला पल मैं कहना चाहूंगा, आने वाला पल हमारा स्वच्छ हिंदुस्तान जरूर बन के रहेगा, हमारी नई जनरेशन इस तरफ बहुत ज्यादा जागरूक है।
0: चलिए तथास्तु, भगवान करे ऐसा ही हो कि हमारा देश जो है वो स्वच्छता में नंबर वन आ जाए पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आशु जी हमसे जुड़ने के लिए आज, धन्यवाद
1: जी।
0: और देखिए आशु जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हमारा देश जो है वो स्वच्छता में बहुत आगे आ जाए और हम सभी के प्रयासों से ऐसा एक दिन जरूर होगा।

0: हमारी जो पीढ़ी है वो उसने बीड़ा उठा लिया है सफाई का। हम सबको साथ मिलकर चलना है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबको ये समझ कर चलना है कि बस अब हमें अपने देश को सफाई में सबसे आगे लाना है, कहीं पर भी पीछे नहीं रहना है, ताकि जब भी भारत की बात हो तो यही बात हो स्वच्छता के बारे में कि भारत दुनिया की सबसे साफ कंट्री है ना। तो चलिए हम सब ये प्रण आज लेते हैं और अब हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्ति की ओर है, इसी दुआ के साथ कि आपका आज का दिन हो शुभ, आप सब रहें स्वच्छ, अपने आसपास को भी रखें स्वच्छ। मैं शालिनी अब आपसे लेती हूँ कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ से अनुमति। जाते जाते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी, हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब गाने सुहाने।

ये मीठी सी सुरीली सी आवाज आपने सुनी, और इस सुरीली आवाज में सुहाने से गाने सुन लेना तो बस मन किसी दूसरे संसार में ही चला जाता है। हाँ दोस्तों, आज के सुहाने गाने हम सुनेंगे लता मंगेशकर की ही आवाज में। स्वर कोकिला कहलाने वाली ये आवाज आप जानते ही हैं, भारतीय संगीत का प्राय बन गई है। हमारे संगीत में ये आवाज ना गूंजे तो कहाँ इतना रुतबा रहता है हमारे संगीत का। जी हाँ, लता मंगेशकर की बात हम कर रहे हैं, जिनके गाए हुए गीत रात दिन हम गुनगुनाते रहते हैं। और आप भी अपने सुरों से 8 दशकों तक संगीत जगत में छाई रही हैं। वो 30 से भी ज्यादा भाषाओं में हजारों गीत गाए हैं उन्होंने, और ऐसा करके एक ऐसी अव्वल जगह बना ली जिसे हासिल करना कभी किसी के बस में रहा ही नहीं। सुरों की मल्लिका हैं लता जी। आज हम जन्मदिवस मना रहे हैं उनका, उन्हीं के गीत सुनकर और आपको सुनवाकर। दोस्तों, इतना तो आप भी मानते होंगे कि ये आवाज जैसे दैवीय आवाज है, बड़ी ही पावन पवित्र, यूं लगता है जैसे निर्मल धारा की तरह बह रही है, और इसे सुन सुनकर आज भी हम आनंदित हुए जाते हैं। वैसे आपको बता दें, आज ही के दिन 1929 में इंदौर में पैदा हुई थी, और ऐसी प्रसिद्धि इन्होंने पाई कि सदा के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों पर चमक उठी हैं। तो आज आइए सुनते हैं इन्हीं के गाए कुछ और गीत।

लता जी की अनूठी आवाज ने संगीत संसार को अपनी सुरों से बांधे रखा है। 1949 में जब महल फिल्म का गीत आएगा आने वाला गूंजा, तो सब इस आवाज के जादू में जैसे खो गए। फिर तो बरसों तक हर घर में सुबह शाम ये आवाज गूंजने लगी। ये आवाज सीमाओं में नहीं बंधी, समय और सीमा लांघ कर सुनने वालों के दिलों पर राज किया है इस आवाज ने। देश विदेश में लाखों चाहने वाले हैं इस सुरीली आवाज के। हमारी हर जज्बात को सुर दिया है लता जी ने। हमारे बचपन की मासूमियत हो, जवानी की मोहब्बत हो, या फिर ढलती उम्र के सुकून को भी अपनी दिलकश स्वर में पिरोया है। कभी हमें खुशी की फुहारों में भिगोया, तो कभी उदासी की गहराइयों को भी महसूस करवाया। बस यही कशिश है इस आवाज की।

समय बदलता गया, दौर बदलता गया, लेकिन जो नहीं बदला वो था लता जी की गायकी का अंदाज। अभिनेत्रियां आईं, अभिनेत्रियां गईं, लेकिन लता जी की आवाज़ हर अभिनेत्री पर सजती रही।

जाने क्यों ऐसा लगता है इस सुरीली आवाज के बिना जैसे हमारी सुबह की शुरुआत ही नहीं होगी या फिर रात की तन्हाई मुकम्मल नहीं होगी। ऐसी कशिश है कि बस रूह में उतर जाती है। वैसे दोस्तों आज मौसम बड़ा सुहाना है तो हमने लता जी के गाए मौसम से जुड़े सुहाने गाने चुन लिए आपके लिए। सुर कोकिला लता मंगेशकर ने प्रकृति के खूबसूरत तत्वों जैसे बारिश, हवा, घटा और मौसम को अपनी जादुई आवाज में पिरोकर कई सदाबहार गीत गाए हैं और बहुत लोकप्रिय भी हुए हैं, तो हमने वही गीत चुने हैं आपके लिए।

तो दोस्तों, जब तक इस दुनिया में मोहब्बत रहेगी, उदासी रहेगी, खुशी रहेगी, हर भाव रहेगा, तब तक लता जी की आवाज़ हमारे संग संग ही रहेगी। आप जानते हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हमेशा नंगे पैर जाती थीं वो, संगीत को ही अपना मंदिर मानती थीं वो। उनके गाए हुए खूबसूरत नगमे गीत हमारा मन बहलाते रहेंगे हमेशा के लिए।

हमारी श्रोता सुन रही थी आज लता मंगेशकर के गाए कुछ गाने सुहाने। कुछ ही देर में अब आप सुनेंगे प्रोग्राम शेर व नगमा, लेकिन उससे पहले संदेश।

हमारी श्रोता सुन रही थी आज लता मंगेशकर के गाए कुछ गाने सुहाने। कुछ ही देर में अब आप सुनेंगे प्रोग्राम शेर व नगमा, लेकिन उससे पहले संदेश।

0: 2866 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे,
2: SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
3: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं। अब पेश है आपके लिए प्रोग्राम शेरो नगमा। मैं हूं आपके साथ सुनीता भगत। प्रोग्राम में सभी सुनने वालों का स्वागत है।

मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे लफ्ज़ों में पूरी तरह से नहीं बांध सकते, शायद मुमकिन ही नहीं। कभी ये पहली नज़र की खुशी बनकर दिल में उतर जाती है, तो कभी किसी की याद बनकर आंखों में ठहर जाती है, और पहली मोहब्बत का एहसास ही कुछ अलग होता है।

कुछ ऐसा ही जादू है मोहब्बत का। एक ही शख्स का ख्याल बार बार आने लगता है, चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक मीठी सी हलचल महसूस होती है, और फिर जैसे कोई गीत हमारे दिल की बात कह लेता है।

प्यार हो और उसका इजहार ना हो तो कहानी कुछ अधूरी सी लगती है, पर कभी आंखें कह देती हैं तो कभी मुस्कान, और कभी कोई गीत वो बात कह देता है जिसे जुबां कहने से झिझकती है।

मोहब्बत की कहानी में मिलना जितना खूबसूरत है, बिछड़ना उतना ही मुश्किल। लेकिन कुछ रिश्ते दूर रहकर भी दिल से दूर नहीं होते। सामने ना भी हूँ, फिर भी उनकी आवाज़, उनकी बातें, उनकी यादें हमारे आसपास ही बनी रहती हैं।

कितना अजीब है ना दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग अपनी मोहब्बत की कहानी शायद कभी किसी को ना बता पाएं, लेकिन कोई गीत बजता है ना तो लगता है अरे ये तो बिल्कुल मेरे दिल की बात है। शायद इसीलिए मोहब्बत और संगीत का रिश्ता इतना गहरा है।

0: आप सुन रही थी प्रोग्राम शेरो नगमा। प्रोग्राम का समय यहाँ पर ख़त्म हुआ। सुनीता भगत को दीजिए अनुमति। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने को हैं आकाशवाणी दिल्ली से। अब हम आपके लिए समाचार रिले करेंगे।
1: प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले

0: एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गई हैं। इस वार्षिक बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग पर विशेष बल दिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधा तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर पर्यटन से जुड़ी सेवाओं और जानकारी के लिए एक साझा डिजिटल व्यवस्था, नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने कम उम्र में ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें शतरंज ओलंपियाड में नोना गाप्रदाश्वली ट्रॉफी जीतने पर भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खिलाड़ियों की जुनून और दृढ़ संकल्प की सराहना की। जापान में आयोजित एशियाई खेलों 2026 में भारत की ईशा सिंह ने आज आईची नागोया में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने आईची नागोया में महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम गरम को हराया। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। गत चैंपियन भारत को ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होने के कारण सेमीफाइनल में जगह मिली है। सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और नेपाल, कृपया दोबारा सुने, सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 12:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल, जो हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।
3: सुनवा रहे हैं उन्हीं के अभिनीत फिल्मों से गीत।

शान की आवाज में सांवरिया फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, समीर के बोल, मोंटी शर्मा का संगीत। आइए अब सुनते हैं वेकअप सिड फिल्म से यह अगला गीत। क्लिंटन सर्जो, डोमिनिक सर्जो और लॉय मेंडोसा की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, बस अभी लौटते हैं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में अभिनेता रणबीर कपूर अभिनीत फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है।

0: अजय प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म के गीत का गीत आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर और सुजैन डिमेलो की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रॉकस्टार फिल्म का ये गीत सुनिए, मोहित चौहान की आवाज है, इरशाद कामिल ने इसे लिखा, ए आर रहमान का संगीत।

0: अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
3: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
2: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
4: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आपने सुना जग्गा जासूस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और अमित मिश्रा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अभिनेता रणबीर कपूर अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा

0: एनिमल फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, सोनू निगम की आवाज, राजशेखर के बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का, माफ कीजिएगा, हर्षवर्धन रामेश्वर का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: जश्न

0: विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: तीन अक्टूबर को विविध भारती में कौन आ रहे हैं ये तो हम आपको अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ये जवानी है दीवानी फिल्म का अगला गीत आपको सुनवाने वाले हैं बेनी दयाल शेफाली अलविज का, की आवाजें हैं अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत। और हाँ, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ये जवानी है दीवानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बैंड दयाल और शेफाली की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध

0: आरती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार दिव्यांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बेनी दयाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे रॉकेट सिंह फिल्म से गीत, जयदीप साहनी के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल, जिसमें अभिनेता रणबीर कपूर के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में शेखर अस्तित्व के बोल आपने सुने। विक्रम मोंटोरसे ने इसे संगीत से सजाया। संजू फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम यादों की महफिल में अब सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत, तमाशा फिल्म के इस गीत में।

FM 107.2 MHz पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, एक बजा है, आइए अब हम आपको अपने अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी ही देर में 1:05 पर प्रादेशिक हिंदी समाचार आप सुनेंगे।

प्रादेशिक हिंदी समाचार शाम 6:10 पर भी सुनवाए जाएंगे। प्रादेशिक पंजाबी समाचार हम आपके लिए दोपहर 1:10 पर और फिर शाम 6:20 पर अपने जालंधर केंद्र से रिले करेंगे। हमारे यहाँ से फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 1:15 पर और फिर शाम 5:05 पर भी। श्रोताओं, विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे आपके लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुलीला सफ़र दोपहर 1:30 पर। वहीं से दोपहर 2 आप सुना करते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी। आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे पहले दोपहर 2:15 पर, फिर शाम 5, शाम 6, रात 8:45 पर और श्रोताओं रात 11 भी। अपने मुंबई केंद्र से सदाबहार नगमे सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। वहीं से दोपहर 3 सखी सहेली कार्यक्रम होगा। शाम 4 पिटारा कार्यक्रम होता है श्रोताओं, और आज इस कार्यक्रम में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह के साथ की गई बातचीत होगी। आज का विषय है PCOD और IVF।

शाम 5:30 पर हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। श्रोताओ, हिंदी में समाचार समीक्षा भी आप सुनेंगे हमारे केंद्र से, सभी रहेगा शाम 6:30। शाम 6:35 पर कुछ पंजाबी गीत सुनिएगा। विविध भारती के मुंबई केंद्र से सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जयमाला आप सुना करते हैं शाम 7:00। 7:45 पर हमारे केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार प्रसारित किए जाएंगे। प्रादेशिक मुख्य समाचार आप रात 10:30 पर भी सुन सकते हैं। रात 8:00 विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले किया करते हैं आपके लिए श्रोताओं कार्यक्रम हवा महल। आज इस कार्यक्रम में कुमुद नागर की लिखी झलकी सुनवाई जाएगी नई कमीज। कुछ नए फिल्मी गीत सुनना चाहें तो चित्रलोक कार्यक्रम में सुन सकते हैं रात 8:15 पर। ये कार्यक्रम भी हम अपने विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। आपके लिए ये कार्यक्रम होगा रात 9:00। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम है रात 9:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम होगा और आज का ये कार्यक्रम अभिनेता रणवीर कपूर पर है। उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत आप सुना करते हैं रात 10:00 जो हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया करते हैं। आज ही कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करेंगी उद्घोषिका सलमा सैयद। तो श्रोताओं, ये था विवरण हमारे अब से लेकर रात तक के प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का।

0: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओं, 1:05 हुए हैं। अब आप प्रादेशिक हिंदी समाचार सुनेंगे। इसके फौरन बाद 1:10 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार हम आपके लिए आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगत सिंह ने अदम्य साहस और वीरता के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भगत सिंह की भावना भारत के युवाओं के साहस और संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो भी साझा किया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भी शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपना संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। भाजपा ने आज विपक्षी दलों पर देश की स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और कमजोर करने का आरोप लगाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विपक्षी नेताओं पर जनता को गुमराह करने और देश में भ्रम पैदा करने का

0: लगाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विपक्षी नेताओं पर जनता को गुमराह करने और देश में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया।
1: देश 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम से विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर रहा है, वैश्विक मंच पर भारत का डंका बज रहा है, तब दुर्भाग्य से कांग्रेस और पूरी इंडी गठबंधन देश की इस प्रगति को देखकर कुंठित और हताश है।
0: उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा उनके दावों को खारिज किए जाने के बावजूद विपक्षी माहौल को दूषित कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य सत्ता हथियाना, वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना है। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर कल रात IBA और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अंबाला शहर के धूलकोट गांव में कल एक निर्माणाधीन मकान की छत ढहने से हुई दुर्घटना में मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या 6 हो गई है, जबकि 9 मजदूर घायल हैं। हादसे के समय इमारत में अनेक मजदूर काम कर रहे थे। कल देर रात तक बचाव कार्य जारी रहा। अंबाला के जिला प्रशासन के अधिकारी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे को हटाया। उपमंडल अधिकारी दर्शन कुमार ने स्पष्ट कहा कि घायलों को उपचार के लिए अंबाला शहर नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इमारत के स्वीकृत नक्शे और प्रशासनिक दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। सेवा संकल्प अभियान के तहत जींद के गांव दनौदा में सर्वजातीय बिनैन खाप के चबूतरे पर विशाल निशुल्क मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में क्षेत्र के ग्रामीणों, प्रबुद्ध नागरिकों तथा जरूरतमंद लोगों ने स्वास्थ्य जांच करवाई। इस तरह गांव में ही निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने से ग्रामीणों को सुविधा मिली। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र की आधारशिला है। लोगों को समय पर स्वास्थ्य जांच और चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे शिविर महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जनसेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य समाज के जरूरतमंद वर्ग तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पंचकूला के यवनिका पार्क में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। समारोह में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मंच के प्रधान जगदीश भगत सिंह ने कहा कि समारोह के दौरान जिले के अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ पंचकूला के 15 सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के उन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में अपने अपने विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मान पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

श्रोताओं, प्रकृति की गोद में जब हम होते हैं तो मन यूं ही मचल जाता है। ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति जैसे एक खूबसूरत किताब की तरह है, जिसका हर पन्ना एक नई कहानी कहता है। कहीं पहाड़ों की ऊंचाई है तो कहीं नदियों की रवानगी, कहीं पेड़ों की ठंडी छांव और कहीं हवा की मीठी सरसराहट। प्रकृति के करीब कुछ पल बिताना जैसे खुद से मिलने जैसा है।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे कहा, प्रकृति के करीब कुछ पल बिताना जैसे खुद से मिलने जैसा है। पत्तों पर ठहरी ओस और पक्षियों की चहचहाट मन को बिना कुछ कहे ही सुकून दे जाती है। कभी आसमान को निहारिए, कभी बादलों की बदलती आकृतियों को देखिए। प्रकृति हर पल कुछ नया रचती है, हमेशा इसकी खूबसूरती हमारे आसपास ही रहती है।

0: विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में विविध भारती के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफर। उससे पहले ये संदेश।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम विविध भारती की मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। तो सबसे पहले आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरीला सफर।
2: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
3: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
2: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
4: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
2: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
5: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गीतों से सजी है ये हमारा ये कार्यक्रम। और हमारे साथी कह रहे हैं कि अगर मैं लता जी से मिलता तो सिर्फ एक ही गाना गाने का अनुरोध करता, ए दिले नादान फ्रॉम रजिया सुल्तान। वही हमारे रजिया सुल्ताना फिल्म। और हमारे एक साथी कह रहे हैं मधुमती फिल्म का नाम पूछना यानी कि मैट्रिक के विद्यार्थियों से दो का पहाड़ा पूछना। पर कभी कभी अच्छा लगता है ना मैट्रिक के विद्यार्थियों को भी दो का पहाड़ा बताना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आजा रे परदेसी ये गाना मेरे पापा जब काम पर चले जाते थे तो हमारी माँ ये गाना गाकर मेरे पापा को याद किया करती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये गाना केवल गाना नहीं बल्कि लता मंगेशकर, सलिल चौधरी और शैलेंद्र की त्रिमूर्ति द्वारा रचा गया संगीत का एक उत्कृष्ट दस्तावेज है। गीतों में एक अलौकिक रहस्य और तड़प है। लता जी ने अपनी आवाज में जो पुकार और कंपन पैदा किया सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देता है। आजादी के बाद जो आलाप और गूंज है वो पहाड़ियों में भटकती एक आत्मा की व्याकुलता को पूरी तरह जीवंत कर देती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गीत चुनने में आपको भी मुश्किल होगी लेकिन काफ़ी बेहतरीन गीत आपने इसमें शामिल किए हैं। भाई जब शख्सियत ऐसी होगी सामने तो गीत चुनना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो पल केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि इतिहास के एक पन्ने को छूने जैसा होता जिसने 7 दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ से बांधे रखा। हम शायद भावुक हो जाते, हमारी आंखों में खुशी के आंसू होते और हम बस उन्हें सम्मान से प्रणाम करना चाहते, नतमस्तक होते। खुशी के आंसुओं से आंखें धुंधला जाती और उनकी धुंधली तस्वीर जीवन भर के लिए हृदय में बसाए आ जाते। कितना अच्छी तरह से आप अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। और हमने हालांकि बहुत से गीत तो शामिल कर दिए हैं भारत में लेकिन सारे गीत सुनवाना तो संभव नहीं है। और भी इतने सारे गीत हैं, सबकी पसंद अलग अलग, लेकिन जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो चलिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम बताइए और बताइए संगीतकार का नाम।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: हिंदुस्तान की आवाज है। लता जी का पूरा जीवन ही संगीत की साधना और संगीत से अटूट मोहब्बत का अफसाना रहा है। उन्होंने जब भी गाया है तब ऐसा लगा ही नहीं कि शब्द हैं, बल्कि भावनाएं बह रही हों, ऐसा ही लगा। प्यार की कशिश हो, जादुई जुदाई का दर्द हो, देशभक्ति का जज्बा हो या भक्ति का सुकून, उनकी आवाज हर इंसान के दिल का आईना बन गई। आज भले ही वो हमारे बीच ना हो, लेकिन जब भी कोई झुमका हवा में गिरेगा, जब भी कोई परदेसी पुकारेगा या जब भी कोई दिल कहेगा कि प्यार किया तो डरना क्या, तब तब मुस्कुराती हुई लता दीदी हमारे साथ होंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में जो सुरीले गीत हैं, कई सुरीले गीत होंगे और उनने सारे गीतों के नाम लिखे हैं जो कि शामिल भी हो रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़कर लगा कि जैसे गीतों ने मिलकर एक खूबसूरत कहानी कह दी हो। एक आवाज से शुरू हुआ सफर तलाश में बदल गया और फिर वही तलाश दिल की मंजिल बन गई। सच है, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं आती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्वर की देवी और कोकिल कंठी लता मंगेशकर जी के गाने किसी भी भाषा में हम सुनते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसका अर्थ नहीं है कि स्वर किसी भाषा से बंधा नहीं है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि विविध भारती से हमें लता मंगेशकर जी का कोई गीत सुनने ना मिला हो। और उन्होंने कहा आगे सत सत नमन। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि कभी कभी कोई आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, दिल में अपना घर बना लेती है। फिर वो इंसान उस आवाज के पीछे पीछे यादों, गीतों और एहसासों की गलियों में भटकता रहता है। आज की इबारत भी ऐसी एक तलाश की कहानी है जहां हर मोड़ पर एक गीत मिलता है, हर गीत में एक एहसास और हर एहसास में लता जी की मधुर आवाज की छाया। यही तो संगीत का जादू है कि बरसों बाद भी कोई धुन सुनते ही दिल उसी पुराने सफर पर निकल पड़ता है जहां प्यार भी है, इंतजार भी और यादों की हल्की सी कसक भी। तो भाई, जब प्यार की बातें हो गई हैं तो हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि उनके बारे में क्या लिखना, अगर लिखें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। बस इतना कि एक सूर्य, एक चांद, एक लता जी, भगवान ने उनको बनाकर वो सांचा ही तोड़ दिया होगा। ना कोई उनके जैसा हुआ है, ना कोई होगा। तो भाई, ये सारी जो भावनाएं आपकी हम तक आ रही हैं, तो इन भावनाओं पर शायद ये गीत सबसे अच्छा रहेगा। आप हमें बताइए संगीत किसका है।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत आपने सुना, नौशाद का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज। हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं कि भाई आज के इस मौके पर ये गीत सुनना चाहिए था या वो गीत सुनना चाहिए, तो इस तरह से गीतों की लिस्ट तो वो भेज रहे हैं। भाई कहा जाए तो हम तो इस मौके पर उनके सारे ही गीत सुनने चाहते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज इतने सारे गीतों को दी है, अनगिनत गीतों को दी, तो उन गीतों को सभी को सुन पाना क्या संभव है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए अलग अलग कार्यक्रमों में आज के दिन क्या और लगातार 365 दिन उनकी आवाज में वो गीत हम सुनते रहते हैं और अपनी पसंद के गीतों को रोजाना हम सुन ही पाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विविध भारतीय लता जी का साथ तो ऐसा है जैसे सुर और संगीत का अटूट बंधन। बचपन की यादों से लेकर आज तक जब भी विविध भारती पर लता जी की आवाज गूंजती है तो दिल सुकून से भर जाता है। उनका हर गीत हमारे जीवन में किसी न किसी खूबसूरत याद से जुड़ा हुआ है। रेडियो के सबसे प्यारे मंच विविध भारती के माध्यम से लता दीदी के सदाबहार गीत हमारे दिलों में जिंदा रखने के लिए पूरी टीम को उन्होंने धन्यवाद दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं लता जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे पास उनके हर गाने का एक संग्रह है। पहले कैसेट में रहता था, आज फिलहाल पेन ड्राइव में है, क्योंकि जब भी कहीं सफर पे जाती हूँ तो अपनी ही पेन ड्राइव लगाती हूँ। मुझे अपने पसंदीदा गाना सुनना बहुत पसंद है। घर में भी वो लता जी को जब तक ना सुन लूँ मुझे चैन नहीं होता। और एक बात मुझे बहुत पसंद है लता जी की उनकी आवाज़ तो पसंद है, साथ ही साथ उनकी जो सिंप्लिसिटी थी वो हमेशा एक सी रही। एक उनको बहुत ज़्यादा चमक धमक में मैंने नहीं देखा और मुझे ये बेहद पसंद आता है। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर मैं उनसे मिलती, ये आपने पूछा था अगर हम मिलते तो क्या कहते, तो मैं उनसे कहती कि आप जैसी आवाज़ मुझे भी मिल जाए, आप बहुत ही अच्छी लगती हैं। उनके साथ

ये अच्छी लगती है, हमेशा सफेद साड़ी में उन्हें मैंने देखा। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि हमें लता दीदी के बहुत से गीत बहुत पसंद है, पर कुछ गीत हमें बहुत ताकत देते हैं, जैसे जब दिल को सतावे गम तो छेड़ सकी सरगम, ऐ दिले नादान तू गम से ना घबराना, ऐसे गीत हमें बहुत पसंद है। तो कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, और बताइए किस फिल्म से लिया है।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात हो रही है स्वर कंठिल कोकिला लता मंगेशकर की। ससुराल फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत और बिल्कुल सही जवाब भी आपने दिया। लता मंगेशकर से आप किस तरह से रखते हैं नाता, ये आप हमसे बता रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ हमारे कानों को नहीं, हमारे दिल को छू जाती है। वो आज भी हमारे साथ

हैं उनकी आवाज़ के साथ, और उनकी बहुत से ऐसे गाने हैं जो सुनने का मन करता है। वैसे ही हमारे साथी ने बहुत से गाने हमारे साथी लिख लिख के भेज रहे हैं, लेकिन सारे गीत एक साथ एक घंटे में सुनाना, बल्कि हम कहते हैं एक दिन में सुनाना भी मुश्किल है। तो वो गीत सुन लेते हैं जिनकी बातें हमने इबारत में की है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे।
1: भाई यही बात हम कह सकते हैं लता मंगेशकर की आवाज के लिए भी कि हमसे न पूछिए कि आप हमारे कौन हैं। चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे की आवाज आपने सुनी। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं तो आपकी ढेरों बातों के साथ हम भी इस बात से बिल्कुल कहते इत्तेफाक रखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि एक ही घंटे में पूरा गीत सुनना, सभी पसंदीदा गीत सुनना तो मुश्किल है, लेकिन ये गीत शामिल ना हो तो बिल्कुल भी बात ना बने। तो हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत, और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। लेकिन लता मंगेशकर की आवाज से सजे हुए कई गीत आपको आज के बहुत से कार्यक्रमों में सुनने के लिए मिलते रहेंगे। तो बस दीजिए इजाजत आज के इस कार्यक्रम से।

दोस्तों, खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता खामोश रहकर अपनी महक लुटाता है। मील का पत्थर बेजुबान होकर भी पथिकों को राह दिखाता है। दिया खुद जलकर रोशनी लुटाता है। आंतरिक सौंदर्य की अपनी परिभाषा होती है, ऐसी भाषा जिसमें

शब्द होते हैं न आवाज, किंतु असर काफी गहरा। मौन रूपी संचित ऊर्जा का उपयोग हमारे ऋषि मुनियों ने भी खूब किया है। प्राचीन काल में लोग मौन का महत्व समझते थे। प्रकृति की आवाज को सुनने के लिए वे अपनी आवाज को कुछ समय के लिए विराम दे देते थे।

संसार में हर मनुष्य की पहचान उसकी बोली और व्यवहार से की जाती है। विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है भाषा, लेकिन मौन की अपनी भाषा है। सांसारिक भाषाएं जहां सीमित शब्दों में बंधी है, वहीं मौन की भाषा में अनंत शब्द अंतर्निहित हैं। केवल चुप हो जाना मौन नहीं है, बल्कि अपने वजूद में खो जाना है मौन। चुप्पी बाहर होती है, लेकिन मौन भीतर घटता है।

चुप्पी में हमारी वाणी पर नियंत्रण होता है, लेकिन मौन का अर्थ है स्वयं में उतरना और मन वचन कर्म से शांत रहना। जब हम मौन में प्रवेश करते हैं तो हमारा स्वयं से साक्षात्कार होता है। मौन हमें बाहरी छलावों से दूर ले जाकर सत्य का आईना दिखाता है और हम स्वयं की ओर उन्मुख होने लगते हैं। स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार ही मौन का लक्ष्य है।

मौन का अर्थ है मन का नहीं होना। जहाँ मन है वहाँ असंतोष, शोक, जलन, प्रतिशोध, दुख और क्रोध जैसे कई भाव होते हैं। मौन में इनके अस्तित्व को मिटाना अनिवार्य है। मौन आत्मा की भाषा है जिसे सांसारिक कोलाहल के बीच सुनना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति के अंतर्मन की यात्रा का नाम है मौन। भाषा और बोली के बंधनों को मिटाकर स्वयं से जोड़ता है हमें ये और जीवन में पूर्णता लाता है। मानसिक तनाव, व्याकुलता और अशांति के पलों में मौन शांति का प्रकाश पुंज है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल N. वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे

0: उपयुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बबदलाव लाने में मदद कर रहा है।
4: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल

0: तीन तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
0: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
0: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो तीन तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
5: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
4: सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
6: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू, मुरब्बा, जूस, बर्फी भी, यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
4: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
7: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की अनसिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई ना कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
8: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी।

0: 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: उजाला फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें, तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर की आवाज में जंगली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं चित्रलेखा फिल्म में लता मंगेशकर को। साहिल ध्यानवी के बोल है रोशन का संगीत।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और इससे ठीक पहले आपने सुना गाइड फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में गीत।

कैलेंद्र के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत और कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में बाप बेटे फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत। ये सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

0: ಸಹೇಲಿ
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और
2: नेहा शर्मा का
1: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
2: हेल्दी नमस्कार
1: बिल्कुल नमस्कार? हेल्दी नमस्कार यूं होता है कि भाई जब लगता है ना कि किसी ने कहा हेल्दी नमस्कार तो हाँ हम सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और
2: नेहा शर्मा का
1: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
2: हेल्दी नमस्कार
1: बिल्कुल हेल्दी नमस्कार यूं होता है कि भाई जब लगता है ना कि किसी ने कहा हेल्दी नमस्कार तो हाँ हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपने बारे में थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए।
2: हाँ, जब हेल्थ की बात आ जाती है तो फिर हम कहीं ना कहीं सचेत हो जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इसलिए हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें क्या मतलब कितना ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, और देखो ना आज जो है विशेष दिन तो हमारा चल ही रहा है, बहुत सारे दिवस हैं, मैं नेहा और हमारे श्रोताओं आज हम कथा सुधा में कहानी भी सुनेंगे और बातें होंगी अधिकार और कर्तव्य इसके संतुलन की। साथ में हम चलेंगे कश्मीर, उसके प्रादेशिक व्यंजन के बारे में हम जानेंगे कि आज कौन कौन से हम व्यंजन करने वाले हैं। आज हम राजमा गोगची और मोदुर पुलाव इसके बारे में बात करेंगे और श्रोताओं के आए भी हैं संदेश, तो और कुछ विशेष दिन भी है तो उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए पहले सुन लेते हैं एक गीत।
2: जी बिल्कुल,

0: नेहा, हमारी सारी सखियां और हमारे श्रोता भाई समझ ही गए होंगे कि ये गीत क्यों बजाया आज, है ना?
1: बिल्कुल, क्योंकि आज शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती है। 28 सितंबर का दिन हमें उस महान क्रांतिकारी की याद दिलाता है जिसने बहुत कम उम्र में देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। शहीद भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था।
0: बचपन से ही नेहा उनके मन में देश के प्रति प्रेम और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह की भावना रही। वे केवल साहसी क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक गंभीर चिंतक और प्रखर लेखक भी थे। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति और जागरूकता की नई चेतना उस वक्त जगाई थी और अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने

0: शहीद भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था।
1: बचपन से ही नेहा उनके मन में देश के प्रति प्रेम और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह की भावना रही। वे केवल साहसी क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक गंभीर चिंतक और प्रखर लेखक भी थे। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति और जागरूकता की नई चेतना उस वक्त जगाई थी और अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी।
0: और केवल 23 वर्ष की उसकी उम्र थी उनकी, जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी का सामना किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश और समाज के लिए समर्पण उम्र का मोहताज नहीं होता। आज भी जब उनका नाम हम सुनते हैं तो हमारे मन में साहस, त्याग और देश प्रेम की जो भावना जागती है वो वाकई काबिले तारीफ है, हम कह सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह सचमुच भारत की युवा चेतना के अमर प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं।
1: बिल्कुल, और देखो ना, आज बहुत सारे विशेष दिन है, हम उसके बारे में भी आगे बात करते चलेंगे, बताते जाएंगे अपने साथियों को, और सब इंतजार कर रहे हैं, पता है किसका?
0: किसका?
1: कहानी यानी कथा सुधा, जिसमें हम सुनने वाले हैं अमावस की रात, इस कहानी का पहला भाग।
0: तो चलिए सुनते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात। सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
4: दीपावली की संध्या थी, श्रीनगर के घूरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थीं। दीपों से उनके मुखारविंद प्रकाशमान थे, प्रत्येक घर रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पंडित देवदत्त का सतधारा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले न थे, भयंकर इसलिए कि ये जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय था जबकि ईर्ष्या भी उसे देख देख कर हाथ मलती थी, और एक समय ये है जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरंड के वृक्ष खड़े थे। दीवान खाने में एक मतंग सांड अकड़ता था। ऊपर के घरों में जहां सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थीं, वहां आज जंगली कबूतरों के स्वर सुनाई देते थे। पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते, समय की निंदा व्यर्थ और भूल है। अमावस्या की रात्रि थी, प्रकाश से पराजित होकर मानो अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, किंतु ये नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते थे। गिरजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वो उसे समझाते।
5: गिरिजा, गिरिजा, रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी।
4: पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थी, मगर सन 57 ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया, और उनके साथ तिवारियों का ये अन्न धन पूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लुट गया, बही खाते पंसारियों के काम आए। जब कुछ शांति हुई, रियासतें फिर संभली, तो समय पलट चुका था, वचन लेख के अधीन हो रहा था।

0: और लेख में भी सादे और रंगीन का भेद होने लगा था। जब देवदत्त ने होश संभाला तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था, वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी, विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते, परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। अस्तु, साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए पाहुनों की भांति जाते और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते उसी पर गुजारा करते। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वो पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर तथा हुंडियों का पुलिंदा, जिनकी स्याही भी उनके मंद भाग्य की भांति फीकी पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते। द्वितीया के दिन जब घर घर लक्ष्मी की पूजा होती है, पंडित जी ठाट बाट से इन पुलिंदों की पूजा करते। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही सही। दूज का दिन पंडित जी के प्रतिष्ठा के श्रद्धा का दिन था। इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था। जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो ये सड़े गले कागजों की सेना बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती। यदि 70 पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं तो पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। वही अमावस्या की रात्रि थी, किंतु दीप मालिका अपने अल्प जीवन समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए शकुन की रात्रि थी, क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी, कौड़ियों पर अशर्फियां लुट रही थीं, भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज भोर से ही गिरिजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली, प्रत्यंत क्षीण स्वर में कहा,
1: आज तो दिवाली है।
0: देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिजा को चैतन्य देख कर भी उसे आनंद नहीं हुआ।
2: हाँ, आज दिवाली है।
0: गिरिजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देखकर कहा,
1: आज तो दिवाली है, हमारे घर में क्या दीपक न जलेंगे?

0: आज बरस भर के दिन भी घर अंधेरा रह गया। मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर दिए जलाऊंगी।
1: ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थीं। मनुष्य की अंतिम घड़ी लालसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती है।

0: इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवन औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयां कम बनती थी, इश्तहार अधिक प्रकाशित होते थे। वे कहा करते थे,
1: बीमारी केवल रईसों का ढकोसला है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी के यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र के अनुसार इस विलास पदार्थ से जितना अधिक संभव हो टैक्स लेना चाहिए। यदि कोई निर्धन है तो हो, यदि कोई मरता है तो मरे, उसे क्या अधिकार है कि बीमार पड़े और मुफ्त में दवा कराए। हाँ,
0: देवदत्त महीने भर नित्य उनके निकट दवा लेने आता था, परंतु वैद्य जी कभी उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देते थे कि वो अपनी शोचनीय दशा प्रकट कर सके। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वो आंखों में आंसू भर के आता, किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था।

0: वही अमावस्या की डरावनी रात थी। गगन मंडल में तारे आधी रात के बीतने पर और भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे, मानो श्रीनगर की बुझी हुई दिवाली पर कटाक्षयुक्त आनंद के साथ मुस्कुरा रहे थे। देवदत्त बेचैनी की दशा में गिरजा के सिरहाने से उठे और वैद्य जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे, किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते चले जाते थे। हकीम जी उस समय अपने रामबाण बिंदु का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। उस विज्ञापन की भावप्रद भाषा तथा आकर्षण शक्ति देखकर कह नहीं सकते कि वैद्य शिरोमणि थे या सुलेखक विद्यावारिधि। आप उनके उर्दू विज्ञापन का साक्षात दर्शन कर लें।
1: नाजरीन, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आपका जर्द चेहरा, आपका तनिलागीर, आपका जरा सी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लज्जात दुनिया में महरूम रहना, आपका खाना तरीकी, ये सब इस सवाल का नफी में जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कौन हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने इमराज इंसानी को पर्दे दुनिया से गायब कर देने का बीड़ा उठाया है, जिसने इश्तिहारबाज जांफरोश गंदुम नुमा बने हुए हकीमों को बेखबर और बुन से खोद कर दुनिया को पाक कर देने का अज्म विल जज्म कर लिया है। मैं वो हैरत अंगेज इंसान ज़ईफ़ुल बयां हूं जो नाशाद को दिलशाद, नामुराद को बामुराद, भगोड़े को दिलेर, गीदड़ को शेर बनाता है। और ये किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं, वो मेरी इजाद करदा अमृत बिंदु के अदना करिश्मे हैं। अमृत बिंदु क्या है, इसे कुछ मैं ही जानता हूं। महर्षि अगस्त्य ने धन्वंतरी के कानों में इसका नुस्खा बतलाया था। जिस वक्त आप वीपी पार्सल खोलेंगे, आप पर उसकी हकीकत रोशन हो जाएगी। ये आबे हयात है, ये मर्दानगी का जौहर, फरजानगी का अक्सीर, अक्ल का मुरब्बा और जहन का सकील है। अगर वर्षों की मुशायरा बाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया, अगर शबी रोज के रटंत पर भी आप इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके, अगर दलालों की खुशामद और मुवक्किलों की नाज बरदारी के बावजूद भी आप अहाते अदालत में भूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते फिरते हैं, अगर आप गला फाड़ फाड़ चीखने, मेज पर हाथ पैर लटकने पर भी अपनी तकरीर से कोई असर पैदा नहीं कर सकते, तो आप अमृत बिंदु का इस्तेमाल कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा, यह है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी इश्तिहारबाज हकीमों के दाम फरेब में न फंसेंगे।
0: वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दुगनी थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला,
2: वैद्य जी, इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरिजा आपको इस सायद की पावनी है, अब उसे आप ही बचा सकते हैं। यू तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, किंतु इस समय तनिक चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा।
0: हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, किंतु वो जुगनू की चमक थी।

0: रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा, राजुल अशोक, पंडित देवदत्त, जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास, जयंत पाटेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: अभी जी कहानियां सुनते सुनते ऐसा लगता है ना कि पूरी ही हो जाएगी बात।
2: बिल्कुल ऐसा मन तो यही करता है, लेकिन अगले सोमवार हम इसका अगला भाग सुनेंगे।
1: और भी क्या सुनेंगे?
2: एक गीत सुनेंगे
1: जी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: तो दीपा जी, जश्न का माहौल तो आ ही रहा है, निकट आ रहा है, क्योंकि विविध भारती में जश्न का माहौल होने वाला है 3 अक्टूबर को। और एक आवाज का जश्न भी आज हम मना रहे हैं।
4: बिल्कुल,
3: क्योंकि आज क्या है,
4: आज देखिए लता मंगेशकर की जन्म जयंती।

0: ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा नेहा जिन्होंने कभी जिनके जीवन में कोई तो पल कोई ऐसा वक्त आया होगा जहाँ पे उनके गीत ने उनको छेड़ा नहीं होगा या उसका बहुत गहरा असर नहीं हुआ होगा, है ना?
1: बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे गीत हैं, इतने सारे भाव हैं उसके अंदर कि ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने, कोई भी दिन ऐसा नहीं जा सकता जब हम लता मंगेशकर की आवाज नहीं सुन पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और खासतौर से अगर हम विविध भारती सुनते हैं तो एक गाना नहीं कई गाने हम सुनते हैं रोजाना,
0: रोजाना की आवाज में। बिल्कुल, और हिंदी संगीत और हिंदी सिनेमा से प्यार करने वाला शायद ही ऐसा कोई दिल भी होगा ना जिन्होंने उनकी आवाज ने कभी छुआ ना हो उन किसी एक व्यक्ति के दिल को। और उनकी आवाज में प्रेम की कोमलता भी थी, विरह की कसक भी थी, भक्ति की मिठास और देशभक्ति का जोश भी रहा।
1: हाँ, और कई बार वो बच्चों की लोरियों से शुरुआत होती है, कहते हैं बचपन से शुरुआत हो गई उनकी आवाज के साथ और अंत तक हम उनकी आवाज के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब उम्र के हर पड़ाव में। और उनके गीतों में रिश्तों की उलझन भी हमें सुनाई देती है, तो कभी प्यार की गहराई महसूस होती है, कभी पूरे देश की आंखें उन्होंने नम की, तो कभी मन में भक्ति और शांति का भाव भी लता जी की आवाज ने जगाया है।
0: बिल्कुल, और लता जी ने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन्होंने भावनाओं को आवाज दी नेहा। उनकी आवाज कई पीढ़ियों की यादों में, प्रेम में, और हमारे जो पसंदीदा गानों की जो प्लेलिस्ट होती है ना, हाँ। उसमें एक गाना तो जरूर लता जी का रहता होगा। आप भी श्रोताओं जरूर बताइएगा क्या आपके प्लेलिस्ट में उनका गाना नहीं रहता।
1: अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूछने की बात नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि हमारे भी जैसे इससे ठीक पहले जब हम एक कार्यक्रम कर रहे थे उसमें भी जब बातें आ रही थी तो ये हो रहा था कि ये गीत तो रह गया, तो फिर हमारी श्रोताओं ने भी एक कहा और हमने भी यही कहा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक घंटे में पूरा करना तो वैसे ही मुश्किल है, एक दिन में पूरा करना भी मुश्किल है क्योंकि हो ही नहीं सकता है।
0: बिल्कुल, और जब अपने ये कार्यक्रम सखी सहेली के लिए जब गानों के चुनाव हम लोग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था इस गाने को ले या इस गाने को ले, क्योंकि इतनी लंबी जो फहरिस्त थे उनके गानों की तो बस कुछ ही गाने हम तो यहाँ ले पाए, लेकिन आज आप दिन भर उनके गानों का आनंद लेते रहिए।
1: हाँ, विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों में आनंद आज तो लेंगे ही और बाकी दिनों भी लेते हैं, जैसे कि हमने कहा 365 दिन उनके गीतों का हम आनंद लेते हैं, इससे तो कोई अंतराल हमें मिलता नहीं, लेकिन कार्यक्रम में अंतराल का वक्त है।
0: बिल्कुल,

0: अंतराल के बाद हम आ चुके और कार्यक्रम चल रहा है
1: सखी सहेली।
0: और इतनी सारी बातें हो गई लता जी की और गीत नहीं सुना उनका,
1: तो सुनेंगे अभी।
0: चलो सुनते हैं।
1: हाँ

0: दीपा जी, गाना तो अच्छा था, लेकिन आपने मेरी पसंद का गाना क्यों नहीं बजाया?
1: अरे भाई देखो, इस गाने में तुम्हारा नाम था। हाँ? नहीं, वो वाला लाइन तुमने सुनी, इस गाने की पंक्ति, जब से सैया तो उसे नेहा लागे, पीछे पीछे मैं तू आगे आगे, तुम्हें तो आगे रखा है।
0: हाँ, इसी वजह से मैंने आगे आगे गाना सुन लिया वो पूरा, लेकिन और भी एक अच्छे अच्छे गाने हैं मेरे पसंद के।
1: भाई नेहा, तुम्हारे पसंद का गाना इस प्लेलिस्ट में है, कैसे भूल सकती हूँ?
0: भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन भूल ये भी नहीं सकते हैं कि आज बहुत सारे दिवस भी हैं और एक बहुत ही खास दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक सूचना पहुंच दिवस, जो 28 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है?
1: इस दिन को, इसका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को, मतलब सभी को, आवश्यक और विश्वसनीय जानकारी आसानी से उन तक पहुंच सके।
0: और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2015 में, यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत हुई 2019 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मान्यता दी। और अब जब हम डिजिटल युग में है और सूचना फटाफट हम तक पहुंचती है, पहले से आसानी से सूचनाएं हम तक पहुंचती है, लेकिन गलत सूचनाएं भी उतनी ही जल्दी हम तक पहुंच जाती है। तो ये बात बहुत बड़ी चुनौती है।
1: इसलिए ये दिवस हमें समझाता है कि सही सूचना व्यक्ति को जागरूक बनाती है और जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। तो भाई जब बात इतनी सूचनाओं की हो रही है, तो चलिए एक सूचना ये भी दे देते हैं अपने सभी श्रोताओं को।
2: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
3: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
2: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
2: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
1: नेहा, बात जब संदेशों की हो रही है और जानकारियों की हो रही है, तो हमें अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज विश्व रेबीज दिवस भी है।
0: बिल्कुल, और ये हर साल जैसे कि कह सकते हैं आज के दिन यानी 28 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि रेबीज जो है बीमारी, वो उसके प्रति जागरूकता फैले। इस

0: फैलने वाली बीमारी के बचाव के उपायों की जानकारी का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत जरूरी है ये।
1: और महत्व ये है इस दिवस का कि सही समय पर उपचार और टीकाकरण से रेबीज से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है, इसलिए सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, विश्व रेबीज दिवस की शुरुआत तो साल 2007 में हुई थी और ये दिन प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिन्होंने रेबीज को रोकने के लिए पहला सफल टीका विकसित किया था।
1: और रेबीज जो खास तौर पर संक्रमित जानवरों के काटने से या उनकी लार के संपर्क से फैलता है और श्वान इसके संक्रमण का मुख्य स्रोत है।
0: तो यदि कोई जानवर अगर आपको काट देता है, आमतौर पर जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं वो, तो घाव को तुरंत आप साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह से धोइए और बिना देर किए डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है आपका।
1: बिल्कुल,
0: और इस दिन का संदेश है जागरूकता, समय पर उपचार और पशुओं का टीकाकरण ही रेबीज से बचाव की कुंजी है। तो अगर आप पालतू जानवर रखते हैं अपने आसपास तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका भी समय समय पर टीकाकरण कराएं। उनका भी टीकाकरण होता है, उनकी भी देखभाल आपको उसी तरह से रखनी जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और भाई ये भी जरूरी है कि एक और गीत जो कि नेहा की प्लेलिस्ट में है और हमने वहां से चुरा कर यहाँ पे अपने श्रोताओं के लिए चुन लिया है।

0: दीपा जी देखिए, मेरी पसंद का गाना सुनना मेरा अधिकार होता है।
1: भाई नेहा छोटी है, हम बड़े हैं, तो हमारा भी तो ये कर्तव्य है कि जो नेहा की चाह हो और अगर हम उसे पूरा कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए, है ना सखी।
0: लेकिन अधिकार और कर्तव्य का संतुलन भी तो होना चाहिए ना दीपा जी।
1: ये बात तो सही है। अब अगली बार अगर मैंने कुछ मांगा तो दोगी?
0: हाँ, सोचना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य बन रहा है या नहीं।
1: जी। लेकिन हाँ, हमेशा हम इस तरह से नहीं चल सकते कि अच्छा ये अधिकार है या कर्तव्य है, तो वो इक्वेशन हमेशा दिमाग में नहीं बना सकते, है ना।
0: क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य, और हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, पर ये भी समझना चाहिए कि हर अधिकार के साथ कोई ना कोई जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल। और अपने अधिकारों के लिए हम जितना जागरूक रहते हैं ना नेहा, दूसरों के अधिकारों का भी हमें सम्मान उतना करना चाहिए। हमें अपने बारे में तो बहुत ख्याल रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। और जिस तरह हमें अपने सम्मान या स्वतंत्रता या समानता हमें चाहिए, उसी तरह से ये अधिकार दूसरों को भी मिलना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखो हमने ध्यान रखा ना, तुम्हारी पसंद का गाना बजा दिया।
0: बिल्कुल। और असली शुरुआत तो परिवार से ही होती है ना, क्योंकि घर में हम अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों की भावनाओं और विचारों को सुनना भी तो हमारा कर्तव्य है। तो स्वतंत्रता अगर हमें मिली तो उसका अर्थ ये नहीं कि मनमानी हम करें। हमें अपनी पसंद से अपना निर्णय लेने की आजादी तो मिलती है, लेकिन इससे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी या नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। और सिर्फ परिवार में ही नहीं नेहा, ये हमारे आसपास हो या समाज हो या बड़े तौर पे बात करें तो देश, सब जगह ये बात लागू होती है, जैसे हर जगह हर स्थिति में हम इसे देख सकते हैं।
0: जैसे कि सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है हर नागरिक का। हमें सुरक्षित चलने का अधिकार है, लेकिन दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यानी हमने अगर मोटरसाइकिल पर चढ़ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फास्ट चलाएंगे, या हम पैदल चल रहे हैं तो मतलब ये नहीं है कि किसी भी दिशा में कभी भी कहीं से भी चलने लगेंगे।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नियमों का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है।
1: और इसी तरह से बात आती है अगर वातावरण की, तो स्वच्छ वातावरण अगर हम चाहते हैं, हमारा अधिकार है, और हम इस बात के लिए कई बार ये बात उठाते भी हैं, तो स्वच्छता बनाए रखना हमारा कर्तव्य भी है। हम साफ सुथरी सड़कें रखें, जो पब्लिक प्लेसेस होती है वो चाहते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरी हो, तो हमें ही ध्यान रखना होगा कि हम कूड़ा इधर उधर कहीं ना फेंकें, कचरा यहां वहां ना डालने, न तो खुद डालें न दूसरों को डालने दें। बिल्कुल।
0: और प्रकृति से जो संसाधन हमें मिलते हैं उस पर भी हमारा अधिकार है, लेकिन उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि पानी, बिजली और पेड़ों का सोच समझ कर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए भी कुछ बचा कर रखें। ये तो खत्म होने वाले संसाधन है।
1: और जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया, तो उस पर भी हम अधिकार और संतुलन का अधिकार और कर्तव्य का संतुलन हम रख सकते हैं। कैसे? कि अपनी बात कहने की स्वतंत्रता के साथ ये जिम्मेदारी भी हमारी होती है कि कोई झूठी बात है या कोई ऐसी किसी का अपमान ना हो जाए, या कोई ऐसे बोल ना हो, कड़े बोल इस तरह के ना हो कि किसी की प्राइवेसी या किसी की निजता पे नुकसान ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे, इसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए।
0: भले ही वो आपकी अपनी वॉल है, आप कह सकते हैं हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना आपका कर्तव्य है।
1: जी।
0: अब आप उसे पालन करें ना करें वो आपकी समझ पर निर्भर करता है। वैसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना उनका कर्तव्य है। माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों के अधिकारों के साथ साथ उनको जिम्मेदारियों का महत्व भी वो समझाते जाएं।
1: बिल्कुल। और अधिकार मांगते समय दूसरों की जो सीमाएं हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई हर जगह हमने उठा के कह दिया ये तो मेरा फर्ज है, अधिकार है, ये तो हमें मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। परिवार हो या कोई कार्यस्थल हो या समाज हो, आपसी समझ और संवाद से ही संतुलन हम कायम रख सकते हैं, है ना।
0: हाँ, छोटी छोटी जिम्मेदारियां जब मिलती हैं तो बड़े बड़े बदलाव भी आते हैं। और हम अपनी, जैसे कि हम एक लाइन में खड़े होकर, कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, कोई जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद करें, छोटे छोटे काम जो है समाज में अनुशासन तो बढ़ाते हैं और साथ में हमारे अंदर संवेदनशीलता भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।

0: पर अधिकार देखो हमें सशक्त बनाते ही हैं और कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं। और जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने जो कर्तव्य हैं उनको समझते हैं तभी परिवार हो या समाज हो देश हो तो हम सच्चा संतुलन और अपने लिए एक बेहतर जीवन तभी संभव कर सकते हैं।
1: और सच्चा संतुलन तो यही है कि जब हम बातें करते रहते हैं तो बीच बीच में गीत भी चलाते रहते हैं, है ना?
0: तुम्हारी आंखों में क्या लिखा है सब समझ में आ रहा है मुझे।

0: वही लिखा तो हमारे श्रोताओं ने भी बहुत से संदेश है। हमारे साथियों ने लिखा है कि अधिकार के लिए तो कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गए हैं, लेकिन जहाँ कर्तव्य निभाने की बात आती है अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने लगते हैं।
1: और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये दोनों जो रूप है वो अविभाज्य है। अधिकारों के बिना कर्तव्य निरर्थक हो जाते हैं और कर्तव्यों के बिना अधिकार अराजकता को जन्म दे सकते हैं। इसलिए अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी ने अपने अधिकारों का किस तरह से पालन किया है बता रहे हैं कि राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है, अपना घर तो अपना घर, पड़ोसियों के यहाँ भी बने तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करता। हमारे पड़ोसी भी इतने अच्छे हैं कि पहले मुझे खिलाते हैं और बाद में वो सभी खाते हैं और मैं भी उनके बनाए राजमा चावल की तारीफ करने से नहीं थकता। वैसे पंजाबी परिवारों का व्यंजन माना जाता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, हम बड़े चाव से खाते हैं। वही एक साथी है वो कह रहे हैं कि कश्मीर के व्यंजन झारखंड में ना के बराबर बनते हैं। तो सखी सहेली में व्यंजनों को सुन रही हूँ तो कश्मीर के व्यंजनों में रुचि पैदा हो गई है। खासकर पिछली बार पनीर की सब्जी सुनी थी बिना प्याज लहसुन और टमाटर वाली, उसके बाद से कश्मीरी व्यंजनों में बहुत रुचि पैदा हो रही है, तो इसका इंतजार रहेगा। तुम इंतजार खत्म करें।
1: चलिए तो पहले कौन से वाली रेसिपी बताएं, राजमा गोगची या
0: राजमा में तो टाइम लगता है बनने में, पुलाव बना लेते हैं पहले।
1: चलो तो ठीक है, पहले पुलाव बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना है, बासमती लेना है 1 कप, जो कि तिकल लगभग 30 मिनट पानी में भिगोया हुआ हो। देसी घी लेना है 2 बड़े चम्मच, चीनी या मिश्री आधा से 1 कप, जैसे आपके घर में मिठास पसंद हो वैसे, और केसर के

0: आपको धागे लेने हैं एक छोटा चम्मच के करीब, और बल्कि उससे थोड़ा कम ही लग जाएगा। और खड़े मसाले यानी कि चार हरी खड़ी बड़ी वाली हरी इलायची लेनी है, बड़ी वाली भी लेनी है, तीन चार लौंग, एक दो दालचीनी के टुकड़े और एक तेज पत्ता, सूखे मेवे जो आपके घर में हो और जो आपके वहाँ पसंद हो वो ले लीजिए। अब बनाना कैसे है इसको, कि बासमती चावल को अच्छी तरह से आपने धो लिया, 30 से 45 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया, फिर पानी इसको छान लीजिए बहुत अच्छे से। अब एक कढ़ाई या पैन में एक बड़ा चम्मच घी गर्म करें, उसमें कटे हुए जो काट लीजिएगा सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे काट लीजिएगा, उन सबको आप हल्के से सुनहरे होने तक भून लीजिए। हाँ, इन सब ड्राई फ्रूट्स में किशमिश को आप अलग रख दीजिएगा।
1: हाँ।
0: और बचे हुए घी में अब हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता डालें, इसके बाद 2 कप पानी डालें और वो जो केसर वाला जो आपने भिगा के रखे थे केसर के धागे
1: दूध
0: वो, हाँ दूध में वो भी डालना है। अब पानी में उबाल आने के बाद फिर धीमी आंच करके इसमें चीनी मिला लिए और घुलने दीजिए। इसके बाद भीगे हुए चावल और भुने हुए सूखे मेवे जो आपने लिए थे वो डालना है। पैन को ढक कर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक चावल सारा पानी सोख न ले, और अच्छी तरह इसको आपको पका लेना है। और फिर बाद में आप देखिए इसके ऊपर आप चाहें तो सजाना है तो केसर की पत्तियों के साथ और सूखे मेवे के साथ कर सकते हैं। ये जो केसर या भात जो कहते हैं घरों में बनता है ये उसी तरीके का ही है।
1: तो फिर राजमा गोगोची की रेसिपी भी बता दे जो इसके साथ खानी है। इसके लिए हमें राजमा चाहिए, सूखी गोगोची, गोगोची यानी गुच्छे वाले में जो मशरूम होते हैं उनको कहते हैं, और दही चाहिए आवश्यकता के अनुसार, और साथ में चाहिए सौंफ पाउडर, सूखी अदरक का पाउडर यानी सौंठ, जीरा, हींग, नमक, तेल या घी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को भिगोकर अच्छी तरह से पकाया जाता है, फिर सूखी गोगोची को साफ करके पानी में भिगोया जाता है, और इसके बाद मसालों का आप तड़का लगाइए, राजमा और गोगोची को धीमी आंच पर पकाइए धीरे धीरे, और धीमी आंच पर जब आप पकाते हैं तो मसालों की जो खुशबू है वो अच्छी तरह हमें भी मिलती है, और साथ में इससे व्यंजन का स्वाद भी गहरा हो जाता है। और फिर इसके बाद आप इसको खाइए चावल या कश्मीरी शैली के पुलाव के साथ, जो कि हमने बना ही लिया है, तो बस उसके साथ हम खा लेंगे मधुर पुलाव के साथ, है ना।
0: तो ये तो बिल्कुल कंप्लीट खाली हो गया ना, खुशबूदार। हाँ। मतलब बना नहीं है लेकिन फिर भी
1: खुशबू आने लगी है। अब इतनी सारी बातें इलायची और सब चीजें की हो गई है तो ऐसे खुशबू तो आएगी, केसर की भी आ रही है,
0: और देखते हैं इस अगले गीत की खुशबू कैसी है।
1: हाँ।

0: जी हाँ, लता जी की आवाज और उनकी गाए गीतों से हमें भी उतना ही प्यार है ना।
1: और हमारे सभी साथियों ने भी यही लिखा है कि एक ही प्रोग्राम में सारे गाने आना भी मुश्किल है और हर गाना पसंदीदा है, लेकिन हम हमेशा हार जाते हैं समय से, क्योंकि समय बीत जाता है और हमें जाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो आज के इस कार्यक्रम से भी लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे PCOD और IVF। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
1: सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं डॉक्टर ज्योति शाह, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम उनसे बातचीत करेंगे स्त्रियों से संबंधित बीमारियों को लेकर। तो डॉक्टर साहिबा, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू विविध भारती मुझे इनवाइट करने के लिए।
1: जी, तो आज डॉक्टर साहिबा, हम आपसे महिलाओं की रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्या, जैसे अगर हम बात करें PCOD है, PCOS है
2: जी,
1: पीरियड्स को लेकर, मेनोपॉज को लेकर, जो

0: बदलाव हो रहे हैं,
1: जी जी
0: हार्मोनल
1: जी.
0: बदलाव जो हम महसूस करते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं. और
1: जी.
0: एक और खास विषय है IVF.
1: जी.
0: ये क्या है, इसको लेकर भी हम विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे.
1: जरूर.
0: तो सबसे पहले महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की हम बात करते हैं. रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनका सामना महिलाएं अक्सर करती हैं, लेकिन उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज भी कर देती हैं?
1: तो ये जो क्वेश्चन है मंदाकिनी जी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किशोर अवस्था से लेके रिप्रोडक्टिव एज से लेके मेनोपॉज तक, यानी पीरियड बंद हो जाना वो एज तक. तो जो एक यंग लड़की जो है, जिसको पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, वो आज मैं देख रही हूँ, एक्चुअली मैं गए 28 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने जो चेंज देखा है लास्ट 10-15 साल में ये है कि जो पीरियड आना जो नॉर्मली 11 से 15 की एज में आता है, आजकल काफी यंग लड़कियों को, जैसे 7-8 साल की बच्चियों को भी पीरियड आने लगता है.
0: अच्छा.
1: यस. सो ये एक चेंज मैंने देखा है. दूसरा कि जब ये पीरियड आता है तो थोड़े से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम करके एक एंटिटी है कि पीरियड आने से पहले बहुत इरिटेबल होना, चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा बिहेवियरल डिफरेंस, ये सब हो सकता है, विच इज नॉर्मल. तो मदर्स को डरना नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ. दूसरा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि गर्ल्स अभी शादी जो है वो या टाइम पे करती हैं लेकिन बच्चा लेट करती हैं, या लेट करती हैं और फिर नेचुरली बच्चा भी लेट होता है. तो अभी जो बदलाव मैं देखती हूँ जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी जैसे 20 साल से लेके 30-35 साल की एज में, तो PCOD जो है या PCOS या अभी PMOS हम जो बोलते हैं वो काफी बढ़ चुका है. जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है ये एक काफी एक बर्निंग समस्या है, बहुत है. PCOD में ये है कि अंडे बहुत होते हैं, टू मेनी एग्स, पॉलीसिस्टिक बोलते हैं. तो एक साइड पे वो प्रॉब्लम है, दूसरी साइड पे जो मैं अभी देख रही हूँ ये भी गए 10 साल में ज्यादा, कि यंग लड़कियां, मतलब 25 साल 26 साल की लड़की है लेकिन उसके अंडे ही नहीं है या बहुत कम है.
0: अच्छा.
1: ये पहले नहीं था. हाँ. तो ये भी अभी मतलब जो
0: बहुत
1: जो
0: बड़ी
1: समस्या है. तो जो लड़कियां जो बच्चा प्लानिंग कर रही हैं, जो औरतें हैं, तो ये भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि शायद से अंडे कम हो या PCOD, तो अंडे तो बहुत ज्यादा है. तो ये प्रॉब्लम उनको अपने गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: और थर्ड स्टेज जो मैंने बोला मेनोपॉज में, तो मेनोपॉज में अगर जब पीरियड बंद होने लगता है या पीरियड बंद हो जाता है तो वुमेन काफी हद तक बहुत सारे चेंजेस महसूस करती है, जैसे मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लशेस हैं. तो ये मतलब अगर वो एक्सपीरियंस कर रही है और अगर वो बॉदर कर रहा है तो शी शुड टेक हेल्प. एंड ऑल्सो जैसे मेनोपॉज के टाइम पे कैंसर्स की रिस्क भी बढ़ते हैं, तो जिसके बारे में शायद से हम बाद में बात करने वाले हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो अगर कुछ भी अलग अदर देन रूटीन ये फेज में भी अगर है तो उनको कंसल्ट करना चाहिए.
0: बिल्कुल आपने सही कहा. और हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर महिलाओं में थकान है, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं, नींद की परेशानी है या चिड़चिड़ापन जैसा आपने कहा, तो क्या ये केवल जीवन शैली से जुड़ी बातें हैं या कभी कभी इनके पीछे कोई स्त्री रोग या जो हार्मोनल कारण विशेष हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और हम अपनी जिंदगी को यूं कहें कि घसीटते चले जाते हैं?
1: जी. तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हार्मोनल चेंजेस हर एक फेज में जो हो रहे हैं, तो वो तो हार्मोन्स के कारण वो चेंजेस तो आते भी हैं काफी लेडीज में. और सेकेंडली जो थकावट है ये इसके कारण भी हो सकती है कि अगर जो औरत है अगर उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, अगर उनको माहवारी बहुत ज्यादा हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत दिन तक ब्लीडिंग चालू है, तो उससे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है उनका. अनीमिया एक इंडिया का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये. और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयरन टैबलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस चीज के लिए. तो थकावट अनीमिया के कारण हो सकती है बिकॉज ऑफ द करंट जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ जो हम जी रहे हैं, हमारा खान पान, हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज नहीं, ये सब के कारण जो स्ट्रेस बढ़ता है उसके कारण भी हार्मोनल चेंजेस जैसे थायराइड हो जाना. तो थायराइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि काफी थकावट महसूस हो रही हो, मूड चेंजेस हो रहे हो, वजन बढ़ना, ये सब. तो थायराइड भी चेक करना चाहिए, हीमोग्लोबिन भी चेक करना चाहिए. और इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस भी एक बर्निंग इशू है. तो अगर वेट लॉस हो रहा है, उसके बाद थकन हो रही है, सांस फूल रही है, तो ट्यूबरक्लोसिस की भी जांच करनी
0: हो सकती है.

0: कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहिबा कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें मिलते हैं या ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए,
1: जरूर
0: डॉक्टर की परामर्श से हमें अपना इलाज करवाना चाहिए।
1: डेफिनेटली
0: इसे केवल बुरा व्यवहार समझकर नहीं छोड़ देना
1: नहीं,
0: है,
1: बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको हमको एड्रेस करना है कि ये क्यों हो रहा है
0: जी, जी।
1: और अगर वो ट्रीटेबल है तो डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और एनीमिया के बारे में आपने बताया, ये बहुत बड़ी समस्या है और लगभग हर स्त्री को इसका सामना करना पड़ता है। यूं कहें कि पढ़ी लिखी स्त्रियां भी कई बार इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती हैं और इसी में अपना जीवन निकाल लेती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं।

0: दिन कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है
1: जी,
0: तो ये भी एक उसका लक्षण है। अच्छा, पीसीओडी में एक्सेसिव वेट गेन भी हो सकता है, एक्ने यानी पिंपल्स, मुंह पे पिंपल्स आना,
1: निकल
0: ये हो निकल, पिंपल्स निकलना, बाल झड़ना, अच्छा दाढ़ी आना। मेरे दो पेशेंट्स हैं जो इनको रोज शेविंग करनी पड़ती है।
1: अच्छा,
0: यस, तो सिवियर पीसीओ पेशेंट्स में सर के बाल निकल जाते हैं लेकिन दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं, तो वो एक
1: लक्षण है।
0: जी, तो अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है या पीरियड्स इरेगुलर हैं तो मे भी आपको पीसीओ हो सकता है।
1: हो सकता है, तो इस पीसीओडी की समस्या को नियंत्रित कैसे रखा जाए?
0: तो उसके लिए एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है पीसीओडी। तो पीसीओडी जो है वो लास्ट 10-15 साल में एक एपिडेमिक जो हो चुका है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर गर्ल उसको पीसीओ है। बहुत कॉमन है, अगर आप 10 लड़कियों को एक रूम में रखेंगे तो शायद से 5 लड़कियों या 6 लड़कियों को तो पीसी होगा, इतना अभी कॉमन हो गया है ये पीसीओ। तो ये द एग्जैक्ट कॉज वी कैन नॉट पिन पॉइंट, बट जेनेटिक एक कॉज हो सकता है कि अगर मदर को पीसीओ है तो डॉटर को हो सकता है। बट अभी की जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अपना जो खान पान जो है, जो रेडी फूड, जो घर का खाना नहीं खाते हैं और बाहर का पैकेट खोल के खाना, ये जो रिफाइंड ऑयल वगैरह ज्यादा उसका सेवन करना, होल ग्रेन्स नहीं खा के मैदा और ये सब ज्यादा खाना, ब्रेड है ये, और स्ट्रेस, अभी सब लड़कियां पढ़ रही हैं तो वो स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, एंड सोशलाइजेशन बहुत कम हो गया है, तो आपका स्ट्रेस, आप मतलब आप किसी से बांट नहीं सकते हो, तो सोशल आइसोलेशन हो गया है थैंक्स टू द मोबाइल। तो ये सब के कारण से ये जो पीसीओ का प्रॉब्लम काफी बढ़ चुका है
1: जी। तो इसके लिए जाहिर है कि हमें डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और इस समस्या का निराकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके फिर साइड इफेक्ट हमारे सामने
0: जी। और ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगी कि पीसीओ पेशेंट्स जो लड़कियां हैं, जरूरी नहीं कि उनका वजन ज्यादा हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थिन लीन पीसीओ, यानी वो बहुत पतली है बट फिर भी वो पीसीओ है। तो पीसीओ का क्राइटेरिया, बेसिकली मेन क्राइटेरिया ये है कि एक तो पीरियड की इरेगुलरिटी होना, सेकेंड क्राइटेरिया है कि मेल हॉर्मोन्स जो ज़्यादा होते हैं, तो जिसके कारण मैंने बताया कि बॉल्डिंग होना, दाढ़ी उगना, पिंपल आना ये, एंड थर्ड सोनोग्राफी पे ओवरीज में बहुत सारे अंडे दिखना, ये एक मतलब क्राइटेरिया है। जिसमें बेसिकली क्या होता है कि पीसीओ में जो हर महीने अंडा फूटना चाहिए वो उनका फूटता नहीं है, यानी अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर थोड़ा टाइम के बाद दूसरा अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर वैसे करके 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद जब फूटता है, एक कोई अंडा फूट गया तो फिर तभी पीरियड आता है, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबे समय तक चालू रहता है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण पेशेंट अनीमिक भी हो जाती है, क्योंकि ये इंप्रेशन है लोगों को कि पीरियड में वो जो ब्लड है वो निकलना चाहिए, वो खराब ब्लड है। तो ये मैं एक्चुअली बताना चाहूंगी सबको कि ये वो खराब ब्लड नहीं है, वही ब्लड आपके हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में है, तो जो नॉर्मल जाना चाहिए वो ठीक है, बट उससे ज्यादा अगर जा रहा है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही
1: जरूरी है। बिल्कुल, एक आम धारणा है या ग्रामीण तबकों में तो खास तौर से कि गंदा खून है जो बाहर निकल रहा है।
0: जी जी,
1: बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये गंदा खून नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर में है और एक उचित मात्रा में निकलना चाहिए महावारी के दौरान, लेकिन उससे ज्यादा निकलते ही दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर साहिब, पीसीओडी के साथ अक्सर हम पीसीओएस की भी चर्चा आजकल कर रहे हैं, तो क्या पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों एक ही है या दोनों में कोई बेसिक अंतर है?
0: एक ही है एक्चुअली, अभी जो नया टर्मिनोलॉजी आया है, अभी पीसीओडी या पीसीओ एस नहीं बोलते हैं, हम PMOS बोलते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी ये जो लड़कियां जिनको पीरियड इरेगुलर आ रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं या स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं या वजन बढ़ रहा है या इनफर्टिलिटी है उसके कारण, या जो भी सिम्टम है पीसीओडी का, उसके साथ साथ उनको डायबिटीज के होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी हार्ट अटैक्स होने के, उनका लिपिड प्रोफाइल जो है, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ट्राइग्लिसराइड्स, वो चेंज होता है और कार्डियक रिस्क उनका बढ़ जाता है। तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसमें पीसीओडी में कैंसर्स के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये सिर्फ पीरियड रिलेटेड या स्किन रिलेटेड नहीं है एक्चुअली, इसके बहुत सारे और भी मल्टी डायमेंशंस है जो हमको देखने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि ये भी मुझे हो सकता है।
1: बिल्कुल, यानी कि एक समस्या के चलते कितनी सारी समस्याओं से
0: महिला को रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड,
1: उससे रिलेटेड समस्याएं हैं जिसका अंदाजा हमें लगता नहीं
0: जी,
1: है।
0: जी।

0: क्या है।
1: डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा कि पीसीओडी की समस्या भी आजकल बहुत सुनने में आती है
2: जी।
1: तो हमारी वो महिलाएं जो नहीं जानती हैं कि पीसीओडी क्या है और इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं
2: जी,
1: उन्हें आप बताइए कि क्या है पीसीओडी।
2: ओके, तो पीसीओडी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक प्रॉब्लम शुरू होती है। और उसमें लक्षण ये होते हैं कि लेडीज जो औरतें हैं जिनकी महावारी रेगुलर होनी चाहिए 28 या 30 दिन में, उसके बदले में माहवारी डिले हो जाना, जैसे 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या उससे भी ज्यादा, यानी पीरियड्स लेट होना, या पीरियड जब आता है तो नॉर्मली जो 5 दिन 8 दिन रहता है उसके बदले में 15 दिन 20

0: और समय हो जाने पर या बीत जाने पर फिर उसके दूसरे परिणाम हमारे सामने
1: हो सकते हैं।
0: आपने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि पीसीओडी की समस्या जब है तो ये नहीं है कि वो महिला या लड़की बहुत फैटी होगी, दुबली पतली लड़की को भी ये समस्या हो सकती है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। तो क्या हम ऐसा माने डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि पीसीओडी पीसीओएस, इसका अर्थ ये माने कि महिला माँ नहीं बन सकती?
1: बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली पीसीओ में जो मैंने जो बताया कि अंडे नहीं फूटते हैं रेगुलरली, जो 28 या 30 दिन में एक अंडा नॉर्मली फूटता है, जब वो नहीं फूटता है, जिसको हम ओवुलेटरी डिसफंक्शन बोलते हैं, तो वो हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं मेडिसिन से। इनफैक्ट एक्चुअली इवन बिफोर मेडिसिन हम उनको बोलते हैं आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करो, यानी आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो, योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, होल ग्रेन्स इंक्लूड करो, फ्रूट्स एंड नट्स इंक्लूड करो अपनी डाइट में। तो थोड़ा भी इवन 5% ऑफ वेट लॉस अगर होता है एक पीसीओ पेशेंट जो मतलब जिसका वेट ज्यादा है, तो वो जो अंडा जो रेगुलरली नहीं फूटता है वो फूटने लगता है। यानी सिंपल लाइफस्टाइल चेंज से भी काफी हद तक पीसीओडी या पीएमओएस के हम सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और ये डाइट एक्सरसाइज को
0: बदलते हैं।
1: यस, तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अभी आजकल जो मैं सुनती हूँ लड़कियां 1-2-3 बजे के पहले सोती नहीं है, 8-9-10 बजे के पहले उठती नहीं है, तो ये चेंज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जब सोते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसके कारण हम गहरी नींद सोते हैं, जो हार्मोन है मेलाटोनिन।
0: बिल्कुल।
1: और मेलाटोनिन ये हार्मोन का पीक राइज इज अराउंड 9:30-10।
0: अच्छा
1: जी,
0: उस वक्त तो हम लोग खाना खाना पसंद करते हैं या टीवी देखना पसंद करते हैं।
1: यस, तो जब ये उसका पीक निकल जाता है तो नींद आती है लेकिन इतनी गहरी या क्वालिटी स्लीप नहीं रहती
0: नहीं
1: है। और दूसरी बात ये है कि जब आप लेट सोते हो जैसे 12-1, तो जब बॉडी जग रही है तो ब्रेन ये इंटरप्रेट कर रही है कि ये कुछ स्ट्रेस है, तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो सिक्रेट होने लगता है, जिसके कारण स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी वजन बढ़ना, नींद क्वालिटी नींद नहीं आना, स्पेशली अराउंड द बेली कॉर्टिसोल के कारण वेट पुट ऑन होता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी का इन्फ्लेमेशन, तो ये सब पीसीओ के सिम्टम्स और भी खराब कर देता है।
0: अच्छा।
1: इसीलिए टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, उसके लिए टाइम पे डिनर लेना यानी अर्ली डिनर, जैसे 7:30-8 o'clock, यानी सोने से 2 घंटे पहले डिनर लेना बहुत जरूरी है। और अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 10-10:30 बजे तक सो जाना चाहिए, बिकॉज मेलाटोनिन पीक तभी होता है और तभी आपको इतनी गहरी नींद आती है कि क्वालिटी स्लीप, कि जहाँ पे बॉडी प्रोसेसेस सब हीलिंग होने लगता है, बॉडी का प्रोसेसेस सब स्लो डाउन हो जाते हैं और टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं, तो लेकिन जब आप वो टाइम पे नहीं सोते हैं तो फिर वो जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए प्रोसेस वो नहीं होता,
0: नहीं
1: है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो ये चेंज भी लाना बहुत जरूरी है। और जल्दी उठते हैं जब आप नेचर के साथ रहते हैं, आप जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर साहिबा, कि हम किस तरह से खुद को हमने बीमार कर रखा है, देर रात तक जगना, सुबह लेट तक उठना और कभी भी खाना खा लेना, जब भूख लगेगी खा लेंगे, इस तरह की अनियमित जो दिनचर्या हमारी है वही बहुत बड़ा कारण है इन बीमारियों का।
1: एब्सोल्युटली,
0: है ना? और अगर हम इनमें थोड़ा सा भी बदलाव ले आते हैं तो हम धीरे धीरे सुधार महसूस कर
1: 100%
0: सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है? सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत।
1: आज फिर जीने की तमन्ना।

0: डॉक्टर साहब, किस समय एक महिला को या किशोरी को सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना आपने कहा 7:30 to 8 o'clock खा लेना चाहिए, तो सुबह का और दिन का भी किस तरह का होना चाहिए टाइम, आप थोड़ा सा बताइए।
1: ऐसा है कि उठने के बाद, एक तो आई रेकमेंड कि आप वार्म वाटर लें उठने के बाद, उसमें आप लेमन डाल के, नींबू डाल के ले सकें तो एक बॉडी एनर्जाइज, मतलब उसको हाइड्रेशन चाहिए क्योंकि पूरी रात हाइड्रेशन नहीं मिला
0: नहीं है, yes, बिल्कुल।
1: तो बॉडी की जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है। मे बी थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट लेके या कोई नट्स लेके आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, योग अच्छा। करें, मेडिटेशन करें, एम्प्टी स्टमक करें तो भी चले। और उसके बाद आप जो आपका ब्रेकफास्ट है वो होलसम ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल, ये इसमें ज़्यादा कार्ब्स रहते हैं उस टाइप का, यानी हम जो पराठे खा लेते हैं वो कम खा के, जैसे प्रोटीन्स उसमें इंक्लूड करें। आप खा सकते हैं जो इंडियन ब्रेकफास्ट है उसमें पोहा है, उपमा है, पराठे हैं। तो अब हमको ये सोचना है मदर्स को या विमेन को कि मैं इसमें प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाऊं।
0: ठीक है।
1: तो जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, कार्ब्स कम, तो फिर वो इंसुलिन स्पाइक जो होता है वो कम होता है। प्रोटीन्स प्रिवेंट इंसुलिन स्पाइक, जो मैंने बोला ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जब स्पाइक होता है उससे वेट गेन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या इंसुलिन स्पाइक के कारण वेट गेन होता है। तो जब हम प्योर ओनली कार्ब्स जब हम खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा होती है, तो हमको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा करनी चाहिए। जो हम पहले जो खाते थे, जो हमारे जो पूर्वज थे वो खेती बाड़ी करते थे, उनके फिजिकल लेबर कितना था, अभी हम वो तो करते नहीं है। वी कैन नॉट हैव दैट सेम फूड, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी उतनी हम यूज नहीं कर पाएंगे, और जो कार्ब्स उनको एनर्जी के लिए चाहिए, वो फिजिकल वर्क के लिए, वो भी हम यूज नहीं करते। तो ये थोड़ा चेंज लाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में भी कोई हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट, जैसे आप पनीर ले लो या टोफू ले लो सोयाबीन्स का, बॉइल्ड एग या स्प्राउट्स, वैसे ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए।
0: ठीक है।
1: मिड मॉर्निंग कोई फ्रूट ले लिया अलॉन्ग विथ नट्स एंड सीड्स, वैसे कर सकते हैं। लंच में सैलड, यानी फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर ऑल्सो प्रिवेंट्स

0: इंसुलिन स्पाइक, तो प्रोटीन्स, फाइबर्स ये आपके डाइट में, हर डाइट में होने चाहिए, ताकि जो इंसुलिन स्पाइक जो मेन क्रिमिनल मतलब जो प्रॉब्लम का कारण है वो ना हो.
1: हाँ.
0: तो उसके लिए लंच में आप सैलड के साथ प्रोटीन और जो कार्ब्स की मात्रा है वो कम करें. सिमिलरली मिड आफ्टरनून या मिड इवनिंग आप ग्रीन टी ले सकते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए. और इवनिंग में सूप जिसमें फाइबर मिले अलॉन्ग विद सम प्रोटीन, जैसे मूंग दाल चीला ले लिया या उस टाइप का, मतलब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए इंसुलिन स्पाइक को
1: नहीं होने
0: के लिए.
1: डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी कि किस तरह से एक स्त्री को, एक औरत को, महिला को अपना भोजन या अपनी दिनचर्या फिक्स करनी चाहिए. लेकिन हम उन औरतों को भी ध्यान में रखना चाहते हैं जो श्रमिक वर्ग की हैं, बहुत मेहनत करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, गांवों में रहती हैं. उन्हें नहीं पता होता किस तरह से ग्रीन टी पी जाए या किस तरह से प्रोटीन खाया जाए. उनके लिए आप किस तरह की डाइट का सुझाव देंगी?
0: जैसे इनफैक्ट अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता है उनको पीसीओ होगा भी. बट अगर होता है तो फिर दालचीनी इज एन इंसुलिन सेंसिटाइजर है, मेथी इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जीरा इंसुलिन सेंसिटाइजर है. तो मेथी, जीरा, दालचीनी, पानी ये सब इसका सेवन ये दिन में एक बार दो बार ऐसे, और सोते समय भी दालचीनी का पानी लेके सोए तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया.
1: अच्छा, यानी दालचीनी को पानी में भिगो देना है और छान के
0: बॉइल करके उसको छान के ले सकते हैं.
1: अच्छा,
0: तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है आपकी, कोई भी टाइम पे खा लेना.
1: हाँ.
0: चलो कभी कभी वो हम स्ट्रेस में खा लेते हैं, हमको भूख नहीं लगी होती है लेकिन हम खा लेते हैं, तो वो कम कर देता है. और प्रोटीन्स जो जब आप ज्यादा लेते हो, जैसे आपने खिचड़ी ले ली, खिचड़ी में आपने दाल की मात्रा ज्यादा ले ली तो प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं. कोई भी प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेते हो ना तो आपका जो सटाइटी, यानी आपको लगता है कि नहीं अब पेट भर गया है, अब भूख नहीं है, तो वो भूख कम लगेगी, वो भी है. तो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो खाना आप खाते हो, कैलोरीज लेते हो, वो कम हो जाएगी,
1: नहीं खाएंगे. बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस तरह से अगर हम अपना डाइट प्लान करते हैं तो बहुत हद तक बहुत सी समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं.
0: डेफिनेटली, मतलब और उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर चीज के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी. मतलब आज कल जो हम डिप्रेशन वगैरह इतना सब सुनते हैं, इतना स्ट्रेस के कारण, तो वो भी विद एक्सरसाइज काफी हद तक कम हो जाता है.
1: और गीत संगीत सुनने से भी काफी हद तक हमें
0: 100%
1: तो एक गीत हो जाए आपकी पसंद का.
0: मैं सुनना चाहूंगी जूली फिल्म का माय हार्ट इज बीटिंग.
1: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना है. प्रीति सागर की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत.

0: डॉक्टर साहब, हमारा सवाल यह है कि एक सामान्य जो मासिक चक्र है वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए?
1: ओके, तो जो पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मली हर 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, जिसको हम माहवारी बोलते हैं। तो ये एक अंदर जो हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसके कारण नॉर्मली हर महीने एक अंडा बढ़ता है, जो पीरियड के सेकेंड थर्ड डे से मतलब बढ़ने लगता है, और फिर वो लगभग पीरियड के मे बी 11वें 12वें 14वें दिन फूटता है अंडा, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं।
0: ठीक है।
1: जब अंडा फूटने के बाद अगर वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो वो उनका जो यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो शेड ऑफ हो जाता है। वो लाइनिंग जो है वो तैयारी मतलब गादी होती है कि प्रेगनेंसी अगर रुकती है तो उसकी गादी मतलब वो तैयार होती है, और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है, तो जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो जब रेगुलर ओवुलेशन यानी हर महीने जब अंडा फूटता है और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और जो पीरियड आता है, दैट इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन।
0: यानी 28 से लेकर 30 दिन का ये चक्र होता है।
1: यस, कई गर्ल्स में 21 दिन में भी पीरियड आता है, दैट इज आल्सो नॉर्मल, वो उनका साइकिल है। कई बार 35 डेज साइकिल हो सकता है।
0: सो इट्स अलग-अलग शैली में,
1: ऑन एन एवरेज 28 to 30 days
0: 30 होना चाहिए। अभी आप शुरू में बता रही थी कि इसका जो पहले रेशियो था 12 से 15 वर्ष तक था कि वहां से पीरियड शुरू हो जाते थे, लेकिन अब आपने देखा है कि 7-8 साल लड़कियों को भी पीरियड होने लगी है। क्या इसका कारण है? जल्दी उम्र में जब बच्चा समझ ही नहीं पाता कुछ भी।
1: जी, तो ये एग्जैक्ट रीजन तो शायद डिफिकल्ट है बताना, बट सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अभी आजकल के बच्चों को जो सोशल मीडिया एक्सपोजर है, तो उनका जो मैच्योरिटी है
0: तो जल्दी
1: होने लगता है। तो जो हॉर्मोन्स का जो नॉर्मल जो चेंजेस आने चाहिए जो टाइम पे, वो शायद अब जल्दी होने लगे हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है।
0: तो ऐसी खास बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए जिन बच्चियों की 7 या 8 साल की उम्र में माहवारी शुरू हो गई है?
1: तो बच्चियां बहुत छोटी हैं, सो इसलिए थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना कि वो तो डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो एक तो कि ये नॉर्मल है, नथिंग टू वरी, एंड उनको

0: अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पैड यूज कर रहे हैं या जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो एरिया को साफ रखना, या अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो कपड़ा अच्छा साफ धुला हुआ होना चाहिए, सनलाइट में सुखाया हुआ होना चाहिए, वो सब बच्चियों को समझाना। एंड सेकेंडली कि लड़कियां इस चीज को लेके बहुत ही डरी हुई रहती हैं, मतलब कम्प्लीटली वो उनको बोल देना कि ये टोटली नॉर्मल है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको ये भी बताना, ऑफकोर्स दे आर वेरी स्मॉल बट आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट भी हैं, कि प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। जब पीरियड शुरू हो रहा है दैट मीन्स अभी अंडा फूटने लगा है, तो दैट मीन्स देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी मतलब सेक्सुअल एजुकेशन भी
1: बहुत
0: जरूरी है, ये सोच के कि बच्ची है तो इसको क्या अभी बताएं, लेकिन अभी जो एनवायरमेंट है तो उनको गुड टच बैड टच ये तो हम
1: बताते ही हैं
0: लेकिन अभी उसमें ये भी ऐड करें कि अब प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: मतलब एक इतनी छोटी बच्ची को ये एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है माँ की तरफ से।
0: हाँ, और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जनरली फर्स्ट वन ईयर या टू ईयर्स जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उनका जो ओवुलेशन, जो मैंने बताया कि अंडा फूटना, कि वो प्रक्रिया जो रेगुलर नहीं होती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां का पीरियड जैसे आया फिर मे बी 5-6 महीने नहीं आया, या 2-3 महीने कंटिन्यूसली ब्लीड हो रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है उनको डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज यू कैन नॉट अलाउ कि वो बच्ची 15 दिन 20 दिन 25 दिन बस उसका ब्लीडिंग चालू है, बिकॉज वो डेफिनेटली अनिमिक हो जाएगी उसकी। और अगर लेट आया है पीरियड तो नॉट टू वरी कि फर्स्ट 1-2 साल ऐसे इरेगुलर ओवुलेशन होता है। तो
1: ये भी चिंता का विषय हो जाता है,
0: काफी बार मदर्स आती हैं
1: कि क्या बात है अगले महीने इसको समय पर पीरियड्स नहीं आए।
0: जी जी जी,
1: ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 1-2 साल तक ये समस्या आ सकती है कि पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रही है महावारी तो उसके लिए पेरेंट्स को चिंता करनी।
0: यस, उनको डॉक्टर के पास डेफिनेटली लेके जाना है। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, एक मेरी पेशेंट आई थी जो बच्ची का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया था, क्योंकि वो 20 दिन कंटिन्यूसली ब्लीडिंग विद क्लॉट्स था उसको, एंड उनको लगा कि ठीक है बंद हो जाएगा, लेकिन शी ऑलमोस्ट एक फेंट हो गई थी स्कूल में।
1: बच्चे के अंदर कितना डर बैठ जाता होगा छोटी बच्ची को कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर उसको ता उम्र से फेस करना है, तो उसके लिए उसको मेंटली बहुत मैच्योर करना होगा एक माँ को। तो डॉक्टर साहिबा, जब आपने कहा कि पीरियड्स रेगुलर भी होते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं, इस दौरान आपने देखा है बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा ऐंठन आती है, बच्चे तो खैर लड़कियां तो रोने भी लग जाती है, महिलाएं भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग से परेशान हो जाती हैं, और कई कई महीनों तक पीरियड्स नहीं भी आता है, ऐसी समस्याओं से भी हम दो चार होते हैं। तो इनमें से किन स्थितियों को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए, और कितना सावधान रहना चाहिए, और इसको किस तरह से फेस करना चाहिए?
0: तो जो लड़की जिसका पीरियड रिसेंटली स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस करती है बहुत पेन, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, तो इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन होता है, कई को बिल्कुल नहीं होता है, कईयों को थोड़ा मीडियम होता है। तो अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप पेन किलर कोई भी पैरासिटामोल टाइप दे सकते हैं बच्चे को, ताकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि सबका पेन थ्रेशोल्ड जो है यानी पेन सहन करने की शक्ति भी अलग
1: अलग अलग होती है,
0: तो उसके लिए हाँ बिल्कुल मेडिसिन ले सकती है बच्ची, बट ज्यादा पेन किलर्स नहीं खाने, ये मुझे स्ट्रेस करना है, क्योंकि ज्यादा लेने से, उनका सेवन करने से कई बार किडनी पे असर आ सकता है, स्पेशली ड्रग लाइक डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर्स में काफी टाइम होता है, तो आपके एक डॉक्टर को मिलके ही पेन किलर ले, अगर पैरासिटामोल काफी सेफ है तो वो ले सकते हैं। जो 15-20 साल के बाद की एज के जो पहले पेन नहीं था और अभी बहुत सिवियर होने लगा है, तो डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। तो फाइब्रॉइड्स एक रीजन हो सकता है, और दूसरा एक अभी जो एंडोमेट्रियोसिस एक एंटिटी है, एटलीस्ट हमारे सिटीज में तो काफी बढ़ गई है।
1: तो डॉक्टर साहिबा, इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक गीत सुन लें आपकी पसंद का।
0: जी
1: बताइए।
0: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
1: आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: कई बार क्या होता है, लड़कियां या महिलाएं पीरियड्स के दर्द को वर्षों तक एक सामान्य मानकर सहती रहती हैं, जैसे आपने कहा पैरासिटामोल खाई या वर्किंग वीमेन से चले गई जॉब में, लेकिन कब ये दर्द किसी बीमारी की ओर बढ़ जाएगा? तो आजकल जो एंड्रोमेट्रियोसिस जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ये भी इस तरह की बीमारी भी देखने में आ रही है,
1: जी जी,
0: तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए।
1: तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक साइंस अच्छी तरह से पता नहीं कर पाया है।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो इसके कारण भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, मतलब एक कोई एक रीजन नहीं बताया कि मे भी ये हो सकता है, मे भी ये हो सकता है वैसे। तो उसमें से एक कारण शायद सब लोग समझ पाए, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यूट्रस के साइड पे दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो ओवरीज में से जो अंडा निकलता है वो फेलोपियन ट्यूब्स पिकअप कर लेती हैं। तो जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो वजाइना से बाहर आता है, वैसे ही थोड़ा बहुत ब्लड थ्रू द ट्यूब्स एब्डोमेन में चला जाता है, यानी ओवरी पे एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो एंडोमेट्रियम जो बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियल टिश्यू अगर ओवरी में है या यूट्रस के सरफेस पे है, तो ये जब हर महीने वो एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यूरिंग पीरियड्स वो ब्लीड होता है, तो फिर वो गांठ हो सकती है ओवरीज पे, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, या यूट्रस के सर्फेस पे वो गांठ हो सकती है, यानी पीरियड्स में वो ब्लड जमा होने लगता है, जिसके कारण वो सिवियर पेन हो सकता है पेशेंट को, और उसके कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ सोनोग्राफी, समटाइम्स इवन अ MRI, मतलब बहुत अगर पेन है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करके एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट,
0: जरूरी है। यस, इसे केवल एक साधारण दर्द समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए,
1: बिल्कुल नहीं। यस,
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। और इसके साथ ही डॉक्टर साहिबा, महिलाओं से जुड़ी एक और समस्या आती है ल्यूकोमिया, जिसे हम सफेद पानी है ना सामान्य भाषा में कहते हैं, या खुजली है उस स्थान पर, जलन होना, या असामान्य स्राव, ज्यादा रक्तस्राव होता है, ऐसी समस्याओं को लेकर भी हमें डॉक्टर के पास जाकर बताने में बहुत झिझक महसूस होती है, और हम इसे दबाते चले जाते हैं या इसको झेलते चले जाते हैं, तो कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है?
1: तो इसके लिए पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो वाइट डिस्चार्ज जो ल्यूकोरिया बोलते हैं, टू सम सर्टेन एक्सटेंट ये नॉर्मल है पीरियड के पहले।
0: अच्छा,
1: और ओवुलेशन के टाइम पे, जो मैंने बोला ना कि पीरियड के 14वें दिन या 15वें दिन जब अंडा फूटता है, उसके पहले थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज जाना, ये दोनों टाइम में नॉर्मल है। तो अगर वाइट डिस्चार्ज में अगर स्मेल नहीं है, इचिंग नहीं है, तो वो वरीसम नहीं है, स्पेशली अगर पीरियड के पहले या मिड पीरियड्स, मतलब मिड साइकिल में है। बट अगर बहुत बहुत बास आ रही है, या बहुत बदबू आना, या बहुत इचिंग होना, यानी बहुत खुजली जैसा वहां पे आना, अगर ये हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
0: तो ये जो समस्या हम जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं, किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है?
1: जी, डेफिनेटली हो सकती है, कोई भी एज में, यंग एज से लेके मिडिल एज से लेके इवन पोस्ट मेनोपॉज हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: उसमें एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर।
0: अच्छा, जो एक आम समस्या है।
1: यस, इंडिया में ऑलमोस्ट 200 वुमेन आर डाइंग ऑफ दिस कैंसर एवरी डे। मतलब ये सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है, खास करके विलेजेस में।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, स्पेशली मिक्स्ड विद ब्लड अगर,
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी,
1: तो इमिजिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, और वो कोई भी एज में, मतलब सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद अगर ये समस्या आ रही है, तो ये 100% आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर ये मिक्स्ड विद ब्लड है।
0: किसी तरह की झिझक या समस्या को लेकर हम बैठ जाते हैं, ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता।
1: जी, बिल्कुल।
0: एक गीत आपसे सुनेंगे, लेकिन चूंकि बात बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चल रही है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था फाइब्रॉइड का, कि महिलाओं के गर्भाशय में एक गांठ है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, ये भी एक आम समस्या की,
1: ये बहुत ही आम है,
0: आम समस्या है।
1: यस,
0: तो ये एक सामान्य है, या हमें सचेत हो जाना चाहिए, या कई बार ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स में जो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है उसकी वजह से ये फाइब्रॉइड की समस्या सामने आती है?
1: नहीं, फाइब्रॉइड बेसिकली जो यूट्रस का जो मसल है, इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर ग्रोथ, ये एक नॉन कैंसरस, यानी ये कैंसर नहीं है, ये ग्रोथ है, एक गांठ है, लेकिन जो बहुत रेयर है कैंसर होना, यानी 1,00,000 फाइब्रॉइड में एक कैंसर मतलब हो सकता है, तो मतलब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसको नॉन कैंसरस बोलते हैं फाइब्रॉइड्स. तो जो मसल में जब ये जो गांठ बनने लगती है, तो डिपेंडिंग ऑन जो गांठ कहाँ पे है, अगर यूट्राइन कैविटी के अंदर है यानी जहाँ एंडोमेट्रियम है जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, मसल के अंदर है तो उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, यूट्रस के बाहर है तो सबसीरोसल फाइब्रॉइड बोलते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के. तो फाइब्रॉइड्स के कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव पेन होना, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज और बैकएक. अगर ये सिम्टम्स हैं तो फाइब्रॉइड हो सकता है पेशेंट को. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लोकेशन, कई बार बड़े फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बाहर हैं तो इतना तकलीफ नहीं देते हैं.
0: अच्छा.
1: कई बार बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स हैं लेकिन यूट्रस के अंदर के साइड पे हैं, बहुत छोटे, मे बी इवन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, वो बहुत तकलीफ दे सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड्स हैं तो उसको निकालना ही चाहिए. ये भी मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं कि फाइब्रॉइड है तो मुझे थैली निकालने को बोला है. नो, आपके सिम्टम्स क्या है, आपकी साइज क्या है फाइब्रॉइड्स,
0: कहाँ में है, कहाँ पर.

0: लोकेशन
1: हाँ
0: कहाँ है वो सब देख के फिर डिसीजन लिया जाता है कि गांठ निकालनी जरूरी है या यूट्रस निकालना जरूरी है कि
1: तो कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहिबा कि ऐसी स्थिति में बच्चा पैदा नहीं हो सकता है या स्त्री जो है गर्भधारण नहीं कर पाती है, ये समस्या भी आती है।
0: मैंने जो बोला यूट्रस की लाइनिंग के अंदर जब होता है तो इट कैन एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी, जैसे हम कॉपर्टी जब बच्चा नहीं चाहिए तो कॉपर्टी डालते हैं, कॉपर्टी एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी और बच्चे को इम्प्लांट मतलब एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने से प्रिवेंट करती है, यानी गर्भ निरोधक होता है। वैसे ही अगर फाइब्रॉइड जो है अगर यूट्रस के कैविटी के अंदर है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं या सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं तो उसके कारण बच्चा नहीं होने का कारण हो सकता है या रिकरेंट अबॉर्शन भी हो सकते हैं।
1: तो इसलिए सचेत हो जाना चाहिए और जैसे ही हमें लक्षण मिलते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज,
0: ये अबॉर्शन का भी कारण बन सकता है, यानी गर्भ नहीं रुकना या घड़ी घड़ी यू नो 1.5 महीना 2 महीने में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, ये भी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का।
1: जी, तो एक गंभीर समस्या बन सकती
0: बन सकती है, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कैंसर नहीं है तो डरना नहीं है।
1: इलाज संभव है इसका।
0: यस, इलाज संभव है और जरूरी नहीं है कि सब फाइब्रॉइड्स को हमको ट्रीट ही करना है, हम बस उन पे नजर रखें, ऐसा भी कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए गीत सुन लेते हैं।
0: जी
1: बताइए।
0: आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे,
1: बहुत सुंदर गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अनपढ़।

सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे PCOD और IVF। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में वस्तुओं के निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। मुंबई में भारत और संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और UAE के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के बाद दोनों देशों का व्यापार करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि UAE ने भारत में अब तक लगभग 25 अरब डॉलर का निवेश किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी रूप से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर मांडविया ने सभी हितधारकों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सम्मेलन कल से 1 अक्टूबर तक नौसेना भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये नौसेना का सर्वोच्च स्तर का सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले विध्वंस गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला आज केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। बैठक में दिल्ली सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना की समीक्षा की गई। नेपाल के मनांग जिले में हिमलुंग पर्वत के आधार शिविर में हिमस्खलन होने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 12 लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्र में बचाव अभियान जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 17 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 40 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं गुरु फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की।

दोस्तों भी आपने सुना आशिकी फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम का अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में राज 3 फिल्म से।

दोस्तों अभी आपने सुना बेताब फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
3: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूँ तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुँचा दिया
2: जी।
3: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताज़ा कर दी
2: जी।
3: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
2: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश।

0: के लिए अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से। डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
1: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं।
0: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
1: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं।
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए, कुष्ठ रोगियों की तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया।
1: जी,
0: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
1: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
0: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
0: हमारा अगला प्रश्न था बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
0: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है।
1: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है।
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
1: जी,
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माध।
1: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
2: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
3: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें को

0: सेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
1: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधिपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
0: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है।
1: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा,
0: ए मेरी मांद, ए मेरी मांद।
1: पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
0: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
1: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
0: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
1: उसने सोचा,
0: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
1: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
2: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
3: अभी आपने सुना यह हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
4: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है।
1: देखते हैं।
2: और वो भी अचानक।
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।

0: साथ में फौजी भाई धनसिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
1: भैया कोई खास बात है जरूर।
2: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
1: अच्छा,
2: कुछ फौजी धनसिंह के घर आए थे।
1: हाँ,
2: बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
1: अरे भैया कुछ पता नहीं जाने क्या
3: मसला है। ठीक है,
4: चल भगवान सब ठीक
1: हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा।
5: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
1: शोक सूचना?
5: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
6: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
5: हाँ बिल्कुल, हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है और हमारे गांव के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे भाई धन सिंह थापा इसी गांव से है।
1: वो भी तो मोर्चे पर लड़ रहे थे, उनका कोई समाचार?
5: हाँ, कल रात भारतीय सेना द्वारा सूचना दी गई कि
7: सब ठीक तो है ना मुखिया जी?
8: कैसे हमारे भाई?
9: बताओ तो
8: थापा जी कैसे हैं?
5: सेना द्वारा सूचना मिली है कि हमारे जांबाज भाई मेजर धन सिंह थापा लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
9: हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हो गया? सेना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया?
8: कैसे समाचार?
5: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
6: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी जिसने ऐसे जांबाज योद्धा को जन्म दिया।
8: अरे वो हमारा गौरव है,
7: हमारा गौरव है।
6: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर रहे, मेजर धन सिंह थापा अमर रहे।
5: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
8: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
7: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
6: जब तक सूरज चांद रहेगा,
10: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
6: भारत माता की
10: जय,
6: भारत माता की
10: जय।
11: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
12: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
11: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है, गांव का नाम है सुरम्य।
12: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
11: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
12: और आखिरकार वो दिन आ गया जब 28

0: 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
1: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
2: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
3: जय हिंद धन सिंह। हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
2: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
3: बेशक अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
2: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
3: तुमने ठीक सुना है धन सिंह। हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
2: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे बढ़ने न पाए।
3: धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
2: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आगे बढ़ो।
3: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है।
4: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। जल्दी से जल्दी सहायता पर इनको रोक के रखो।
3: हेलो हेलो, सिरिजा फोन से मेजर धन सिंह थापा दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेद व्यास दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
3: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
3: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मार कर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो,
6: हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है?

0: उससे।
1: अरे उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
0: ये सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे।
1: कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है। तो संभालो अपनी बंदूक, एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर। जय मां काली,
2: जय।

0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की पट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
2: छोड़ो।
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
3: माँ, माँ, माँ, माँ देखो चिट्ठी आई है। माँ देखो
4: चिट्ठी, ला दिखा तो।
3: अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। हाँ, देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है,
5: जिंदा है। अरे बहुत खुशी
6: है बेटा।
5: हाँ, जिंदा है धन सिंह थापा।
1: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परमवीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण

0: और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।
5: गंदगी को दूर भगाओ, भारत को स्वच्छ बनाओ।
4: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz से। शाम के 6 बजन वाले ने लोहन सुनो दिल्ली केंद्र तो हिंदी विच समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलुओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस सहमति पर समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण, खाद्य सुरक्षा और जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है।
1: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान, स्टार्टअप और नए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान तथा अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस अंतरिक्ष साझेदारी 6 दशक से अधिक पुरानी है, जिसमें रॉकेट प्रयोगों से लेकर गगनयान और संयुक्त उपग्रह मिशन तक शामिल हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि IIM बंगलुरु, IIT कानपुर और IIT चेन्नई के अध्ययनों के आधार पर भारत की माल ढुलाई लागत में लगभग 6% की कमी आई है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र

0: सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से संकेत मिलता है कि औद्योगिक गतिविधि का विस्तार स्वस्थ गति से जारी है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 3 और पदक जोड़े हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीतने के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 18 रजत और 19 कांस्य सहित कुल 41 पदक के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: जहां रहती है साफ सफाई, वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
3: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਲੱਫ ਮਾਸਟਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਸੁਨਿਧੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज देशभर में सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसी भी आतंकवादी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कंपनियों, फर्मों और ठेकेदारों को अदायगी में विलम्ब होने पर ब्याज सहित भुगतान की घोषणा की। हरियाणा में आज शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर याद किया गया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में शहीद आजम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। फरीदाबाद के गांव पल्ला सेहतपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जाएगा। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शाहबाद शहर के सभी पार्कों की 15 दिन में सफाई करने के निर्देश दिए। और आज विश्व रेबीज दिवस पर सेवा संकल्प अभियान के तहत पालतू पशुओं का टीकाकरण किया गया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा देय भुगतान में सरकारी विभाग के स्तर पर अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित कंपनियों, फर्मों और ठेकेदारों को विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ के हरियाणा सिविल सचिवालय में विभिन्न विभागों द्वारा अपनाई जा रही अच्छी प्रथाओं की समीक्षा करते हुए वित्त विभाग को इस संबंध में एक समुचित योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसका न केवल विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ता है, बल्कि परियोजनाओं के पूरा होने में भी विलंब होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत देय राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना विभागों की जिम्मेदारी है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के स्तर पर अनावश्यक विलंब के कारण भुगतान समय पर नहीं हो पाता तो ब्याज राशि की वसूली संबंधित जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी से की जाएगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
3: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की अनसिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और

0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा में आज शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर याद किया गया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज शहीद आजम की जयंती पर अंबाला छावनी के लघु सचिवालय में स्थापित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शत शत नमन किया। उन्होंने भारी वर्षा के बीच इंकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाकर सभी में देशभक्ति का संचार भी किया। पत्रकारों से बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह ने जो लड़ाई शुरू की उसे जारी रखना है और उनके सपनों का भारत बनाना है।
1: जो अरमानों की उम्र होती, सपने बुनने की उम्र होती है, उस उम्र में शहीद भगत सिंह ने हंसते हंसते और मेरा रंग दे बसंती चोला गाते गाते देश के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। भगत सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी याद हर हिंदुस्तानी के दिल में है और हमें उनके सपनों का भारत बनाना है।
0: फरीदाबाद के गांव माझावाली स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जाएगा। वहीं गांव पल्ला सेहतपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाकर उसे 50 बेड की क्षमता वाले आधुनिक शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा झज्जर जिले के गांव बेपुनिया में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा सिरसा जिले के गांव अरनियावाली में नया उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। सरकार का उद्देश्य आमजन को उनके घर के नजदीक ही बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने आज कुरुक्षेत्र जिले में लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान पुलिस को जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद कीमत अदा न करने के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए प्रॉपर्टी डीलर की संपत्ति को जब्त करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि आज 11 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से 9 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया, जबकि 2 मामलों में समिति गठित करके जांच के निर्देश दिए गए। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि बैठक में शाहबाद शहर के सभी पार्कों की 15 दिन में सफाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
2: पूरे देश में एक मिनट सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, तो इसी की कड़ी में मैंने निर्देश दिए हैं कि 17 अक्टूबर से पहले जो शाहबाद के जितने नाले हैं उनके सबकी सफाई हो, और उसमें मैं भी विजिट करूंगा और उपायुक्त महोदय खुद भी जाएंगे।
0: उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंत्री ने बताया कि अमीन जाने वाली सड़क के निर्माण के लिए 9,27,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में टेंडर हो जाएगा और 15 दिसंबर तक इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि वे लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं।
2: कांग्रेस पार्टी समय समय पर इस प्रकार के बयानबाजी करती रहती है। यदि वोट चोरी हमने की होती तो मैं 2019 की बात लोकसभा की लेता हूँ, इनकी 52 सीट आई थी। यदि हमने वोट चोरी की होती, अब इनकी 99 आई है 2024 में। यदि हमने वोट चोरी करती है तो 52 से रखनी चाहिए, 52 से 99 नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये सब कहने की बात है, रातल पर जाकर देखे वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं।
0: विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से सिरसा के राजकीय पशु चिकित्सालय में पालतू जानवरों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान पालतू कुत्ते और बिल्लियों को रेबीज से बचाव के लिए टीके लगाए गए। अभियान से पालतू पशुओं को रेबीज जैसे गंभीर बीमारी से बचाने में मदद मिलेगी। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर आज पंचकूला के पालतू पशु चिकित्सा केंद्र में निशुल्क एंटी रेबीज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 250 से भी अधिक पालतू एवं आवारा पशुओं को टीके लगाए गए। हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, अम्बाला शहर की पशु रोग जाँच प्रयोगशाला द्वारा विश्व रेबीज दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत पशुपालकों एवं किसानों के साथ साथ क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम में पशुओं एवं मनुष्यों में होने वाले रेबीज रोग, इसके संक्रमण के तरीके, प्रमुख लक्षण तथा बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। आज देशभर में सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसी भी आतंकवादी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने

कंपनियों, फर्मों और ठेकेदारों को अदायगी में विलंब होने पर ब्याज सहित भुगतान की घोषणा की। हरियाणा में आज शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर याद किया गया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में शहीद आजम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। फरीदाबाद के गांव पल्ला सेहतपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: पापा दी उम्र पार दी कमाई उना दी सिख्या
1: अते हमेशा साड़ी फिकर करना वैसे उना दी एक जमा पूंजी बैंक विच भी है
0: पर क्लेम करना मुश्किल होवेगा
1: हुण होर भी आसान हो गया है बैंक दी वेबसाइट जा शाखा ते जाओ क्लेम फॉर्म भरो दस्तावेज जमा करो 15 दिन च रकम प्राप्त करो अते नॉमिनी नाल क्लेम दा निपटारा होवे होर भी आसान
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनो सचेत रहो
3: नमस्कार ये आकाशवाणी है हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां भारत वालों पाकिस्तान के दहशतगर्दी टिकाणे ते की गई सर्जिकल स्ट्राइक की अज 10वीं परेकांड है भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा सूबे च नशा की मौजूदा स्थिति तरसयोग है ते सरकार इस नूं काबू करन विच असफल रही है देश अज महान इनकलाबी शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मौके श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है पंजाब का सूबा पदरी समागम लुधियाना विखे पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने कहा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मुद्दे से पुलिस जांच शुरू कर दी गई है दंगा करन जां करवाउण वाले किसी भी व्यक्ति नूं बख्शा नहीं जाएगा अते एशियाई खेडां विच भारत दी ईशा सिंह ने औरतों के 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत मुकाबले च चांदी तमगा जितया भारत की मर्दां की क्रिकेट टीम भी सैमीफाइनल विच पहुंची ते हुण खबरां विस्थार नाल भारत अज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वरेगंढ मना रहा है 28-29 सितंबर 2016 की रात को फौज ने कंट्रोल रेखा के पार दहशतगर्दी टिकाणों खिलाफ निशानाबद्ध कार्रवाइयां की यह कार्रवाइयां 18 सितंबर को उरी दहशतगर्दी हमले तो बाद की गई जिस विच 18 भारतीय जवान शहीद हो गए सन इस कार्रवाई ने दहशतगर्दी खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में एक तब्दीली की निशानदेही की इस तो बाद साल 2019 बालाकोट ते 2025 ऑपरेशन सिंदूर विच पाकिस्तान खिलाफ कार्रवाइयां कीतियां गईयां कल आकाशवाणी ते प्रसारित अपने मन की बात प्रोग्राम च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 दे सर्जिकल स्ट्राइक नूं अहम प्राप्ति दस्या उन्हां कहा कि पिछले दहाके विच दहशतगर्दी विरोधी भारत दा नजरिया बदल गया प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी हमलों के लंबे समय तो बाद सर्जिकल स्ट्राइक भारत की एक फैसलाकुन कार्रवाई सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनतक सेवा च 25 साल पूरे हो रहे ने एक अजिहा सफर है जिहड़ा जन सेवा तो देश सेवा दे मंत्र ते अटुट वचनबद्धता नाल प्रभाषित हुंदा है ते इह सिलसिला जारी है सेवा ते सुशासन की इसे सोच तो प्रेरित होकर सरकार 2047 तक एक विकसित भारत के टीचे नूं हासिल करन लई लगातार काम कर रही है समावेशी विकास ते समाजिक सशक्तिकरण राही इस समर्पण लोगों के जीवन च तब्दीली लिया रहा है अज सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष लड़ी च असीं तुहाडे लई एक मिसाल लेके आए हाँ कि किस तरह इस दृष्टिकोण नूं पीएम स्वनिधि योजना राही अमल च लिया गया होर वेरवे नाल एक रिपोर्ट
4: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 विच फड़ी लगाउण वाले विक्रेतावां नूं कार्यशील पूंजी कर्जियां राहीं रस्मी वित्तीय प्रणाली विच लिया के उन्हां दे जीवन विच बदलाव लियाउण दे मंतव नाल शुरू कीती गई सी इस योजना हेठ अगस्त 2026 तक 78 लाख तो वध विक्रेतावां ने 19,171 करोड़ तो वध दे 1.18 करोड़ तो वध कर्जे प्राप्त कीते हन पंजाब विच भी बहुत सारे फड़ी लगाउण वाले विक्रेतावां ने अपने कारोबार शुरू करन लई कर्जे प्राप्त कीते हन अते जलंधर तो 2 लाभपात्रियां सुनील कुमार अते मीनू चौहान ने आकाशवाणी नाल अपने अनुभव सांझे करदिया दस्या
5: मेरा पीएम स्वनिधि दे तहत लोन होया सीगा जी जिहदा मैनूं बहुत बेनीफिट मिलिया लॉकडाउन दे टाइम समय मैनूं बहुत दिक्कत सीगी जी कारोबार शुरू कीता उस तों बाद मैं डिजिटल पेमेंट दे राहीं इहनूं कंप्लीट कीता और फिर मैनूं 20,000 दा लोन मिल गया और मैं फिर वरायटी होर भरी जी 18 महीने दे विच विच मैं क्लीयर कर दिता फिर मैं 50,000 दा लोन करवाया हुण मैं ई रिक्शा लई जिहदे विच मैनूं आउण जाउण दी बहुत दिक्कत हुंदी सी ई रिक्शा करके मैं आराम मेनू बहुत खुशी है कि मैं हुण अपने बच्चियां नूं पढ़ा लिखा के कोई चंगे राह ते पा सकदा हां
6: कोरोना विच असीं ना बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि घर दा खर्चा किदां चलेगा फिर सानू किसी ने दस्या कि लोन वगैरा मिलदे पे ने पीएम स्वनिधि योजना तो असीं उस लोन विचों असीं अपना कपड़े दा काम शुरू कीता जिस विच सानू बहुत अच्छा

0: सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। वर्तमान नियमों के अनुसार यह सब्सिडी एक साल में अधिकतम 4 रिफिल सिलेंडरों तक सीमित है। ग्रामीण और गरीब परिवारों में खाना पकाने के लिए पारंपरिक तरीकों जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले और मिट्टी के चूल्हों का उपयोग किया जाता था। इनसे निकलने वाला धुआं महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता था। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। इस योजना के लागू होने से लकड़ी या उपले जैसे पारंपरिक धुएं वाले ईंधन से मुक्ति मिली है और घर के अंदर का प्रदूषण कम हुआ है, जिससे महिलाओं और बच्चों को गंभीर श्वसन बीमारियों से राहत मिली है। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी बीनने या लाने में जाने वाला महिलाओं का रोजाना का समय की बचत हुई है। LPG कनेक्शन गरीब परिवारों की महिलाओं के नाम पर जारी किए जाते हैं, जिससे उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। देश में कुल घरेलू LPG उपभोक्ताओं की संख्या करीब 32,77,00,000 से अधिक से 33 करोड़ के बीच है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या लगभग 10,58,00,000 रुपये है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने भी केंद्र की इस योजना को धरातल पर लागू किया है। हरियाणा सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की रियायती दरों पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के कदम भी उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राज्य में BPL और पात्र गरीब परिवारों की महिलाओं को ये कनेक्शन दिए गए हैं। नए और छूटे हुए पात्र परिवारों को लाभ देने के लिए इस योजना के अगले चरणों के तहत आवेदन प्रक्रिया भी समय समय पर जारी रहती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत सितंबर 2026 में जुलाई माह की गैस सब्सिडी के रूप में 5,00,000 लाभार्थियों के खातों में 19,68,00,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए हैं। अब तक इस योजना के जरिए राज्य की 14,65,000 पात्र महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा चुका है। इस राशि को मिलाकर अब तक 14,65,000 पात्र बहनों के बैंक खातों में कुल 359,82,00,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की इस योजना से हरियाणा की लाखों महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी हरियाणा राज दी हफ्तावारी समाचार समीक्षा। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तों बोल रहे हैं 107.2 MHz ते लोहूं सुनो पंजाबी गीत।

0: ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਗਾਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਮਾਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
2: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
3: HIV
2: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला।

0: शहीद फिल्म के लिए इस गीत को लिखा था राजा मेहदी अली खान ने। गीत की धुन तैयार की थी गुलाम हैदर ने और आवाजें थी मोहम्मद रफी, खान मस्ताना और साथियों की।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया

0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
3: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
2: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
4: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
2: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

कैलाश खेर और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना भारतीय सेना गीत, और अब आपको सुनवा रहे हैं मेरी जंग फिल्म में लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया गाना। इस गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: मेरी जंग फिल्म के लिए इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
0: जयमाला कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत और आवाज है लता मंगेशकर की।

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला में आइए अब सुनते हैं ज्वेल थीफ फिल्म का गीत। इसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत सचिन देव बर्मन का है।

0: ज्वलते फिल्म के लिए इस गीत को गाया था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प

0: से कुछ खुशगवार बातें।
1: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती। जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
2: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
2: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
3: HIV
2: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। आइए अब आपको सुनवाते हैं ताजमहल फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। रोशन का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने।

0: ताजमहल फिल्म के लिए इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह।

0: का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: अगला गीत है राहुल देव बर्मन के संगीत में। इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, और फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

0: कोई चीज अपनी जगह पे नहीं मिलती, न जाने श्रीमती जी कहाँ कहाँ रख देती हैं। अब इतनी देर से कंघा ढूंढ रहा हूँ लेकिन क्या। हाँ ये अमा कहाँ हो? फिर वही कमीज निकाल कर रख दी।
1: ओ, अब क्या हो गया?
0: अरे होना क्या है, फिर वही घिसी हुई कमीज सामने आ गई है। मैं 20 बार कह चुका हूँ कि अब इसे देकर बर्तन ले लो।
1: मैं भी तुम्हें 20 बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारी कमीज घिस चुकी है, या तो नई लाओ या कपड़ा लाओ, सिलने को दो।
0: सिलने को
1: कुल जमा 3 कमीजों से काम चल रहा है, घिसेंगे तो ही।
0: अरे बाजार जाने का टाइम मिलता तो कमीज क्या दूसरी पत्नी भी ले आता।
1: हाँ हाँ वो तो तुम जरूर ले आते।
0: शुक्र मनाओ कि टाइम ही नहीं मिल रहा।
1: तो फिर इस पुरानी पत्नी की तरह पुरानी कमीज को भी बर्दाश्त कर लो।
0: अरे वो तो कर ही रहा हूँ, ऑफिस अर्जी भिजवाए देता हूँ कि कमीज नहीं है इसलिए दफ्तर आना संभव नहीं है।
1: अजी कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहनकर चले जाते?
0: मैं कुर्ता पजामा पहन के ऑफिस जाऊँ?
1: क्यों, क्या कुर्ता पजामा कपड़ों में शामिल नहीं होते?
0: अरे क्यों मजाक कर रही हो, दफ्तर में लोग कहेंगे अरे रघुवीर बाबू सोते से जगकर चले आए हो क्या।
1: तो फिर इस समय तो यही एक धुली हुई कमीज है, दूसरी धोबी के यहाँ गई है। देखो इस वक्त काम चला लो, फिर हम शाम को बाजार चलते हैं।
0: हाँ।
1: वहीं से एक नई कमीज ले लेना।
0: नई कमीज ले लेना, यानी कमीज के साथ एक साड़ी भी खरीदनी पड़ेगी क्यों?
1: अजी वो तो तुम्हारी श्रद्धा की बात है, साड़ी खरीदोगे तो सती की दुआएं मिलेगी।
0: अच्छा अच्छा ठीक है सती महारानी, लो वही कमीज पहनाओ।
1: ये हुई ना बात।

0: आजी बड़े साहब, अरे भाई जल्दी से नाश्ता लगाओ, देर हो रही है। और हाँ, वो हमारी नई कमीज भी लेती है ना।
1: नाश्ता मेज पर अखबार से ढका रखा है। ये लो चाय पियो।
0: हाँ लाओ।
1: हाँ, अब वो तुम्हारी कमीज ना प्रेस करने के लिए रखी है बाहर बरामदे में।
0: अच्छा अच्छा,
1: बस अभी एक मिनट में लाई, तब तक तुम चाय पियो।
0: ठीक है ठीक है, ले आओ फौरन ले आओ। अरे क्या हुआ, जला दी क्या?
1: नहीं जली तो नहीं, पर
0: क्या हुआ? पर
1: बंदर तुम्हारी नई कमीज लेकर भाग गया।
0: क्या बंदर हमारी कमीज ले गया? और तुम देखती रही कहाँ है, कहाँ है डंडा, कहाँ है
1: वो डंडा? ये मसेरी का बांस है। हाँ यही ले लो, ये ले लो।
2: अरे
1: अरे हाँ जल्दी जाओ, इस जगह भाग में जाए, जल्दी जाना। ओहो, भगवान मिल जाए। कौन इस समय, कौन आ गया, कौन कौन है?
3: कैसी हैं आप सुषमा भाभी?
1: ठीक ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आइए अंदर आइए, वहाँ क्यों खड़े हैं?
3: रघुवीर बाबू ऑफिस चले गए क्या?
1: अभी गए तो नहीं है, बस जाने वाले हैं। कुछ काम है क्या आपको?
3: नहीं, काम तो कोई खास नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले बंदर हमारी छत पर एक कमीज छोड़कर भाग गया।
1: क्या?
3: हाँ, मैंने एक दिन रघुवीर बाबू को वैसी ही कमीज पहने देखा था, तो सोचा कि पहले यही पूछ ले।
1: ये आपने बहुत अच्छा किया।
0: भाग क्या कमबख्त।
1: अरे सुनो।
0: हाँ क्या? अरे मिलता तो बताता उसे।

0: अरे सुनो तो,
1: महंगाई के जमाने में कितनी मुश्किल से बनवाई थी वो कमीज, वो भी लेकर भाग गया।
0: तो मेरी सुनोगे कि नहीं?
1: क्या है?
0: मैं कह रही थी वो तुम्हारी कमीज मिल गई।
1: क्या?
0: हाँ।
1: क्या मेरी कमीज मिल गई?
0: हाँ।
1: कहाँ है?
2: हमारे पास है। अच्छा? लेकिन पहले चाय पिलवाइए।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, क्यों क्यों क्यों क्यों नहीं भाई सुषमा जी, राम बाबू को थोड़ा चाय वाय पिलवाइए।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस मैं ये गई और ये आई, बस अभी
2: और ये लीजिए अपनी कमीज।
1: हाँ हाँ हाँ, लाइए। शुक्र है भगवान का कि मिल गई है ये कमीज है।
2: और क्या पैंट है? आप ही देखिए, ये कॉलर है।
1: क्या?
2: ये बटन है, ये जेब है, ये आस्तीन है।
1: मैं कहता हूँ दूसरी आस्तीन कहाँ है?
2: तो आप क्या समझते हैं दूसरी आस्तीन मैंने रख ली है? अजी जनाब, जैसी कमीज बंदर छोड़ गया वैसी ही है।
1: और ये कमीज आप वापस करने आए हैं?
2: तो और क्या करते, रख लेते। ये फटी कमीज हमारे किस काम की? टेरी कॉट की है, इसका तो पोछा भी नहीं बन सकता।
1: पोछा नहीं बन सकता? क्या, मेरी कमीज और पोछा? अरे राम बाबू, बस आप चले जाइए, वरना वरना।
2: ठीक है ठीक है, जा तो रहे हैं, लेकिन बता देते हैं, अब कभी बंदर आपके घर का कोई कपड़ा हमारी छत पे छोड़ जाएगा तो मैं नहीं आऊंगा वापस करने।
1: अरे जाइए जाइए, ठीक है मत आइएगा। हम भी बंदर से कह देंगे कि चाहे गोमती पार पटाखाना, लेकिन राम बाबू की छत पर कभी मत छोड़ना।
2: क्या जमाना आ गया है, बेकार में लाल पीले हुए जा रहे। भलाई करो तो बुराई मिलती है।
1: बुराई मिलती है, हो गई शुरुआत।
0: अब क्या हो गया?
1: अरे कुछ नहीं, ये सारा का सारा हफ्ता ही ऐसा है। आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। सुषमा, तुम सुधीर के यहाँ जाकर कह दो कि ऑफिस जाते हुए मेरी एप्लीकेशन लेता जाएगा, कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
0: अरे जो नुकसान होना था वो हो गया, अब इतना परेशान होने से कैसे चलेगा।
1: क्या करूं?
0: देखो वो दूसरी कमीज धुली रखी है ना, मैं उसे लाए देती हूँ, उसे पहन के चले जाओ।
1: क्यों भाई, घर में तुम्हें मेरी मौजूदगी खलती है क्या?
0: ठीक है तो बैठो घर में, मुझे क्या, मैं चली, मुझे और भी बहुत काम है।
1: सब गड़बड़ है, मैं समझ रहा हूँ सब गड़बड़ है।
3: जय शनिचर देवता। माता जी।
1: कौन? अरे अरे पंडित जी, आप पाए लागी।
3: सुखी रहो जजमा।
1: पंडित जी बड़े मौके से आए, बहुत दुखी हूँ मैं, जरा जरा जल्दी से मेरे ग्रह विचारो। वाकई पंडित जी मैं बहुत परेशान।
3: अब ग्रहों का हाल तो, अरे जरा शनि देवता को कुर्सी पर बिठा दो जजमान।
1: हाँ पंडित जी, आइए आइए आइए।
3: ये हुई ना बात। हाँ तो मीन में ये सुन, माता जी दिखाई नहीं देती, माता जी कहाँ है?
1: वो होंगी यहीं कहीं।
3: तो ठीक है। हाँ तो जिजमान, ऐसा है कि शनिचर देवता अपनी भिकुटी टेढ़ी करके आपको देख रहे हैं।
1: क्या क्या कह रहे हैं आप पंडित जी?
3: ठीक कह रहा हूँ जिजमान, माता जी ने पिछले शनिश्चर को सिर्फ चवन्नी चढ़ाई थी। है? तो शनि देवता का मूड खराब हो गया हैगा।
1: पंडित जी आप तो सब कुछ जानते हैं। कुछ सोचिए, कुछ विचारिए, कुछ कीजिए ताकि मेरी बला टल जाए पंडित जी।
3: क्यों नहीं, कर कृष्ण कन्या तुला शनि देवता की काली छवि माथे पर देख रही है। सो शनि महाराज की आज्ञा है कि नीले रूमाल में बांध के 30 रुपए और सवा पाव डबल रिफाइंड सरसों का तेल ग्रहण करेंगे, तभी माता जी का अपराध क्षमा होगा, नहीं तो आर्थिक हानि होवेगी।
1: आर्थिक हानि? अरे आर्थिक हानि तो हो गई पंडित जी, बंदर मेरी नई कमीज ले गया।
3: अरे जजमान, मान हानि की भी संभावना है।
1: अरे इसीलिए आज दफ्तर नहीं गया पंडित जी, छुट्टी ले ली है।
3: तो कब तलक छुट्टी लोगे जजमान, कभी ना कभी तो जाओगे ही।
1: हाँ पंडित जी वो तो है।
3: तो भैया जी, शनि देवता तो छोड़ेंगे नहीं, चढ़ावा तो लेंगे ही।
1: आप ठीक कहते हैं पंडित जी, आप यही रुकिए, मैं अभी लेके आता हूँ चढ़ावा, बस अभी लाया।
2: अरे रघुवीर।
3: अरे ये कहाँ से आंटपका
2: भाई, कहाँ हो? ये पंडित यहाँ क्या कर रहा है?

0: वो
1: अमा पंडित जी आप यहाँ कैसे? आज तो शनिवार भी नहीं है।
0: बात कुछ यूं भाई कि आपकी सनिश्चर को जरा ससुराल जा रहे थे।
1: अच्छा,
0: सोचे कि जिजमानों के यहाँ आज ही फेरा लगा ले।
1: बहुत खूब।
0: अब माता जी है नहीं तो अब हम चलते हैं। जय शनि देवता।
1: जय शनि देवता। ढोंगी।
2: लो पंडित जी लो। अरे ये पंडित जी कहाँ गए?
1: गया गया, बड़ा धूर्त है ये।
2: अरे धूर्त तो तुम भी कम नहीं हो।
1: क्या
2: आप दोबारा यहाँ क्या करने आए हो?
1: मैं क्या आ गया, मुझे मेरी मजबूरी खींच लाई।
2: क्या मजबूरी खींच लाई?
1: हाँ, एक तो श्रीमती जी की डांट, दूसरी तुम्हारी दोस्ती का ख्याल। दोस्ती कोई आज की तो है नहीं।
2: हाँ हाँ, तभी तो तुमने दोस्ती का बड़ा मान रखा है ना।
1: मान न रखना होता तो अपना गुस्सा थूक कर तुम्हारा मूड

0: क्या आप दोबारा यहाँ क्या करने आए हो?
1: मैं क्या आ गया, मुझे मेरी मजबूरी खींच लाई।
0: क्या मजबूरी खींच लाई?
1: हाँ, एक तो श्रीमती जी की डांट, दूसरी तुम्हारी दोस्ती का ख्याल। दोस्ती कोई आज की तो है नहीं।
0: हाँ हाँ, तभी तो तुमने दोस्ती का बड़ा मान रखा है ना।
1: मान न रखना होता तो अपना गुस्सा थूक कर तुम्हारा मूड रिपेयर करने यहाँ ना आता।
0: अरे मेरा मूड इतनी आसानी से रिपेयर होने वाला नहीं राम बाबू।
1: इसे देखकर भी नहीं?
0: ये ये ये ये
1: ये लो अपनी कमीज।
0: अरे मेरी मेरी मेरी कमीज मिल गई। अरे ये तो समूची है।
1: हाँ देख लो, इसमें दोनों आस्तीने हैं। यही है वो कमीज जो बंदर हमारी छत पे छोड़ गया था।
0: और राम बाबू वो कमीज?
1: बताता हूँ। पहले भाभी जी को तो बुलाइए और चाय ही नहीं कुछ वाय भी मंगाइए।
0: हाँ भाई क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे भाई सुना सुना, सुनती हो? अरे भाई हमारी कमीज मिल गई।
2: क्या?
0: हाँ भाई
2: मिल गई।
0: हाँ भाई,
2: फिर वो वाली कमीज?
1: भाभी जी बुरा मत मानिएगा, वो वाली कमीज मुझे ला दीजिए। बबलू की माँ कब से लाल पीली हो रही है।
0: अरे?
1: वो पोंछा लगाने के लिए बैठी है। कह रही है कि मेरी झाड़न वापस ले आओ।
0: क्या झाड़न? झाड़न।

ये थी झलकी नई कमीज। लेखक कुमुद नागर, निर्देशिका चंद्र प्रभा भटनागर। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है चित्रलोक, आप सुनेंगे कुछ ही देर में।

साथियों नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं राजनीति फिल्म से, और आप जानते ही हैं कि आज है अभिनेता रणबीर कपूर का जन्मदिन। राजनीति फिल्म में उन्होंने काम किया है, और इस फिल्म में जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं आदेश श्रीवास्तव और साथियों की, समीर के बोल हैं और आदेश श्रीवास्तव का संगीत है।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं रणबीर कपूर की फिल्म संजू का गाना। इस गाने को गाया है सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने। गीत के बोल पुनीत शर्मा के हैं और संगीत रोहन रोहन का है।

0: समझे हैं।
1: बढ़िया।
2: संजू फिल्म के लिए इस गीत को आवाजें दी सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने।
3: एक विलक्षण गायक।
4: अरे ओरे हे।
3: संगीत के साधक।
4: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
3: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
4: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
3: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
5: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
3: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम चित्रलोक और समय है एक अंतराल का।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

चित्रलोक कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं अंतराल के बाद और अब आपको सुनवा रहे हैं चिल्लर पार्टी फिल्म का गीत। अमित त्रिवेदी और जयश्री त्रिवेदी के स्वर में ये गीत है। इस गीत के बोल नितेश तिवारी और अमित त्रिवेदी ने लिखे हैं और इसके कंपोजर हैं अमित त्रिवेदी।

0: अभी आप सुन रहे थे चिल्लर पार्टी फिल्म का गीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: सबके मन बहलावर भैया।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में

अब आपको सुनवा रहे हैं डी डे फिल्म का गाया हुआ एक गीत, और इस गीत को गाया है मुनव्वर मासूम जावेद अली और शंकर महादेवन ने। निरंजन अयंगर के बोल हैं और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

डीरे फिल्म के इस कव्वाली में आवाजें थी मुनव्वर मासूम, जावेद अली और शंकर महादेवन की, और ये थी आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब करने का लक्ष्य।

0: केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
4: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
2: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
3: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
2: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
4: So if you want to make more export,
5: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
4: 1 year before.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उड़ी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
6: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्यवाही की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
7: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि ये जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
1: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
0: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
2: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाई, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो विजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई।
0: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेइचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू घुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। हम अपने सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं। सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया है 3 बहुरानियां फिल्म से। लता मंगेशकर का स्वर है, आशा भोसले की आवाज़ इनके साथ है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

0: लता मंगेशकर और आशा भोसले के स्वर में ये था तीन देवियां फिल्म का गीत।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियां, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में अब आपको सुनवा रहे हैं शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीत बद किया हुआ गाना। इसे हमने लिया है हरियाली और रास्ता फिल्म से।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
1: एक हसीना दो दीवाने, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, कमर जलालाबादी के बोल और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल स्वरों में उत्सव फिल्म का गीत अभी आपको सुनवाने जा रहे हैं। वसंत देव के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत।

0: उत्सव फिल्म के इसी गीत के साथ आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
5: विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
6: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
5: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
7: अगर तुम मिल जाओ।
5: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

इस सुपरहिट सॉन्ग और ब्यूटीफुल फिल्म ने इस यंग एक्टर को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, जिसमें उनकी अदाकारी के जलवों ने तो ऐसा कमाल किया कि देखते ही देखते लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन बैठे बॉलीवुड के डैशिंग अट्रैक्टिव यंग स्टार, द वन एंड ओनली रणबीर।

बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर, उनके बेटे बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय अभिनेता ऋषि कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर 28 सितंबर 1982 को मुंबई में पैदा हुए। ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे, जिन्होंने अपनी फैमिली में बचपन से ही स्टारडम का स्वाद चखा है। एक सेलिब्रिटी फैमिली में जन्मे रणबीर एक स्टार चाइल्ड रहे हैं, जिनके पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ, लेकिन साथियों, रणबीर के भीतर संघर्ष का जज्बा बेशुमार।

मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़े रणबीर ने क्लास 10th के बाद सन 1999 में अपने फादर ऋषि कपूर को असिस्ट किया और वो फिल्म थी आ अब लौट चलें। एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद रणबीर कपूर का क्रिएटिव माइंड कुछ नया सीखने की चाहत लिए फिल्म मेकिंग और अभिनय को निखारने के लिए पहुंच गया न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स और ली स्ट्रेसबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट।

साल 2005 न्यूयॉर्क से लौटते ही बिना समय गंवाए रणबीर निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ उनकी फिल्म ब्लैक के लिए उन्हें असिस्ट करने लगे। संजय लीला भंसाली की पारखी नजरों ने रणबीर में छुपा हुआ एक उभरता सितारा देख लिया। और फिर क्या था, फिर सन 2007 जब संजय लीला भंसाली ने न्यू कमर्स को लेकर अनाउंस की अपनी फिल्म सांवरिया, जिसमें डेब्यू किया रणबीर कपूर और सोनम कपूर ने। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खरी नहीं उतरी, लेकिन रणबीर रातों रात युवा दिलों की धड़कन बन बैठे।

इसके बाद आया साल 2008, जिसमें रणबीर कपूर को मिली अपने करियर की पहली सफलता। फिल्म थी बचना ए हसीनो। जी हाँ साथियों, दीपिका पादुकोणे के साथ रुपहले पर्दे पर इनकी जोड़ी दर्शकों ने खूब सराही और इस फिल्म का म्यूजिक भी बेहद

2008 के बाद तो रणबीर कपूर एक एस्टेब्लिश सक्सेसफुल स्टार बन गए, और साल 2009 की बात करें तो इनकी फिल्में लगातार हिट होती गईं। एक के बाद एक हिट फिल्म्स का सिलसिला चल निकला, और अपनी दमदार एक्टिंग से रणबीर ने सबके दिलों में जगह बना ली। अयान मुखर्जी की वेकअप से ढो, या राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी, या फिर रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, साल 2009 की इन फिल्मों ने रणबीर को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया, यानी देखते ही देखते स्टारडम रणबीर की झोली में आ गया।

रणबीर कपूर की तमाम फिल्म्स ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई तो नहीं कर पाई, लेकिन उन फिल्म्स में अपने शानदार दमदार अभिनय के जलवों से सबका दिल जीत लिया रणबीर ने। प्रकाश झा की फिल्म राजनीति में तो इनके अभिनय की भरपूर प्रशंसा हुई।

साल 2011 में जहां एक ओर बच्चों की फिल्म चिल्लर पार्टी में रणबीर ने एक आइटम नंबर किया, तो दूसरी ओर इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में जॉर्डन जाखड़ का रोल बखूबी प्ले करके ढेरों वाहवाइयां लूटी, जो कि उस वर्ष की सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्मों में से एक थी।

रणबीर कपूर का स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी डांसिंग स्टाइल, उनका ड्रेस सेंस, उनकी अदायगी, सब कुछ शानदार है। तभी तो हैं रणबीर युवा दिलों की धड़कन। रणबीर कपूर के कैरियर का ग्राफ बढ़ता ही गया। साल 2012, अनुराग बसु की फिल्म बर्फी में नजर आए रणबीर कपूर।

साल 2013, अयान मुखर्जी की फिल्म ये जवानी है दीवानी में दीपिका के साथ रणबीर की जोड़ी ने रुपहले पर्दे पर एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया।

साल 2015 में आई तमाशा, साल 2016 की सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म साबित हुई करण जौहर की ए दिल है मुश्किल, जिसमें रणबीर के साथ थी खूबसूरत ऐश्वर्या राय और चुलबुली अनुष्का शर्मा। और इस फिल्म के लिए रणबीर को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया।

बॉलीवुड के इस यंग एनर्जेटिक हैंडसम स्टाइलिश एक्टर रणबीर कपूर को फिल्मों के अलावा फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। सोशल वर्क्स में भी रणबीर हमेशा आगे आते हैं। साल 2012 में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जोया अख्तर की एक शॉर्ट फिल्म में कुछ फिल्मी हस्तियों के साथ भी नजर आए रणबीर कपूर।

रणबीर कपूर स्टाइलिश यंग एक्टर ऑफ बॉलीवुड, जिन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, इनकी झोली में है 5 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, 2 स्टारडस्ट अवार्ड्स और 4 जी सिने अवार्ड्स।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में बॉलीवुड के चमकते सितारे रणबीर कपूर के बारे में, उनकी फिल्म्स के बारे में जानकारियां इकट्ठा करके उसे सरल सजीले शब्दों में पिरोकर आपके लिए पेश किया शेफाली कपूर ने। प्रस्तुति सहयोगी आकांक्षा सिंह, विविध भारती के इस सुपरहिट प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी। अब दीजिए इजाजत शेफाली कपूर को, नमस्कार। आज के फनकार।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तेरा जिक्र छेड़ूं तो लफ्ज सवर जाते हैं, तेरा नाम लिखूं सफ़े निखर जाते हैं, तुझे सोचूं तो ख्याल भी गजल हो जाते हैं, तुझे देखूं तो वक्त भी ठहर सा जाता है। तुम मिले तो दिल को घर मिला, मेरे वीरान ख्वाबों को शहर मिला, तू मिला तो सुकून मिला, अब ना कोई

शर्त है ना कोई हिसाब है, तेरे बगैर ये जिंदगी अजाब है। हमने चाहा तुझे इस हद तक के तेरे पास ही होगा, जरा फिर से देख मेरे सीने से दिल आखिर गया तो

एक तमन्ना है कि फकत मुझ पे ही मेहरबान रहो, तुम किसी और को चाहो तो बुरा लगता है, मेरी चाहत का तकाजा है कि मेरे साथ रहो, गैर का हाथ जो थामो तो बुरा लगता है, शब वो रोज परवाह है तुम्हारी, तुम किसी और को सोचो तो बुरा लगता है, ये मेरी रूह तरसती है तुम्हारी खुशबू को, तुम कहीं और जो महको तो बुरा लगता है, क्या करूं मैं आदत हूं उसकी वो जरूरत है मेरी, मैं धड़कन हूं उसकी वो जिंदगी है मेरी, वो ख्वाब है मेरा उसकी मोहब्बत।

0: दीवाने हो जाए जिसे पढ़ के हम, कुछ ऐसा तो एक बार लिख। तू बस मोहब्बत लिख, कोई सवाल मत लिख, मेरे नाम के साथ अपनी हर बात लिख। अगर हाथ में हाथ हो तो उसे जिंदगी लिख, मेरे हिस्से में अपनी कायनात लिख। मुझे देखकर जो दिल में आए वो ख्याल लिख, ना फरियाद लिख ना कोई शिकायत लिख। मुझे दिन लिख तो खुद को मेरी रात लिख, लिखना है तो बस इतना लिख, मुझे अपना हमसाया लिख। सुनो मुझसे ये अब नहीं होता, दलीलें दूं मिसालें दूं, तुम देखो ना मेरी आंखों में लिखा है, मुझे तुमसे मोहब्बत है।
1: प्यार सिखा दूं?
2: सिखला।

ऐसा लगता है हर इम्तिहान के लिए जिंदगी को हमारा पता याद है। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। उसने रुख से हटा के बालों को, रास्ता दे दिया उजालों को। जाते जाते जो मुड़ के देख लिया और उलझा दिया ख्यालों को। एक हल्की सी मुस्कुराहट से उसने हल कर दिया सवालों को। मर गए हम तो देख लेना तुम, बहुत याद आएंगे दिल वालों को।

एक कदम उठ गया रवानी में, दर्द फिर आ गया कहानी में। कोई तो चांद को सिखाता है डूबना रोज रोज पानी में, सिर्फ तूने निगाह फेरी तो मोड़ आ गया कहानी में। उसकी आंखों में हमने डूब कर देखा, तिश्नगी बढ़ गई है पानी में।

चलो आओ मिलकर हम बनाए एक नई दुनिया मोहब्बत की। तुम अदा बनकर मेरी आँखों में रहना, मैं सुकू बनके तुम में। तुम दवा बनके मेरी सांसों में रहना, मैं शिफा बनके तुम में। तुम वफा बनके मुझ में समा जाना, मैं मोहब्बत बनके तुम में। उसने कहा मंजिल मुश्किल है, हमने कहा चलो साथ चलते हैं। उसने कहा मोहब्बत हो जाएगी, हमने कहा चलो मोहब्बत करके देखते हैं। उसने कहा तुम्हारा क्या भरोसा, हमने कहा मोहब्बत वफा है। उसने कहा छोड़ तो नहीं जाओगे, वादा करो हमसे, हमने कहा जिंदगी बेवफा है।

0: परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं, माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
3: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं, FM 107.2 MHz से पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वरेगंढ अज देश भर में मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भविख विच होने वाले किसी भी अतवादी हमले का ढुकवां जवाब दिता जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कंपनियां, फर्मां अते ठेकेदारां नूं देरी नाल भुगतान होण ते देरी वाले समय दे ब्याज समेत भुगतान करन दा ऐलान किया। हरियाणा दे मुख्यमंत्री ने खेतीबाड़ी खेतर विच नवीआं तकनोलॉजियां अते नवीआं फसलां दीआं किस्मां दी खोज नूं उत्साहित करन लई विशेष खोज केंद्र स्थापित करन दे निर्देश दित्ते। शहीद भगत सिंह नूं उनां दे जन्म दिवस ते हरियाणा अते चंडीगढ़ विच याद कीता गया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी विच शहीद आजम दे बुत ते फुल माला भेट करके नमन कीता। फरीदाबाद दे पिंड पल्ला सहितपुर विच प्राइमरी सेहत केंद्र नूं 50 बिस्तरियां वाले कम्यूनिटी सेहत केंद्र विच अपग्रेड कीता जाएगा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने निर्देश दिए कि शाहबाद शहर के सारे पार्कों

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ ही जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਉਡਾਲੀ ਨੂੰ।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
0: प्रोग्राम का अगला गीत हंस राज हंस दी आवाज़ स्विच।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह

0: अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुबार्ट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਦੀ। 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।